आदाब समीन, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268 मीटर यानि 1116 किलो हर्ट्ज के अलावा FM 103.5 MHz पर। समय आज शनिचरवार है, शक संवत 1948 के अषद महीने की 13 तारीख, मुताबिक 4 जुलाई 2024 ईस्वी। सुबह के 6:33 हुए हैं। आज की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: जो आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलावा एफ एम 71.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय पेश खिदमत प्रोग्राम सुबुगाही।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम सुबुगाही है तुंदिस खिदमत अंदर हाजिर। प्रोग्राम आगाज करो तिलावत कलाम पाक तमें तर्जुम सहित।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में

0: परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. The Prime Minister will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries and departments, including the Union Home Ministry and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary.

0: were present at the meeting yesterday. During the meeting, Mr. Shah said the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with state governments to advise farmers on the appropriate crops to sow. The India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. Heavy to very heavy rainfall conditions are expected over East Rajasthan, East Madhya Pradesh, coastal Karnataka, Telangana and Vidarbha for next 2 days. Gujarat Anti-Terrorist Squad has arrested 8 people associated with the Pakistan-based banned terror outfit Jaish-e-Mohammed. They were arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh in simultaneous operations yesterday. According to the Gujarat ATS, the accused were in touch with Pakistani handlers and actively working on behalf of Jaish-e-Mohammed to set up an active network in the state of Gujarat to further its terror activities. They were also working to translate the literature of Jaish-e-Mohammed into Gujarati and spread its ideology. The investigation also revealed financial links to the Pakistan-based terror group. The arrested individuals have been sent to a 14-day police remand. The claims circulating in social media that E20 fuel, which is a blend of 20% ethanol and 80% petrol, causes a drop in vehicle mileage are misleading. According to extensive field trials led by the Automotive Research Association of India in collaboration with Indian Oil Corporation Limited, Indian Institute of Petroleum Dehradun and the Society of Indian Automobile Manufacturers, no significant negative impact on vehicle fuel efficiency has been demonstrated. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and her French counterpart Ronald Lescure co-chaired the India-France Economic and Financial Dialogue in Aix-en-Provence City yesterday. Both the ministers recognized the value of the French Development Agency's work in India for economic development and welcomed the prospects for future projects. In the FIFA World Cup, Argentina beat Cabo Verde 3-2 after extra time in a thrilling round of 32 match at Miami Gardens in the US to enter the round of 16. Lionel Messi put Argentina ahead in the 29th minute with his 7th goal of the tournament and the 20th World Cup goal of his career in his 30th appearance across 6 editions. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय सुबह के 7:10 हुए हैं। समाप्त करें लाइव मॉर्निंग शो पायाम सुबह एक वक्फे के बाद।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
4: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
3: अच्छा, जरा पैकेट दिखा।
4: ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
3: क्या
5: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1-800-112100 पर।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: पापा, लाइए 3000।
9: क्यों भाई?
8: मेरी पॉकेट मनी।
9: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
8: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
9: हैं?
8: है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
9: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
8: अपना मोबाइल लाओ।
9: ले ले।
10: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
11: हर लेन देन अब है आसान।
12: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
13: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए

0: कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
1: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें। पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
0: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नई सुबह का नया प्याम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और आज एक बार फिर मेरे साथ हैं
1: मैं जहूर अहमद। मेरी तरफ से भी पुरखलोस सलाम कबूल फरमाइए।
0: सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों को सबसे पहले छूती है तो यूं महसूस होता है जैसे कुदरत हर इंसान को एक नई शुरुआत का मौका दे रही हो। हर नया दिन अपने साथ एक सवाल भी लाता है कि आज हम अपनी जात के साथ साथ दूसरों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं।
1: जी रशीद, हर सुबह हमें यही एहसास दिलाती है कि जिंदगी का सफर तन्हा नहीं होता। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के मोहताज हैं और शायद इसी राब्त का नाम मुआशरा है।
0: बिल्कुल दुरुस्त। मुआशरे की असल ताकत इमारतों या वसाइल में नहीं बल्कि उन दिलों में होती है जो एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। अगर जरूर हम तआवुन, एहतराम और जिम्मेदारी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें तो मुझे लगता है बहुत से अवामी मसाइल खुद ब खुद आसान होने लगेंगे।
1: जी बिल्कुल, जिंदगी का हुसन सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि रास्ते में दूसरों का हाथ थामने पे भी है।
0: बिल्कुल,
1: शायद इसी एहसास का नाम तआवुन है और यही एक खुशहाल माशरे की बुनियाद है।
0: बिल्कुल सही जहूर, चूंकि हमारा सनीचर का थीम रहता है अवामी मसाइल और उनका हल, इसलिए माशरे से जुड़ी बातें प्रोग्राम में होती हैं। एक बात जहूर जो आपने भी महसूस की होगी वो ये कि चंद दिलों की मुसलसल गर्मी के बाद वक्फे वक्फे से हुई बारिशों ने न सिर्फ मकामी लोगों को राहत पहुंची बल्कि यहाँ आए सयाह भी इस मौसम में झूमने लगे।
1: जी बिल्कुल, जो लोग 45 से 50 डिग्री की गर्मी से निकलकर वादी की ठंडी हवाओं में चंद पल गुजारते हैं वो अपने आप को जन्नत में महसूस करते हैं और यहाँ ही इन फजाओं में रहने की तमन्ना करते हैं।
0: बिल्कुल, कुदरत ने हमें उस खूबसूरती से नवाजा है कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ चले आते हैं और इन हसीन वादियों में, आबशारों में और मरगजारों में खो जाते हैं।

0: मिनट तक।
1: पयामे सुबह
2: जान बंदियो,
3: यह प्रोग्राम पयामे सुबह यस्तै आकाशवाणी श्रीनगर पर बोजान छु। मीडियम वेव जहातार हटाशर अठक मित्रा लाभ एफएम अकत्राशारिया 5 में घर्षण पेट समय प्रोग्राम के आगाज में अस बेहतर माशरिश कत करान तिकाज प्रथ बटवार छ अस यह थीम आसान इशूज रिलेटेड टू पब्लिक तो सान कोशिश यह रोजान जि कुन न तो कुन हित गसे सानन बोजन वालन फायदे वातन
1: जोर आज पूरे दुनिया संगर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाने इवान यूजन प्रत वरी जुलाई रतनी गोडिच बटवारी मनाने इवान छु यो दोष आसे ये से अनुमान दिवान जी एल लोक मुकाबल बजाय तावन इख्तियार करन तो तरक्की छन केंस नफरन ताम महदूद रोजान बल्कि अमुक फायदे छु पूरे माशरस मिलान
3: तावन गो न सिर्फ अख अकिस मदद करन बल्कि अख तुथ निजाम कायम करन यथ मज प्रत फर्द सन्ज आवाज अहमियत आस
1: बिल्कुल फैसले इन इकवट कर रलित मिल कर तो कामयबी हुंद फल ये सारे मज तकसीम कर जहूर यह वजह छु जि दुनिक बोन बोन मुल्कन हिंद किसान हुनरमंद खोतून नौजवान इकवट रलित तावन कर लकट लकट कारोबारी इदार कायम कर यम सिंद हालत बेहतर बनान तो सी तम कुलहम तरक्की अंदर त पुन खास रोल अंजाम दिवान
3: अर्शिद युक दुह पैगाम सिर्फ मशी तवनस तम महदूद बल्कि यह समाजी हम आहंगी बहमी एतमाद मुश्तरक जिम्मेदारी हिंद सबक दिवान
1: बिल्कुल
3: मजबूत माशरे तम आसान इमन वसाइल ज्यादा आसान
1: बिल्कुल
3: बल्कि तम इमन अखिस पेट एतमाद आ
1: बिल्कुल सही तो जहूर यम सात एतमाद पद सपदान छु दूरर छु कम सपदान इख्तलाफ छ कम गछान तरक्की हज वत हमवार सपदान कत बेम आज पे ट्रांसमिशन दौरान पन्न बोजन वाले सी करनी छे चूंकि यह अजक दुच इफादियत आज यु मना इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव तो इसलिए कत कर बड़ जरूरी तो कत तम तम अने मगर गोडनेत बतान थम मे पूर उमेद यम जन सन बोजन वल तम ती मज तो तुह मज यह कलामी रसा जावेदानी आवाज़ गुलाम हसन सूफी सबनी।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: प्राइम सुबह आप समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 268.81 यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। मेरे साथ हैं जहूर अहमद और अब हमारे साथ हमारी नई ब्रॉडकास्टर अनिका रशीद भी जुड़ चुकी हैं और अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो हमारी इस नई ब्रॉडकास्टर अनिका रशीद फराज की हैं।
5: ये आकाशवाणी श्रीनगर जहत 68.81 मीटर तो FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पे 7:05 मिनट हेतन सपदन वलू बोजो कशन खबरन हुंदे बुलेटिन।

रात 9:30 प्रोग्राम पेश होगा पेशरफ्त। मेहमान है डॉक्टर अब्दुल हमीद शाह। मौजू है लेवेंडर कल्टीवेशन। प्रोग्राम की मेजबान हैं इरफान अमीन मलिक। कश्मीरी गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम तुम्स फरमाइश पेश होगा शब 10:00। मेजबान रशीद निजामी। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन ब्रॉडकास्ट होगा 12:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी 9:00। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश नवजरील समाप्त करे 9:30। इसके फौरन बाद कश्मीरी गजलें पेश होंगी। सूफी ख्यालात पर मबनी प्रोग्राम सूफी सदा रोज की तरह नश्र होगा 10:00। प्रोग्राम मारूफ सूफी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी।

0: समाचार जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के

0: कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर

0: चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्य ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है, बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है, हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है, घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 MHz प्रोग्राम है पायाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपका दोस्त रशीद निजामी। मेरे साथ हैं जहूर अहमद और अनीका रशीद। जहूर, अब हम आज के दिन की तारीखी अहमियत पर एक नजर डालते हैं
3: जी,
2: और देखते हैं कि आज तारीख के हवाले से क्या कुछ हुआ है। पहले हम आज के दिन रोनमा हुए उन चंद वाक्यात की तरफ लोगों को ले जाएंगे जो आज पेश आए हैं
3: जी।
2: आज यानी 4 जुलाई को अमेरिका में यौम आजादी के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन 1776 को अमेरिकी कांग्रेस ग्रेट ब्रिटेन से आजादी का ऐलान किया था
3: जी। निजामी साहब, 4 जुलाई 1946 को फिलीपींस अमेरिका से आजाद हुआ। इस मुल्क में 2 यौम आजादी है। ये मुल्क 12 जून 1898 को स्पेन से आजाद हुआ था।
2: आज ही के दिन यानी 4 जुलाई को सर्न के साइंसदानों ने हिग्स बोसोन पार्टिकल को दरियाफ्त करने का ऐलान किया। ये मॉडर्न फिजिक्स में एक अहम संग मील साबित हुआ।
3: 4 जुलाई 1826 को एक इत्तेफाक में 2 अमेरिकी सदर, दूसरे और तीसरे सदर थॉमस जेफरसन और जॉन एडम का इंतकाल हुआ है। आपको बता दें कि इनका इंतकाल अमरीका में आजादी की 50वीं बरसी पर हुआ है
2: जी जी जी जी। और देखते हैं आज के दिन कौन सी शख्सियात पैदा हुई हैं। अमेरिका के मारूफ गुलकार पोस्ट मेलोन 4 जुलाई 1995 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए। उनका असल नाम ऑस्टिन रिचर्ड पोस्ट है।
3: अमेरिका के 30वें सदर कैल्विन कूलिज 4 जुलाई 1872 को वेमोट शहर में पैदा हुए हैं।
2: भारत के मारूफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू 4 जुलाई 1897 को पैदा हुए। उन्होंने रैम्पा रेबेलियन लड़ाई की सदारत की थी और उन्हें मनियम विरुद्धु यानी जंगल का राजा कहा जाता था।
3: हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम गुलजारी लाल नंदा 4 जुलाई 1898 को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए हैं। ये हिंदुस्तान के इंटरिम वजीर आजम दो बार बन गए हैं
2: जी जी जी।
3: एक बार जब जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल हुआ और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हुआ था।
2: और अब उन शख्सियात का जिक्र जो आज के दिन यानी 4 जुलाई को ये दुनिया छोड़कर चली।

0: 4 जुलाई 1902 को हिंदुस्तान के मारूफ स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। और आप जरूर देख लीजिए कि विवेकानंद की उम्र सिर्फ 39 साल थी और दुनिया में उनका शोहरा है।
1: जी, 4 जुलाई 1995 को मारूफ पेंट आर्टिस्ट बॉब रॉस 52 साल की उम्र में अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में इंतकाल कर गए।
0: आज ही के दिन यानी 4 जुलाई 1995 को मारूफ अमेरिकी अदाकारा ईवा गैबर अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया में 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। आपको बता दें कि ईवा गैबर हंगरी में पैदा हुई थी। तो सामिन किराम, ये था आज का दिन तवारीख के आईने में। हमारे साथ रहिएगा।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है और मैं आपके सामने अनीका रशीद फराश, और मेरे साथ और दो ब्रॉडकास्टर हैं, रशीद निज़ामी और जहूर साहब, और पयाम सुब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
1: जी पैम सुब प्रोग्राम चूंकि 7:10 पर ही शुरू होता है, और ये मैंने कई बार कहा है कि ये टीम वर्क एक या दो आदमियों का ये काम नहीं है, ये पूरा
2: जी
1: टीम वर्क है। यहाँ पर हम तीन हैं, और जब मेरी नज़र कंट्रोल रूम पर जाती है तो वहाँ पे हमारे अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब हैं हमारे इंजीनियर, शफीक अहमद मीर साहब हैं हमारे इंजीनियर, और हमारे मुआविन अब्दुल कयूम साहब बड़े चाको चौबंद खड़े हैं कि क्या कुछ करना है। तो ये टीम वर्क होता है जो हम पेश करते हैं। और अपने सुनने वालों को मैं ये बता दूँ कि आज 10:30 पर भी हमारे साथ जुड़ जाइए, उस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डिमार्केशन फॉरेस्ट डिवीजन कश्मीर जनाब शौकत अहमद कुट्टू साहब। उनके साथ बात होगी वन महाउत्सव के बारे में, क्योंकि ये जो वन महाउत्सव का हफ्ता है
2: जी
1: अनिका और जहूर, ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है।
2: जी जी ऋषि साहब, अब जो है कल से श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू हो रही है।
1: सही,
2: तो
1: शुरू हो चुकी है।
2: हाँ, हो चुकी है
1: जी जी।
2: तो आज भी एक जत्था जो है
1: रवाना हुआ है
2: जम्मू से भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ है
1: जी जी जी
2: वादी के लिए।
1: जी जी बिल्कुल। आप देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बड़ी अच्छी हैं बोलने के लिए, वो ये कि हालांकि हमारा एक अलग ट्रांसमिशन है अमरनाथ जी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, मकामी लोगों का कितना साथ रहता है यात्रियों के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की जो बाकी चीज़ें हैं, यात्रियों को आसान राह दिखाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए मकामी लोग, खासकर उसमें मुसलमानों का किरदार ज़बरदस्त है।
2: सड़कों पर आए थे कल
1: बिल्कुल
2: लोग इस्तकबाल के लिए,
1: इस्तकबाल के लिए। आप देखिए, किसी भी चीज की अगर उनको जरूरत महसूस होती है
2: तो मकामी लोग बहुत ज्यादा हाथ बता
1: ये बता आज की बात नहीं है,
2: सदियों से चला आ
3: जब से
1: रिवायत चली आ रही है। बिल्कुल
2: जी ऋषि साहब, आपके पास डाटा है इस यात्रा के हवाले?
1: हाँ, यात्रा के जो डाटा है, ताजा तरीन डाटा, अभी तक 12,168 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल किए हैं, जिनमें मर्द हजरात हैं 9,354, ख्वातीन हैं 2,250, बच्चे हैं 219, साधु हैं 71, और साध्वी अभी तक कोई नहीं है जिन्होंने बाबा के दर्शन किए। ट्रांसजेंडर्स 9 हैं जिन्होंने दर्शन किए, और सिक्योरिटी फोर्सेस 265। तो ये था ताज़ा तरीन डाटा। और फिर मैं एक बात बताऊँगा, ये यूनिटी दिखा रही
2: है, यूनिटी दिखा
1: रही है। और हम कहते हैं ना कि कसरत में वहदत की बात हम
2: जी
1: करते हैं, तब हमें ये चीज़ें सामने नज़र आती हैं, और बड़े पॉजिटिव अंदाज से। और दुआ है यही कि ये यात्रा अच्छे अंदाज से, कामयाबी से इख्तिताम पसीर भी हो
2: जी चल रही है।

0: फिल्मी नगमा आपने सुना?
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 8:30 होने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से पेश किया जाता है खबरनामा।
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीनफील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्कसाली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबोवर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोज़ा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे, जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपये की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी ज़िलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोज़गार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से MSMEs, पैकेजिंग कपड़े की सनतों, आटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फ़रोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवीत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फ़रोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी ज़िला सदर दफ्तरों, शहरी

0: सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कल सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बालतल के दो बेस कैंपों से यात्रियों को 3,880 मीटर बुलंदी पर वाक़ पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वो पेशगी इंदराज के बाद उनके लिए मखसूस की गई तारीखों पर ही पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएं। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आजम आयतुल्ला सैयद अली खामनई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं। ईरान के सीनियर रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने आयतुल्ला अली खामनई को ईरान के मुसल्ला अजीम में खराज अकीदत पेश किया। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और खारिजी उमूर के वजीर ममलिकत पवित्रा मार्गरीता ने आखिरी रसूम में शिरकत की। उनके जसद खाकी का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद मुकद्दस शहर मशहद में इस महीने की 9 तारीख को उनकी तदफीन कर दी जाएगी। सरकारी तौर पर यह सोग 40 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय आला इंतखाबी कमिश्नर जनाब ज्ञानेश कुमार आज दो रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद उनका यह रियासत का पहला दौरा होगा। पहले दिन वो इंदौर पहुंचेंगे, जहां वो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन जनाब कुमार ओमकारेश्वर और महेश्वर के मजहबी और तारीखी मकामात जाएंगे। आयुर्वेदिक उलूम में तहकीक की मरकजी कौंसिल CCRAS ने कल नई दिल्ली में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 5वीं मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग आयुष वजारत के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा की सदारत में मुनाकिद की गई। वजारत ने बताया कि यह मीटिंग शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस इको निज़ाम में आयुर्वेद की तालीम, तहकीक, साइंसी मवासलात और डिजिटल हुकुमरानी को फरोग देने के मकसद से 3 बड़े इकदाम किए गए हैं। CCRAS के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने कहा कि कौंसिल शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निज़ाम की तामीर का पाबंद है, जिससे आयुर्वेद को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल होगी। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मगरबी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में शदीद से शदीद तर और कहीं कहीं पर इंतहाई शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मशरकी राजस्थान, मशरकी मध्य प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले 2 दिन के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान आज दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कल दर्ज हरारत ज्यादा तकरीबन 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक और कम से कम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की पेशगोई की है। महकमे ने जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में अगले चंद दिनों में गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई के साथ इक्का दुक्का मकामात पर अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने का अंदेशा जाहिर किया है। महकमे ने लोगों को नालों, झरनों और चट्टाने खिसकने के खतरे वाले इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया है। उधर केरलम में आज इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के 14 जिलों में से 11 में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमरीका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। तीसरा मैच 7 जुलाई नॉटिंघम में खेला जाएगा। ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन आखिरी 2 मैचों की मेजबानी करेंगे। ये सीरीज 11 जुलाई को खत्म होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा बैन अलाक्वामी मैच की सीरीज खेली जाएगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग

0: आपने जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनी और प्रोग्राम है पयाम सुबह, जिसे आप सुबह 7:10 से 11:30 पर समाप्त करते हैं। और हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में अपने सुनने वालों की, मुख्तलिफ जानकारी सुनने वालों तक पहुंचाते हैं
1: जी।
0: आज मेरे साथ हैं जहूर अहमद और हमारे साथ हैं हमारी नई ब्रॉडकास्टर अनिका रशीद फराश। हाँ जी जहूर
1: जी, अभी जो है
0: थोड़ा सा टाइम
1: बचा है।
0: बिल्कुल,
1: अभी हम ठीक 9 मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां सुनते हैं।
0: बिल्कुल, मकामी अखबारात की सुर्खियां ठीक 9 हम सुनेंगे। हम अपने सुनने वालों को ये बता दें कि हमारे साथ रहिएगा, आज भी कुछ और बातें हैं जो आपके साथ करनी हैं। एक गेस्ट भी आने वाले हैं 10:30 पर, वो भी आएंगे और आपके साथ बात करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं शौकत अहमद कुठू साहब, आप हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डिमार्केशन फॉरेस्ट डिविजन कश्मीर, और आज उनके साथ जो बात होगी वो है वन महोत्सव के हवाले से, क्योंकि वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 के अलावा FM 103.5 MHz पर सुबह के 9 रहे हैं।
3: आज की सुर्खियां।
4: जाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, प्याजो, एक्साइड, इशर, निसान और TVS कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
1: आदाब समाइन, आज शनिचरवार है, महरमुल हराम 1448 हिजरी की 18 तारीख, मुताबिक 4 जुलाई 2024 ईस्वी। श्रीनगर से शाये होने वाले आज के अंग्रेजी और उर्दू रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं जहूर अहमद और मेरे साथ हैं
0: रशीद निजामी। यात्री सफरी अखराजात का 10% मकामी मसनूआत खरीदने पर खर्च करें। अमरनाथ यात्रा हमारी रूहानी रवायत और सकाफती हम आहंगी का अबदी बाब। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के रोजगार और माशी इस्तेहकाम को तकवियत मिलेगी। यात्री मजहबी अकीदत के साथ मकामी मईशत की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी।
1: अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी के साथ इख्तिताम तक पहुंचेगी। अमित शाह। मुल्क के लिए बिलालोम और जम्मू कश्मीर के लिए अमन खुशहाली की यात्रा साबित होगी।
0: अमरनाथ यात्रा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रोजाना हद मुकर्रर। गैर रजिस्टर्ड यात्रियों को सफर की इजाजत नहीं, सिर्फ मुकर्रर तारीख पर यात्रा मुमकिन।
1: शादियों की तकरीबात पर वाजवान के लिए गोश्त का मामला हल। वजीर आला पंजाब के साथ जम्मू कश्मीर के वजीर आला की बातचीत का नतीजा।
0: बारामुल्ला के गवास, कुनन और सूरखडन इलाके नजरों से ओझल। फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं।
1: दाचीगाम नाला में डूब गए 2 में एक की हालत तश्वीशनाक। पुलिस और मुकामी अफराद ने बड़ी कोशिश के बाद इन्हें बाहर निकाला।
0: लद्दाख में आईनी तहफ़ुज़ात से मुतल्लिक मुआहिदा तय पाया। इंतजामी इख्तियारात के लिए गवर्नेंस मॉडल तश्कील देने पर इत्तेफाक। ब्यूरोक्रेसी मातहत रहेगी।
1: आकाशवाणी श्रीनगर की यात्रा नशरियात ब्रॉडकास्ट स्टूडियो का इब्तिदा।
0: माली साल 2026-27 नए बिजली फीस की तजवीज। 24 जुलाई तक अवाम से एतराजात तलब।
1: मेरे हाथ में एक अखबार है, उर्दू अखबार, इसकी सुर्खी है सिंतहास माहदे पर हिंदुस्तान के मौके में कोई तब्दीली नहीं, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की हिमायत पर रोक लगानी होगी, तर्जमान।
0: 9 तक बारिशों की पेशगोई, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। मट्टी के तोदे गिरने, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग।
1: एक उर्दू अखबार की सुर्खी है 18 साल से कम उम्र बच्चों के इंटरव्यूज और फिल्म बंदी पर पाबंदी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से मशावरती हिदायत जारी।
0: सुर्खियां अभी और भी हैं, हमारे साथ रहिएगा।
5: दुबई हसा अगर गाड़ी स्कूटर छना आना योर छ गसा तो और छ आना मगर मैं ना सा तोरने फिक्री इमन एग्रीकल्चर चीजन क्या सीखे
6: बोसवा।

0: मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्स और FM 103.5 मेगाहर्ट्स पर।
1: जी अभी एक गजल सुनवाते हैं अपने समयन को।
0: जी गजल सुनवाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जहूर कि ये गजल आपको भी पसंद आएगी। हमारे साथ जो हमारी ब्रॉडकास्टर अनिका रशीद साहिबा बैठी हैं यहाँ पे, इनको भी ये गजल पसंद। अनिका कितनी गजलें कितनी पसंद करती हैं आप?
2: बिल्कुल, गजलें तो बहुत पसंद है और सामईन को भी बहुत पसंद होती है और वो शौक से सुनते हैं।
0: और उर्दू गजलें जो होती हैं ना, ये इंसान के जहन को सुकून फराहम करती हैं।
1: जी
0: एक गजल हमने यहाँ पे क्यों करके रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गजल सब लोग पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें जो आवाज़ें हैं वो ज़बरदस्त हैं, जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की।

0: जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने ये गज़ल सुनी। मेरे साथ इस वक्त हैं ज़हूर अहमद और अनीका रशीद फराश। और ये जो गज़लें हैं ना ज़हूर
1: जी,
0: ये गज़लें जब गज़ल सिंगर कोई गज़ल गाता है ना तो उसका ये पूरा पैशन होता है और उसका पूरा प्रोफेशन होता है, वो गज़ल ही गाते हैं
1: जी।
0: अब कुछ हमारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको फिल्मी गाने गाने की प्रैक्टिस होती है और उनमें से भी कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो गज़ल गाते हैं। मिसाल के तौर पर हम आशा भोसले का जब नाम लेते हैं ना, गजल जब गाती थी तो जबरदस्त गजल गाती थी। और लता मंगेशकर जी ने भी कुछ गजलें जबरदस्त और लाजवाब गाई हैं, जिसमें से एक गजल हमने अभी अभी अपने सुनने वालों को सुना
1: जी। जी रशीद साहब, अभी जो है आजकल हमें रोज खबरों अखबारों में ऐसी खबरें आती हैं कि कुछ लोग नालों में गिर गए हैं, बच्चे चले गए हैं नदी नालों में फंस गए हैं, कुछ लोगों की डेथ भी होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये एक सामाजिक मसला है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत क्यों नहीं करते, क्यों हम उन जगहों पे उन्हें जाने देते हैं जहाँ पे उनकी उनको जान उनकी जान को खतरा है।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक इसमें कुछ इश्यूज हैं, कुछ बातें हैं जो इस बात के पस मंजर में जन्म लेती हैं। एक हुआ पहला घर का माहौल, आपके घर का माहौल कैसा है, और दूसरा हुआ ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो ज़्यादा किसी की मानते नहीं हैं
1: जी।
0: घर वाले उनको प्रेशराइज करते हैं कि आप ऐसी जगहों पर ना जाएं। और कल जिस नाले की बात आपने की, अभी अभी हमने सुर्खियों में भी बोला कि दाचीगम नाले में
1: जी।
0: दो बच्चे डूब गए लेकिन एक की हालत तश्वीशनाक है। असल में उतना पानी भी नहीं है कि उनका बहाव उनको ले जाएगा, उतना वहां पे इस वक्त बहाव नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पानी की लेवल थोड़ी सी ज्यादा
1: होती है।
0: अगर इंसान तैरना ना जानता हो तो वो डूब सकता है
1: जी।
0: और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, एक हुआ कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। अगर एक छोटा, अब कितने छोटे बच्चे, 8 साल 9 साल के बच्चे तो जा सकते हैं, ये होते हैं 12 13 14 15 16 17 18 साल के बच्चे।
2: बिल्कुल, ये मुझे लगता है बच्चे अगर जिम्मेदार नहीं हैं तो ये बड़ों की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को समझाएं। अगर 19-20 साल के बच्चे, खैर वो बच्चे नहीं हैं, बच्चों से थोड़े तो बड़े हैं, अगर वो जा रहे हैं तो वो जो छोटे बच्चे हैं वो उनको देख के सीखते हैं, उनको उनके जो नक्शे कदम है उन पे चलते हैं। तो इस चीज का परहेज होना चाहिए कि जो बड़े हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों को समझाएं।
0: अब देखिए इसमें एक बात यह है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिक्योरिटी भी है
1: जी,
0: जहाँ पर कुछ मुलाजमों की ड्यूटी भी है,
1: हाँ।
0: वो किसी को उस पानी में जाने
1: की इजाजत नहीं,
0: इजाजत नहीं देते हैं। तो कुछ रिजर्वायर्स हैं जहाँ पर जाने की इजाजत नहीं होती है। हारून में ही वहाँ पे एक रिजर्वायर है जिसमें आज से कुछ साल पहले और उससे पहले कुछ साल पहले डूब गए थे कुछ लड़के
1: जी।
0: लेकिन उसके बाद पूरी सिक्योरिटी वहाँ पे है, उनको बच्चों को या किसी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये कुछ नाले ऐसे हैं, हर जगह तो कोई नहीं देखने वाला होगा, कि सबकी निगाहें वहाँ नहीं होती हैं। लेकिन ये सही है कि पहले वालदैन की जिम्मेदारी है कि उनसे कहे कि आप ऐसी जगहों पर ना जाएं। और जिस तरह से अनिका ने कहा कि 18, 19 साल या 17 साल के बच्चों में एक फहम होता है
1: जी।
0: उनकी जहनी नशोनुमा हुई होती है, उनको खुद समझना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है
1: जी। मैं समझता हूँ कि गर्मी जो है पहले भी हुआ करती थी, अब नई कोई बात नहीं है, तो ठीक है अगर हमें गर्मी लग रही है हमें नहाना है, लेकिन अपनी जान का तो ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि नहाने के चक्कर में हम चीजें गवा देंगे।
0: ऐसा है ना, देखिए अगर आप किसी नदी पे जाते हैं तो आप किनारे पे भी रहकर नहा सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है कि आप बीच में कूद जाएं। और जहां ज्यादा बहाव हो वहां इंसान को पता नहीं चलता है कि एक पानी का रेला आपको कहां से कहां
1: तक पहुंचा देगा,
0: ये इंसान को इस देखिए जब हम नजरों से देखते हैं ना, हम उसकी उस जो उसका प्रेशर होता है ना उसका अंदाजा आप नजरों से नहीं लगा सकते। लेकिन आपको इस चीज का ख्याल रखना है और आइंदा भी रखना होगा। हम हर

0: साल गर्मियों के मौसम में कोई डल में डूब गया होता है, कोई किसी नदी में
1: और
0: डूब
1: ऐसी
0: गया होता
1: खबरें
0: है।
1: दिल दहला देती हैं।
0: बहुत बहुत बहुत अफसोसनाक खबरें हैं ये। और मैं फिर से कहूंगा कि स्कूलों की जिम्मेदारी है, कॉलेजेस की जिम्मेदारी है कि वो अपने
2: जी
0: बच्चों को जब पढ़ाते हैं निसाबी किताबें तो उसके साथ साथ अखलाकियात भी पढ़ाएं,
2: जी
0: ऐसी बातें पढ़ाएं, ऐसी बातें समझाएं जो जिंदगी में बहुत जरूरी होती हैं। अब ये बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट हो, आपने इसको कितना पढ़ाया
2: ये
0: हो,
2: बच्चा ही है
0: मगर ये तो आपने नहीं ना सिखाया था
2: जी।
0: कि कम से कम अगर आप जाएंगे उस पानी में जहां बहाव ज्यादा हो तो आप बीच में ना जाएं।
2: जी
0: ऐसी बातें हैं, इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब खबरें नष्ट होंगी, पहले कश्मीरी और उसके फौरन बाद उर्दू में। खबरों से पहले ये वक्फा।
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
4: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 9:30 सपद कशन खबरन हूं बुलटिन हेत फारूक अहमद। गुजरात में दहशत गर्दी मुखालिफ स्क्वाडन ममनू व तंजीम जैश मोहम्मद सत वस्त 8 नफर गिरफ्तार करमित। तफसीलों मुताबिक गुजरात पुलिसन तो मध्य प्रदेश पुलिसन वन जायन छाप त्रवित यम गिरफ्तारी अमल मनम। दहशत गर्दी मुखालिफ स्क्वाड मुताबिक यम 8 नफर पाकिस्तान में अब्दुल्ला तो मोहम्मद उमर नाव कन आकहन सबित मज वन जम जैश मोहम्मद लिटरेचर तर्जम कर अमुक नजरिया फहलावान। सालान श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दुमि दोह तठ चिकचाव सान जारी। आज सुल सुबह सपद बालतल तो पहलगाम वतो सास वाद यात्री जबान पे बम बम बोलियो विरद करान पवित्र गुफाई कुन रवान। वादी इन वाल यात्री न सिर्फ यो खूबसूरती बल्कि मुकामी लुकन हिज मेहमान नवाजी सबरदस्त मुतासिर बासान।
5: शंकर भगवान की जय। मैं विश्वनाथ यमुनानगर निवासी, मेरी 17वीं यात्रा है। जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा। सरकार से ये आशा करता हूँ कि अगले साल इससे भी कुछ बेहतर करे।
6: मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं पंजाब से सरहंद से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, भोले बाबा ने हमें बुलाया दूसरी बार भी, ऐसे ही हर साल बुलाए। प्रशासन बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है।
7: मेरा टीना गाबा फ्रॉम सरहंद पंजाब, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ भोले बाबा सबको ही बुलाए,
6: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: अद दौरान जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास पे आज मजीद 4,800 बह यात्री वादी कुन रवान कर आमित, इन मास 41 मर्द तो 2,761 जन श्रद्धालु शामिल। सोभई कमिश्नर कश्मीर अंशल गर्गन हिज यात्रा के पहलगाम रूटक दौर कर यात्रियन बापत दस्याब मुख्तलिफ किस्मचन सहूलियतन मौकस पे साम। डिप्टी कमिश्नर अनंत नाग डॉक्टर बिलाल मोहिदीन भट तो दोयमिन मुतलक अफसरन सान कोर डिविजनल कमिश्नरन खास तौर पाठ फ्रिस्किंग पॉइंट, ई के वाई सी वेरिफिकेशन तो आर एफ आई डी रजिस्ट्रेशन काउंटरन हूं मुआयन। अद दौरान प्रो गमी तरक्की तो पंचायती राज सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज अजदन बालतल बुनियादी कैंपक दौर कर मौजूद यात्रियन निश सफाई सुथरई हिंद इंतजाम हिंदिस बारस में जानकारी। सेक्रेटरी मौसूफन हिज छोट किस बुंदबस्तस मुतलिक प्लांटन सफाई सुथरई हिंदन असासन तो टेंट सिटी अलाव लंगरन हूं मुआयन कर यात्रा 2017 बापत सफाई हिज मुहिम साम। सेहत तलीम हिज वजीर सकीन अयतून हल्क इंतखाब टंगमर्गी हूं दौर कर बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट अवाम के नाव वक्फ करम। वजीर मौसूफन तुल सब जिला हस्पताल टंगमर्गी जनन तो बचन बापत अकिस ब्लाकस दास तुलना अलावे टारहाम के हायर सेकेंडरी स्कूलस मज ऑडिटोरियम तो लालपोरी नवि तर्ज किस प्राइमरी हेल्थ सेंटरस दास। अमे अलावे अथ मौकस पे ख्याल बावान वन सकीन अयतून जी मौजूद सरकार जम्मू कश्मीरस मज तलीम तो तिबी शोबन मज बुनियादी ढांचे بہتر کرنے باپت

0: कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर भर में तालीम और तिब्बी शोबों में बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए लगातार सरमायाकारी कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सरकार कारखानादारी को फरोग देते हुए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए पुरअज़म है। श्रीनगर में अवामी मसाइल की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए सरमायाकारों और सन्नत से जुड़े मुतल्लिकीन के लिए एक आसान और मुवाफिक माहौल पैदा किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने पामपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन, केरोसिन डीलर्स और दीगर कई वफूद से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन श्रीनगर में कई अहम शख्सियात ने मुलाकात की, जिनमें प्रदेश बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद यूसुफ भट्ट भी शामिल हैं। माहौलियात से मुतल्लिक कानून साज असेंबली की कमेटी ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में अच्छन वेस्ट मैनेजमेंट जगह का मुआयना करके वहां शहर की बुनियादी वेस्ट प्रोसेसिंग सहूलियात के कामकाज का बरसरी मौका जायजा लिया। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी की जेर क्यादत कमेटी के अरकान ने साथ ही आंचार होकर सर और खुशहाल सर झीलों नीज दीगर आबी पनागाहों का भी दौरा किया और वहां नाजायज तजावजात के खिलाफ अहकाम जारी किए। एनआईटी श्रीनगर में आज से 8 जुलाई तक कुल हिंद क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है, जिसमें मुल्क भर के एनआईटी से ताल्लुक रखने वाली 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का रस्मी इफ्तिताह करते हुए इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया ने इदारों के दरमियान करीबी ताल्लुकात बढ़ाने में खेलकूद की अहमियत बयान की। ये मैच श्रीनगर के 8 मकामात पर खेले जाएंगे। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आकाशवाणी का यह श्रीनगर स्टेशन है, मीड वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन समाप्त करें शोबे खबर का तैयार शुदा प्रोग्राम न्यूज रील।
2: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रील, हफ्ते रफ्ता की खास और अहम खबरों के खुलासे पर मबनी प्रोग्राम रेडियो न्यूज रील।
3: समईन आदाब, न्यूज रील का ताजा शुमारा लेकर मैं शबीर उज़्ज़मा। हमारे आज के शुमारे में भारत और जापान के वज़राए आज़म ने एक खुशहाल हिंद बहरुल काहिल के लिए हम ख्याल ममालिक के माबैन इश्तराक मजबूत करने पर दिया जोर। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का बाज़ाबता आगाज, यात्रियों का मकामी लोगों की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल। विकसित भारत रोजगार जमानती और आजीविका मिशन ग्रामीण पर 1 जुलाई से अमल दरामद शुरू और पासपोर्ट की इजराई के लिए दरख्वास्त फीस में इजाफा। अब पेश है मौजूआत की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाई तकाईची ने पाकिस्तान की सरहद पार दहशत पसंदी समेत हर किस्म की इंतहा पसंदी की जोरदार मजम्मत की है। भारत जापान सरबराह इजलास के बाद एक मुश्तरक बयान में दोनों लीडरों ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में पहलगाम हमले और नवंबर में दिल्ली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इन हमलों के सभी कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। दोनों वज़राए आज़म ने एक खुशहाल भारत बहरुल काहिल के लिए हम ख्याल ममालिक के माबैन इश्तराक मजबूत करने के अज़्म का भी इजहार किया।
4: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
3: सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाज़ाबता आगाज हो गया है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। कल यानी 3 जुलाई को यात्रियों के पहले काफिले ने पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से जाकर पवित्र गुफा में हाजिरी दी। अबर आलूद मौसम के बीच यात्री आज भी पूरे जोशो जज्बे के साथ बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। दोनों रास्तों के मुख्तलिफ पड़ावों पर इंतजामिया की जानिब से सलामती और लंगरों के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के तारीखी पस मंजर के बारे में पेश है हमारे न्यूज डेस्क की ये तफसीली रिपोर्ट।
5: श्री अमरनाथ जी यात्रा की जम्मू कश्मीर के लिए खासी तारीखी अहमियत है। ये यात्रा साल साल से फिरकवाराना हम आहंगी आपसी यगानगत बाहमी रिश्तों और कश्मीरियत की बेमिसाल इनफरादियत की पहचान रही है। पूरे मुल्क में श्री अमरनाथ जी यात्रा वाहिद ऐसा सफर है जिसके लिए दूसरे फिरके से वाबस्ता लोग हर सतह पर न सिर्फ ताउन पेश करते हैं बल्कि इनके ताउन से ही हमवार यात्रा मुमकिन बनती रही है। कई

0: भाइयों से मुस्लिम तबके से वाबस्ता लोग यात्रियों का खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं और उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करने की न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हैं बल्कि बाहमी भाईचारा की एक मिसाल भी पेश करते रहते हैं। लाखों यात्रियों की हिफाजत और उन्हें बेहतर सहूलियात की फराहमी में सरकारी तौर पर जिम्मेदारी होती है लेकिन मकामी लोगों की रजाकाराना तौर पर वाबस्तगी देखने लायक भी होती है और हालिया बरसों में इसकी शमूलियत में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। अक्सरियती फिरके की यात्रियों के साथ इस तरह की वाबस्तगी उस भाईचारे की एक खूबसूरत झलक है जो इस यात्रा के हवाले से दहाइयों का मुशाहिदा रहा है और जो सबसे बड़ी भाईचारे की दलील भी रही है। कश्मीर वादी 1990 के बाद नामसाइद सूरत हाल के घेरे में रही लेकिन अमरनाथ यात्रा कभी न बंद हुई और न अकीदतमंदों में कोई कमी वाका हुई। इसके बरक्स हर गुजरते साल में यात्रियों की रजिस्ट्रेशन बढ़ती गई और अब हजारों में नहीं बल्कि हर साल लाखों की तादाद में यात्री अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अमरनाथ यात्रा की खास बात यह है कि हर साल इसकी रिकॉर्ड तादाद दर्शन करके चली जाती है जो कश्मीरियत को परवान चढ़ाने के सफीर बन जाते हैं जो जम्मू कश्मीर के भारत के साथ वाबस्तगी के बंधन को मजबूत से मजबूत तर करने का मुवज्जे बनते हैं। यात्रा सिर्फ 1990 से शुरू नहीं हुई है बल्कि इसकी शुरुआत इससे कई दहाइयां कबल हुई है। तारीखी शवाहिद बताते हैं कि ये यात्रा रस्मी तौर पर 11वीं सदी में कायम हुई और तब से इसका मुशाहिदा किया जा रहा है। जदीद इलाकाई दास्तान के मुताबिक ये गार उस वक्त तक खो गई थी जब तक कि बूटा मल्लिक नामी एक मुसलमान चरवाहे ने 1850 में इत्तेफाकी तौर पर इसे सोने के एक थैले के बदले दोबारा दरियाफ्त कर लिया था जो इसे एक फकीर ने दिया था। सालाना यात्रा का एहतमाम और इंतजाम श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड करता है। ये यात्रा आमतौर पर हिंदुओं के मुकदस महीने सावन के दौरान चलती है जो अकीदतमंदों को पहलगाम या बालतल के बेस कैंपों से 3,880 मीटर ऊंचे गार तक ले जाती है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा कश्मीरियों की मेहमान नवाजी के लिए सबसे बड़ा मौका होता है और यहाँ का हर तबका यात्रा के साथ मुंसलिक रहता है। यही वो इंतहाई जज्बाती अय्याम होते हैं जहाँ यात्रियों को बहिफाजत गुफा तक पहुँचाने में कश्मीरी मजदूर अपना पसीना बहाते हैं वहीं उनको सफरी सहूलियात पहुँचाने के लिए अपने आप को मयसर भी रखते हैं। यात्रा की एक और खसूसियत यह है कि मुख्तलिफ जात नसर और इलाकों के लोग एक साथ मिलकर सफर करते हैं। समाजी और सकाफती हम आहंगी यात्रा के दौरान अक्सर तमाम मजाहिब या बरादरियों के लोग मिलकर इंतजाम करते हैं जो कौमी यकजहती की उम्दा मिसाल पेश करता है।
1: 2 जुलाई को जब यात्रियों का पहला काफिला वादी पहुंच गया तो काजीगुंड में नवयुग टनल के पास मकामी लोगों की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया।
2: मेरा नाम फहाद है। हम बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुँचे है। सुबह से उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे। कश्मीरियों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो हमेशा एक खूबसूरत रही है। हमने हमेशा हर किसी को जो भी कश्मीर आया है उनको तहे दिल से उनका स्वागत किया है।
3: मेरा नाम है किरण वेली। हम सुबह से बैठे हैं जो अमरनाथ यात्रा हर साल की तरह यहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं।
4: बहुत खुशी की बात है कि श्री अमरनाथ यात्रा जी जो है हम कश्मीर में यहाँ सारे हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर टनल पे उनका वेलकम कर रहे हैं जो कि गेटवे ऑफ कश्मीर है।
1: इससे पहले 29 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा में प्रथम पूजा की।
5: जग पालन करता हरि ओम हर हर हर हर महादेव।
1: इस मौके पर उन्होंने कहा
6: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर प्रशासन हमारे सुरक्षा बल सबने मिल करके श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल हो सके।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि बाइख्तियार उस्ताद एक तालिब इल्म को पुरएतमाद बना सकता है और मजबूत तालीमी इदारे खुशहाल समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करते हैं। महकमा स्कूली तालीम SCERT और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के मुश्तरक एहतमाम से जम्मू में मुनक्कदा एक रोजा सलाहियत साजी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम का मकसद इरतिकाई अमल को फरोग देना है।
6: यदि टीचर्स एम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे। यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारत और जम्मू कश्मीर एक उज्जवल सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है।
1: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے ہر ضلع کی یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے۔

0: जनूबी कश्मीर के शुपयां के दौरे के दौरान जिले के मजमुई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेते हुए वजीर आला ने 76 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जिले के बाग मालिकान और किसानों को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया।
1: जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं ऑनरेबल MLA जैनपुरा, ऑनरेबल MLA शुपया, इन दोनों से हम सुनना चाहते थे कि कहाँ पे खामियां हैं और क्या कुछ दुरुस्त करना बाकी है। यहाँ जो अफसरों की टीम है, एक अच्छी टीम है, DC साहब, इनकी लगातार कोशिश है कि जिले में जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए।
0: सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने एम्स अवंतीपोरा की जल्द तकमील यकीनी बनाने और सरहदी इलाकों में ट्रामा अस्पतालों के क्याम पर जोर दिया है। वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सेहत और खानदानी बहबूद से मुतलिक मरकजी काउंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए बोल रही थी। सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा की सदारत में मुनक्कदा इस कॉन्फ्रेंस में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सकीना इत्तू ने साथ ही कौमी सेहत मिशन के मुलाजमीन और आशा वर्करों की माहाना उजरत में इजाफा करने की मांग भी रखी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे सेहत के फ्लैगशिप प्रोग्रामों का खाका पेश करने के अलावा पूरी यूटी में सबके लिए मसावी और काबिल रसाई और काबिल बर्दाश्त तिबी निगहदाश्त यकीनी बनाने के लिए मुस्तकबिल का नक्शे राह भी पेश किया। विकसित भारत रोजगार जमानती और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBGRAMJI एक्ट 2025 1 जुलाई से पूरे मुल्क में लागू हो गया है। इस एक्ट का इतलाक मुल्क के देही इलाकों पर होगा। ये एक्ट 20 साल पुराने MG नरेगा की जगह ले रहा है। देही तरक्की की वजारत ने इस एक्ट की मौसरा मलावरी के लिए रवा माली साल के दौरान 9,56,92 करोड़ रूपए की रकम दस्तियाब कराई है। इस एक्ट के तहत रोजाना की बुनियादों पर दी जाने वाली उजरत में इजाफे के ताल्लुक से मरकजी सरकार ने बाजाबता नोटिफिकेशन जारी किया है। उजरत की कौमी 298.80 रूपए फी दिन को बढ़ाकर 327.40 रूपए फी दिन किया गया है। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने गुज़श्ते दिनों ओमपुरा बड़गाम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में बड़गाम जिले के BLOs सुपरवाइजरों और चुनाव अमले से जुड़े फील्ड एहलकारों के साथ एक बातचीत की और उन्हें जमहूरी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतलिक रोशनास कराया। इस मौके पर उन्होंने चुनाव अमल में BLOs के रोल को उजागर किया। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: मतदान और मतगणना सभी राजनीतिक दलों या कैंडिडेट द्वारा कॉन्करेंटली ऑडिट होती और भारतीय चुनाव की इस प्रक्रिया को देखते हुए सन 2026 भारत इस समय विश्व के सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों का नेतृत्व कर रहा है और इंटरनेशनल आइडिया का चेयरपर्सन भी।
0: 28 जून को मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए गए। 2 बूंद जिंदगी की इस मुहिम के लिए जगह जगह पर मराकज कायम किए गए थे। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने यूटी सतह पर जिला अस्पताल कुलगाम में इम्यूनाइजेशन के इस कौमी प्रोग्राम का आगाज एक नवजायद बच्चे को ये कतरे पिलाने से किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल के एक सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए ये कतरे काफी अहमियत के हामिल हैं। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाने के लिए माकूल इंतजाम किए गए थे। महकमा सेहत के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्करों को भी इस काम पर मामूर किया गया था। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कश्मीर सूबे के अव्वल से 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और सरकार से तस्लीमशुदा निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया है। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर की जानिब से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि ये स्कूल जुलाई की 6 से 19 तारीख तक गर्माई तातील के लिए बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मनशियात के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अनंतनाग में 20 करोड़ रुपए मालियत का ब्राउन शुगर जब्त किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिले के हालमुला इलाके में एक तलाशी कार्रवाई के दौरान वहां से गुजर रही एक गाड़ी से तकरीबन 2.5 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया गया जिसकी मालियत 20 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर टंगडार कपवाड़ा के रहने वाले इश्तियाक अहमद मुगल को गिरफ्तार किया। हज 2027 के सिलसिले में ख्वाहिशमंद अफराद की तरफ से ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जमा करने का सिलसिला जारी है। अलबत्त बाज दरख्वास्त दहिंदगान को उम्र के बारे में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने न्यूज रील के साथ बात करते हुए कहा,
3: जो हज कमेटी के थ्रू आदमी हज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है, अगर किसी हाजी साहब की उम्र 65+ है तो उन्हें एक कंपेनियन साथ रखना लाजमी है। कंपेनियन की उम्र 60 से कम होनी चाहिए। हाँ, अगर उनका कंपेनियन की स्पाउस है या हस्बैंड इन केस ऑफ वाइफ या उनकी उनकी अपने सिबलिंग्स हैं तो उस केस में बिलो 65 भी कंपेनियन अगर हो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोनों 65+ हैं तो उन्हें दो कंपेनियन चाहिए। अगर एक की 65+ है दूसरे की 65 बिलो है तो वो एक दूसरे के कंपेनियन रह सकते हैं।
0: मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे को फरोग देने की गर्ज से वजीर अजम फंड के तहत यूटी के लिए मसनूई जहानत पर मबनी 275 पोर्टेबल एक्सरे मशीनें, 9 MRI यूनिट और 4 डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट्स के लिए रुकूम

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS Voice स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS Voice, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम चुप रह दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश शब्दान वाली बोझो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम प्रत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नशर सब्दान।
2: समिन योस सूफी वैचारण पेठ मबनी प्रोग्राम सूफी सदा ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो में 10:32:20 हुए है और वक्त हो रहा है पयाम सुबह के आखिरी सेगमेंट का। अगली आवाज रशीद निजामी जी की।
3: बहुत बहुत शुक्रिया नाइदा आपका। सामिन किराम, इस मजलिस में यानी पयाम सुबह के इस हिस्से में हम हर दिन एक मेहमान से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, दरख्त कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जो न सिर्फ हमें ऑक्सीजन, साया और फल फराहम करते हैं बल्कि जमीन के माहौलियाती तवाजुन, हयातियाती तनवो और आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत भी हैं। यही एहसास उजागर करने के लिए हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे मुल्क में वन महोत्सव हफ्ता मनाया जाता है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा शजरकारी, जंगलात का तहफ्फुज और माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी को फरोग देना है। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने आज दावत दी है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिमार्केशन फॉरेस्ट डिवीजन कश्मीर, जनाब शौकत अहमद कुट्टू साहब से। आप तशरीफ आ रहे हैं हमारे स्टूडियो में। शौकत साहब, वेलकम टू द पयाम सुबह प्रोग्राम।
4: बहुत बहुत शुक्रिया निजामी साहब।
3: शौकत साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये वन महोत्सव क्या है और आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
4: निजामी साहब, जो वन महोत्सव को हम डिफाइन करेंगे, अगर आप इसके टर्मिनोलॉजी को ही देखेंगे, ये वन एंड महोत्सव है। वन का मतलब है फॉरेस्ट एंड

0: महोत्सव का मतलब है फेस्टिवल।
1: जी
0: सो इसको हम अगर डिफाइन करेंगे सिंपल टर्म्स में तो इसका मतलब है फॉरेस्ट फेस्टिवल। तो इसको और लफ्जों में भी बयान कर सकते हैं, जैसे हम इसको ट्री फेस्टिवल भी बोलते हैं। तो फॉरेस्ट फेस्टिवल एंड वन महोत्सव।
1: तो ये हमारे मुल्क में कब शुरू हुआ ये कैंपेन, अगर कहें तो कब शुरू हुई ये कैंपेन?
0: ये कैंपेन हमारे मुल्क में 1950 में शुरू हुआ। तो हमारे तब जो यूनियन ऑनरेबल मिनिस्टर रहे हैं के मुंशी साहब, तो के मुंशी साहब ने नेशन वाइड तब ये कैंपेन स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने तब वन महोत्सव रखा।
1: जी, चूंकि यकुम जुलाई से 7 जुलाई तक ये वन महोत्सव हफ्ता मनाया जाता है, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मकसद है?
0: वन महोत्सव, जैसे अभी आपने कहा कि ये एक्चुअली एक एनुअल ट्री प्लांटिंग कैंपेन है, जो एक हफ्ते के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, फ्रॉम 1st July to 7th of July। लेकिन अगर हम वन महोत्सव का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखा जाए, इसका क्या है, क्या मकसद है, किस मकसद के लिए ये वन महोत्सव मनाया जाता है, तो इसमें सबसे ये है, वन इज प्रमोट ट्री प्लांटिंग,
1: ठीक है।
0: तो दूसरा इसमें इसी के साथ है प्रमोट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन। यानी वो मकसद जो है वो बहुत बड़ा मकसद है कि किस तरीके से हम अपने जंगलात को कंजर्व करें, हम अपने जंगलात को प्रोटेक्ट करें। और एक चीज इसके साथ आ जाती है, दैट इज इको रेस्टोरेशन ऑफ आवर फॉरेस्ट्स। वो बहुत ही एक ऐसा मकसद है इस कैंपेन का। इस कैंपेन के तहत जो प्लांटेशन की जाती है, तो जैसे इस वक्त इंडिया के यानी हमारे मुल्क के बहुत सारे जगहों पे अभी मॉनसून सीजन स्टार्ट होने वाला है,
1: सही।
0: तो उसमें एक बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट प्लांटेशन भी होती है, क्योंकि जो हमारे डिग्रेडेड पैचेस होते हैं फॉरेस्ट, उसमें तो उनको इको रेस्टोरेशन में लाया जाता है, वो भी इस कैंपेन के अंदर आता है।
1: बिल्कुल सही। अब अगर हम इस कैंपेन को मनाते हैं तो एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? एक तो हम शजरकारी करते हैं, आपने कहा कि मॉनसून का जो बाहर हमारे यहाँ बाकी स्टेट्स में जो रहता है असर, उस असर का फायदा उठाने के लिए शजरकारी की जाती है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती है? देखिए शौकत साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी जब हम तकारीब मनाते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स मनाते हैं, ज्यादा पेपर वर्क ही होता है, जमीनी सतह पर काम कम होता है। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, और क्या कागजों से निकलकर जमीनी सतह पे भी काम होता है?
0: देखिए वन महोत्सव में अगर हम एक्टिविटीज की बात करें, तो मेजर एक्टिविटी मैंने आपको बोली, दैट इज जो आपने बताया कि ट्री प्लांटिंग। ट्री प्लांटिंग यानी प्लांटेशन करना इस फेस्टिवल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो होता है कि हम प्लांट लगाते हैं, दूसरा प्लांट लगा के सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें इससे अपने जंगलों की अहमियत का पता चलता है। अदर एक्टिविटीज की अगर हम इसमें बात करें, दैट इज अवेयरनेस कैंपेन्स। देखिए अवेयरनेस कैंपेन्स क्यों जरूरी है, कहते हैं कि जब तक आपको इल्म ना हो किसी चीज का, आपकी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही।
0: देखिए हमारे जो अभी स्कूल चिल्ड्रंस हैं, हमारे कॉलेज चिल्ड्रंस या यूनिवर्सिटीज में जो हमारे लड़के पढ़ते हैं, या जो आम लोग हैं, कॉमन सिटीजन्स, देखिए जब तक हम एक अवेयरनेस कैंपेन ना चलाए, उनको पता चले कि ये क्या हो रहा है इस वीक में, ये वहाँ क्यों ये जलसा है, वहाँ क्यों हमें बुला रहे हैं, क्यों ये कोई बता रहे हैं प्लांट्स लगाने हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, बाकी चीजें हैं, तो अवेयरनेस कैंपेन भी इसका एक एक्टिविटी है जो वन महोत्सव
1: और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी
0: बिल्कुल
1: सही।
0: इसी के साथ साथ सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस करते हैं और जो हमें करनी चाहिए, ऑल ओवर इंडिया करते हैं सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। देखिए सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स क्यों करते हैं, क्योंकि सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पे जोर देते हैं, हम रोल ऑफ फॉरेस्ट्स पे जोर देते हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट्स हमारे लाइवलीहुड के लिए, सस्टेनेंस ऑफ आवर लाइवलीहुड के लिए किस तरह से जरूरी है, किस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमारी फॉरेस्ट जरूरी है। तो वो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में इन बातों पे बहुत जोर दिया जाता है। इसी तरह और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए हमारे छोटे बच्चे जैसे अभी प्राइमरी से लेके 10th तक ऑल ओवर कंट्री इस वीक में वहां पे क्विज कॉम्पिटिशन, ऐसे कंपनी

0: कॉम्पिटिशन्स, ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स
1: जी,
0: छोटे बच्चों को जब हम बता रहे हैं इस कोई टॉपिक दे रहे हैं वन महोत्सव रिलेटेड, ट्री कंजर्वेशन के रिलेटेड, ट्री प्लांटिंग के रिलेटेड, तो छोटे बच्चों में तो उन चीजों से आ जाता है प्राइमरी बच्चों को कि कुछ एक्टिविटी कराई जा रही है और इस एक्टिविटी का मकसद ये है, तो वो उनके एक जहन मशीन, क्योंकि जो हमारे आगे फ्यूचर है
1: सही,
0: जो आगे स्टूडेंट्स होंगे इस कंट्री के, तो बचपन से ही किस तरीके से हम उनको, तो स्कूल का भी इसमें बड़ा रोल है जिस तरह से वो ये कॉम्पिटिशन कराते हैं।
1: सही बात है, और इम्पोर्टेंस की भी बात करेंगे कि पूरी इम्पोर्टेंस क्या है इस महोत्सव की, ये तो वह एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, लेकिन यह पर इंचमसाक बर्धन शौकोत्सव मिशपुर उमेद यूसी बछू यूसी मौसीकी छे एम सी सब तुम थे महजूज, तो बेमजन सन बोजन वाल वनस ये पुन प्रोग्राम बोजान कैं रेडियो सेटन पे बोजान कैं मोबाइल पे बोजान कैं डी टी एचस पे बोजान, तो तम तब महफू महजूज तम पत् करो बे कथ।

0: से, यहाँ पे वेल प्लान्ड वे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है
1: जी।
0: वो हर साल हमारा क्या होता है कि हर साल एक प्लान्ड वे में हमारी फॉरेस्ट इसमें प्लांट रेजिंग होती है थ्रू नर्सरीज।
1: ठीक।
0: और वो जो प्लांट रेजिंग होती है, ये कॉनिफर का हमारा चलता है अराउंड 3 इयर्स।
1: Okay.
0: एक प्लांट को इन द फॉर्म ऑफ सीड हम लगाते हैं अपने पॉलो बैग्स में, तो वो 3 साल तक उसको मेंटेन करना पड़ता है।
1: ओके।
0: 3 साल के बाद वो प्लांट जो होता है वो प्लांटेबल साइज में आ जाता है,
1: जैसे निकाल के दूसरी जगह लगा सकते।
0: नहीं, फिर वही उसी पे मैं आना चाहता हूँ। उसके बाद क्या है कि हर साल यहाँ मैसिव प्लांटेशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट करता है फॉरेस्ट एरियाज में। लास्ट ईयर अराउंड कुछ 1.4 करोड़ प्लांट्स लगाए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ओवरऑल J&K में फॉरेस्ट एरियाज में।
1: ये वही है जो नर्सरीज में पहले 3 साल बड़े होते हैं,
0: 3 साल बड़े होते हैं, क्योंकि हम हर साल ये इसे हर साल हम रेजिंग करते हैं, तो ये मेंटेनेंस 3 साल तक चलती है। तो 3 साल के बाद ये प्लांट इस प्लांटेबल साइज में आ जाते हैं, यानी फिर जो हम फील्ड में लगा सकते हैं। तो ये इंक्रीज इन ग्रीन कवर का है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है J&K में एंड ओवरऑल कंट्री में, जो भी फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट इसे ओवरऑल इंक्रीज इन ग्रीन कवर में हमारे जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं ओवरऑल कंट्री बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अब हम दूसरी इम्पोर्टेंस की तरफ आएंगे, जो वन महोत्सव की आपने बात की। दूसरी इम्पोर्टेंस जो इसमें है, दैट इज कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। देखिए निजामी साहब, जो बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, ये टर्म अगर हम देखें, बायोडाइवर्सिटी ये एक बहुत बड़ी टर्म है। इसको डिफाइन करना, इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी जितने भी स्पीसीज हमारे पास हैं, ये इवन की जेनेटिक लेवल पे भी जिसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं वो भी इसमें आ जाती है इसमें। देन पॉपुलेशन डाइवर्सिटी आती है, देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आती है। तो एक साइंटिफिक वे में, तो लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं बता दूंगा, आपने देखा होगा कि जितने भी काउंटलेस स्पीसीज हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अगर आप जंगल में जाते हैं तो जंगल में आप क्या देखते हैं, हमारे वहाँ फॉरेस्ट से, लेकिन फॉरेस्ट के साथ साथ आप देखोगे वहाँ पे जंगली जानवर भी है।
1: सही।
0: हमारे लेपर्ड है, हमारे ब्लैक बियर्स है, और इसके अलावा आप देखोगे हमारे बर्ड्स भी है वहाँ पे।
1: सही।
0: इसके अलावा और जितने भी काउंटलेस स्पीसीज है वो आप हमारे जंगलात में पाएंगे।
1: बिल्कुल सही।
0: तो ये जो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी है, ये विदाउट ग्रीन कवर पॉसिबल
1: ही नहीं है। जब विदाउट दरख्त उनको नहीं मिलेगा तो वो कैसे रहेंगे?
0: कैसे रहेंगे?
1: हैबिटेट है ना?
0: बिल्कुल, इनका हैबिटेट है। तो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी के लिए आपका ग्रीन कवर होना चाहिए, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी के लिए आपके फॉरेस्ट होने चाहिए।
1: सही।
0: तो ये कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी वाला जो है, ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंस जो हमारे वन महोत्सव की। तो तीसरी बात मैं करूंगा, दैट इज कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज या मिटिगेटिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है।
1: सही।
0: तो है क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखेंगे, दैट इज एनहेंस्ड ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे तो ग्लोबल वार्मिंग अगर आप साइंस के हिसाब से पढ़े तो ग्लोबल वार्मिंग एक नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना है।
1: ठीक।
0: लेकिन जब ये एनहेंस होता है, इट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, जिसको हम एनहेंस्ड ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब उसके रीजंस बहुत सारे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब ये शजरकारी का या वन महोत्सव का या हमारे फॉरेस्ट्स का इसमें
1: और
0: क्या
1: फॉरेस्ट से उसमें फर्क आ जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो उसके बढ़ोतरी कम हो जाती है। सपोज अगर अभी हम देख रहे हैं कि इसमें रीजंस बहुत सारे हैं, हम रीजंस की तरफ ना जाएं, हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हम फॉरेस्ट ज्यादा लगाते हैं तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा।
0: बिल्कुल, ये इसलिए क्योंकि ये जो हमारे फॉरेस्ट है, ये जो हमारे ट्रीज है, ये एज कार्बन सिंक काम करते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे एनहेंस्ड ग्लोबल वार्मिंग हो जाते हैं, जिससे टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, तो उसमें फॉरेस्ट्स का बड़ा रोल है
1: जी,
0: उसमें शजरकारी का बड़ा रोल है, उसमें ट्री प्लांटिंग का बड़ा रोल है। सो कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज का वन महोत्सव के साथ वो अच्छा खासा रिलेशन है, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस।
1: बिल्कुल।
0: थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे और इसमें जब इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन एयर एंड वाटर क्वालिटी।
1: ओके।
0: देखिए निजामी साहब, आपने देखा होगा अगर हम जंगल में जाते हैं तो जंगल के पानी को हमें बॉयल नहीं करना पड़ता है।
1: सही है।
0: वो इतना साफ होता है,

0: डायरेक्टली उसको पीते हैं।
1: पी सकते हैं, सही, पीते भी हैं।
0: और जो यही, अब अगर हम श्रीनगर में पानी देखेंगे,
1: नहीं नहीं,
0: किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में पानी देखेंगे, वो आपको उतना साफ नहीं मिलेगा।
1: सही।
0: तो ये फॉरेस्ट का रोल वहाँ पे है, ये शजरकारी का रोल यहाँ पे है, ये ग्रीन कवर का रोल यहाँ पे है।
1: सही।
0: कि इम्प्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी।
1: ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त।
0: और इसी के साथ अगर हम देखेंगे जो आपका
1: एयर क्वालिटी भी अच्छी,
0: हाँ, मैं वाटर की इसमें थोड़ा इसमें और आपको ये बोलना चाहूंगा, दैट इज ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होती है
1: जी,
0: वो कैसे होती है? जब तक आपने देखा होगा जो प्लेन कोई माउंटेन होगा, इसमें कोई फॉरेस्ट नहीं होगा, उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बहुत कम होती है।
1: अच्छा।
0: वो थोड़े उसमें कुछ ये हमारे हर्ब्स श्रब्स थोड़े से अगर होंगे तो उसमें भी होती है, बट उस लेवल की नहीं।
1: हर्ब्स एंड श्रब्स तो होते हैं,
0: होते हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं। लेकिन जब जहाँ पे हमारा अच्छा खासा डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ अच्छी खासी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होती है। तो ये ग्रीन कवर का, फॉरेस्ट्स का यहाँ पे रोल होता है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। आपने देखे होंगे जो चश्मे हमारे पास आते हैं, जो स्ट्रीम्स हमारे पास आते हैं, जो सालों एक जैसे बर्फ होती है, फिर हम बोलते हैं विंटर में कि बर्फ होनी चाहिए, क्यों ये जी जंगलों में रहेगी, हमारे श्रीनगर में क्यों नहीं रहती बर्फ?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो एक महीने के बाद होती नहीं, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े नाले हैं यहाँ पे, जैसे हमारा फिरोजपुरा नाला है, या यहाँ से आपका है नाला लिद्र है, नाले फिरोजपुर, नाले सिंध है, नाले फिरोजपुरा है, ये पानी कहाँ से आता सर?
1: सही,
0: ये पहाड़ों से ही तो आता है,
1: ये जो बर्फ वहाँ पे स्टोर हो जाती है।
0: सो ये सारा ये विकास ये फॉरेस्ट्स की वजह से, और इसमें जितना टाइम दिया तक जितने हमारे अच्छे फॉरेस्ट्स हो उतनी अच्छी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होती है, और उतना हमारी जो लैंड प्रोडक्टिविटी फिर नीचे हो जाती है, वो लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब हम इसी के साथ जो आपने एयर क्वालिटी की बात की, देखिए इम्प्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी, अगर निज़ामी साहब अभी आप श्रीनगर में जाएंगे, इस जगह अभी बाहर अच्छी खासी धूप है, आप देखेंगे अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो आपको शेड भी मिलती है वहाँ पे, आपको ठंड भी थोड़ी महसूस होती है, हवाएं भी चलती हैं, लेकिन अगर आप खुले आसमान में बैठेंगे जहाँ पे कोई ट्री नहीं कुछ नहीं, आप टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे। अगर आप एक जहाँ पे 8-10 ट्रीज होंगी आप वहाँ बैठेंगे और फिर टेम्परेचर वहाँ मेजरमेंट करेंगे, देन ओपन एरिया में बैठेंगे, आप देखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस।
1: सही।
0: टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिलेगी ओपन एरिया में, जस्ट 500 मीटर अवे होगा या 10 मीटर अवे होगा, 5 मीटर अवे होगा, लेकिन 5 मीटर यहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे ट्रीज नहीं, आपको टेम्परेचर डिफरेंस का होगा। और बैठने से भी हमें पता चलता है, नहीं जी हम यहाँ बैठेंगे, तो इसके अलावा जो ये एज जो हमारी ये पोल्यूशन का जहाँ तक मसला है, उसमें भी ट्रीज बड़ा हमें हेल्प करते हैं, एक तरीके से फिल्टर करते हैं ये हमारे एयर को। तो एयर क्वालिटी आप देखेंगे जहाँ पे अच्छी खासी जंगलात हो, जैसे हिल स्टेशन है, एयर क्वालिटी वहाँ बहुत अच्छी होती है, तो उसमें भी बड़ा रोल है हमारे ग्रीन कवर का, हमारे फॉरेस्ट्स का। और एक चीज़ पर हम आ जाते हैं, दैट इज सोइल इरोजन।
1: सोइल इरोजन
0: आपने देखा होगा बहुत सारे एरियाज में ऑल ओवर इंडिया ये प्रॉब्लम है, कुछ जगहों पे कि जहाँ पे
1: जमीनें खिसक जाती हैं,
0: फ्लैश फ्लड्स आ
1: जाते हैं। बिल्कुल सही।
0: तो फ्लैश फ्लड्स का ज्यादा आना वहां पे फॉरेस्ट कवर थोड़ा कम होगा, वो ओपन एरियाज होंगे। यहाँ पे एक हमारा एक एस्पेक्ट रहता है, एक फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है साउथर्न एस्पेक्ट, जिसमें कम जंगल होते हैं नेचुरली, ये नहीं कि वहाँ जंगल किसी ने काटे, ना ऐसा नहीं, नेचुरली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ एक्चुअली मॉइस्चर लेवल बहुत कम रहती है,
1: ठीक है,
0: वो एक साइनस मतलब फॉरेस्ट के हिसाब से एक अलग टॉपिक है। तो वहाँ पे फॉरेस्ट आपको उस लेवल से नहीं मिले, कम थोड़ी बहुत वेजिटेशन मिलेगी, लेकिन ट्रीज बहुत कम मिलेंगे, फॉरेस्ट ट्रीज। तो इसी तरह के से कुछ हमारे ओपन एरियाज होते हैं, कोई डिग्रेडेड एरियाज होते हैं, तो क्या हो जाता है कि सॉइल इरोजन का जंगलात के साथ क्या रिलेशन है, फॉरेस्ट कवर के साथ क्या रिलेशन है, ग्रीन कवर के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि जब भी बारिशें होती हैं, स्नोफॉल होता है, बारिशें होती हैं, तो बारिशों में हम क्या अक्सर देखते हैं कि जो नंगे पहाड़ होंगे जहाँ पे डिग्रेडेशन हुई होगी, या फॉर एग्जांपल जैसे मैं साउथर्न एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं नीचे, जो वाटरशेड से ऊपर पानी आ जाता है तो वो नीचे फ्लैश फ्लड्स लाते हैं। लेकिन जहाँ पे आपके अच्छे खासे जंगल हो, बारिश हो, लेकिन फ्लैश फ्लड्स नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारे रूट्स हैं इन ट्रीज

0: ये तो मैंने आपको ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग अभी बताया, प्लस जमीन खिसक नहीं जाती, जहां पे हमारे डेंस फॉरेस्ट है या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वहां पे उनका बड़ा रोल रहता है कि वो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन, और जब वो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं तो नीचे जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो ठीक ठाक रहती है।
1: बिल्कुल सही,
0: हमारा लैंड खिसकने आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा आजकल कि लैंड स्लाइड्स हो गए, बाकी चीजें हो गई, तो वो इसी वजह से है कि या तो हम किसी जगह उसको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रोजेक्टर्स होते हैं, बाकी चीजें होती है,
1: उससे भी
0: होती है, लेकिन वो एक बड़े रेगुलेशन में होते हैं, उनको फिर एक रिहेबिलिटेशन प्लान भी होता है। ऐसा नहीं है, खासकर अगर जंगलात में कोई प्रोजेक्ट लिया जाता है उसके एक थ्रू एक प्रॉपर एक्ट है हमारा, जिसको हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं, वो एक रेगुलेटरी एक्ट है।
1: Okay.
0: जिसके तहत अगर मान लीजिए एक रोड हम जंगल में ले जाते हैं, नेसेसिटी है डेवलपमेंट में किसी रोड तो चाहिए, तो वो उनको बाजाब्ते कंपनसेशन देनी पड़ती है टुवर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स, उस डिपार्टमेंट को,
1: ठीक है।
0: तो लेकिन मान लीजिए उसमें बाजाब्ते एक मिटिगेशन प्लान भी बनता है, वो मिटिगेशन प्लान मतलब

0: ओके
1: जिसके तहत अगर मान लीजिए एक रोड हम जंगल में ले जाते हैं, नेसेसिटी है डेवलपमेंट में किसी रोड तो चाहिए, तो वो उनको बाजाब्ते कंपनसेशन देनी पड़ती है टुवर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट उस डिपार्टमेंट को,
0: ठीक है।
1: तो लेकिन मान लीजिए उसमें बाजाब्ते एक मिटिगेशन प्लान भी बनता है, वो मिटिगेशन प्लान मतलब किसी जगह अगर हम कटाई करनी पड़ती है जंगल को या रोड निकालना है तो उनको एक उसका एक मिटिगेशन प्लान भी देना पड़ता है, किस तरह से वो रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, किस तरह से वो उसकी प्लांटेशन करेंगे जैसे साइड इसमें चाहिए जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, तो वो एक रेगुलेटरी प्रोविजन है। अब वही अंडरस्टैंड नेचर की भी एक अपना वो रहता है। तो मैं ये कहना मेरा ये यहाँ पे है कि सॉइल इरोजन का और ग्रीन कवर का यानी फॉरेस्ट का ग्रीन कवर का प्लांटेशन इसका आपस में बड़ा ताल्लुक है और लैंड प्रोडक्टिविटी का इसके साथ ताल्लुक है, जो फिर यहाँ नीचे एग्रीकल्चर होता है, नीचे हॉर्टिकल्चर होता है, ये सारा इसके साथ रिलेशन में है।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। हम और भी इस मौजू पर बात करेंगे शौकत साहब, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं कि अब जो आज हम देखते हैं, आज थोड़े से हालात डिफरेंट हैं, पहले आज से 10 साल या 15 साल पहले जो हालात थे फॉरेस्ट के वो आज नहीं है। आज माशाल्लाह हम खुद भी अवेयर हो गए हैं कि जंगलात को कैसे बचाना है। बहरहाल बातें और भी होंगी यहाँ पे। एक और नगमा कश्मीरी इस वक्त आवाज़ विजय कुमार मल्ला की, आवाज़ समद मीर का।

0: डेवलप होता है।
1: बिल्कुल सही बात,
0: हम में ये शऊर नहीं है। यहाँ ये बात मैं कंटिन्यूसली अपने शो में करता हूँ कि लोग बच्चों अपने बच्चों तक को शऊर बेदार करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। बच्चा स्कूल की गाड़ी में जाता है, चिप्स का पैकेट खाता है और रैपर बाहर फेंक देता है, भले ही वो बिलबोर्ड रोड पर चलता हो रैपर डाल में चला जाएगा, क्या एक्सपेक्ट करोगे? यही प्लास्टिक जब जमीन में धंस जाता है तो फिर क्या प्लांटेशन और कैसे आप उम्मीद रखेंगे कि कोई दरख्त वहां पे उग सकता है? सोच कैसे बदलेगी शौकत साहब हमारी?
1: देखिए, सोच सबसे सबसे सबसे बड़ी बात जो इसमें अवेयरनेस की बात है, जो बात हमने अभी यहाँ की, अगर ये लोग सोचेंगे अपने घर में हम अपना कितना साफ सुथरा रखते हैं, अपने लॉन को साफ रखते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, तो ये सोच लेके अगर लोग चले कि ये फॉरेस्ट्स जो अभी हमने बात की कितने हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है, तो यही मैंने बात बोली कि जाए टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाए, लेकिन जो भी है इनके पास पॉलीथीन प्लास्टिक वाला एक बड़ा बड़ा बड़ा पॉलीथीन भी साथ ले, उसमें सारा डाले, फिर क्या है हमारे यहाँ जो टूरिज्म अथॉरिटीज़ है, जैसे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके पास, पालगप डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो कलेक्शन पॉइंट्स उन्होंने हर एक जगह रखे हैं, या म्युनिसिपैलिटीज है वहां पे, पहलगाम म्युनिसिपैलिटी है, गुलमर्ग म्युनिसिपैलिटी है, उन्होंने अपने कलेक्शन पॉइंट्स रखे हैं, तो जब लोग जाते हैं वापस आने के टाइम पे, इवन कि वहाँ टूरिज्म स्पॉट्स पे भी कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं, आप किसी जगह बैठे अपना सारा जो भी आपको खाना पीना जो भी आपका रहा होगा सारा इस बड़े पॉलीथिन में डाल के उस कलेक्शन पॉइंट में डाल दीजिए।
0: सही है, मैं यहाँ पर एक और मिसाल पेश करूंगा, आज का तो खैर मैं नहीं कह सकता हूँ, 3-4 साल पहले मैं गया था दूधपथरी, उस वक्त पहला विजिट था मेरा दूधपथरी का, जब मैं वहाँ गया मैं बहुत खुश हो गया, वो खूबसूरती देखे मैं खुश हो गया, अल्लाह ने किस खूबसूरती से नवाजा है हमें, बहुत खुश हुआ मैं, लेकिन जो वक्त एंजॉय करने का था उस दौरान मैं सिर्फ बोतलें और कचरा साफ करने लगा वहां पे। मैंने बाईं तरफ मीडोज में बोतलें देखी, मीडोज में रैपर्स देखे, कवर्स देखे बोतलों के, डिब्बों के, फिर मैंने क्या किया, घर वालों ने एक जगह पे एक स्पॉट लिया था बैठने के लिए, कह रहे थे कि आइए खाना खाइए, मैं कहता था पहले मुझे बोतलें जमा करने दीजिए, यहाँ पर लोगों ने बिखेर दिए, हाँ हालांकि डस्टबिन वहाँ पे लगे थे, डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर मैंने वो सारे लिए और फिर मैंने वहाँ लोगों को कहा अगली बार जब मैं आऊँगा अगर ऐसे ही हैं तो मैं यहाँ जितने भी मुलाजमीन हैं मैं एक फिल्म बनाऊँगा और फिर उसको मीडिया में पब्लिश करूँगा। खैर उसके बाद मुझे पता नहीं, लेकिन ये सोच की बात है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए,
1: नहीं होनी चाहिए।
0: अच्छा, अब चलिए दूसरे एक पहलू की तरफ आते हैं, समाजी तंजीमें हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ हमारे स्कूल हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, जंगलात को महफूज रखने के लिए, कटाव से बचने के लिए या शजरकारी के लिए क्या रोल निभा सकते हैं?
1: देखिए निजामी साहब, जो हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, अगर हम पहले स्कूल्स की बात करेंगे, मैंने देखा हुआ भी कि स्कूल्स में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ये बोलूँगा कि ऑल ओवर जैन के जितने भी हमारे स्कूल्स हैं
0: जी,
1: एक मैंडेटरी एक रखा जाए उनके लिए एक मेडिसिनल प्लांट गार्डन होना चाहिए उनके स्कूल में
0: जी।
1: जो हमारे यहाँ लोकल स्पीसीज हैं, जैसे इंडिजन स्पीसीज, जैसे हमारे देवदार कीलफर हैं, जो फॉरेस्ट्स में हमारे यहाँ स्पीसीज हैं, तो उनके कुछ प्लांट्स रखने चाहिए
0: जी,
1: डोमेस्टिकेट करके, बड़े पेड़ नहीं बनाना उनको स्कूल लॉन में, ताकि हमारे बच्चों को फर्स्ट हैंड स्कूल में एक एक्सपीरियंस दिया जाए। उसके बाद में ये जानना चाह ये इसमें कहूँगा कि हमारे फॉरेस्ट डिविजन्स ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में है हमारे फॉरेस्ट, इवन कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा फॉरेस्ट डिविजन्स हैं, जैसे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे हैं 3 फॉरेस्ट डिविजन, कामराज फॉरेस्ट डिवीजन, कैमल फॉरेस्ट डिवीजन एंड लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन। तो जो हमारे वहाँ नज़दीकी स्कूल है, मैं यहाँ से ये बोलना चाहूँगा हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा अप्रिशिएट इन चीज़ों को करता है, जब भी हमारे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, कि स्कूल्स जो है वो हमारे साथ आए और कोऑर्डिनेट करे।
0: ठीक है,
1: तो हमारा मेनली होता है जो नज़दीक में वहाँ जंगल होती है वहाँ प्लांटेशन होती है, या हम स्कूल्स में या किसी ओपन एरिया में भी प्लांटेशन करते हैं।
0: सही।
1: तो स्कूल्स का मैं यही बोलूँगा कि ये जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड, इसमें एक अलग से मैं यहाँ से बोलना चाहूँगा कि हम बच्चों को एक अलग से इसमें अवेयर कराया जाए थ्रू जो अभी हमने ऐसे कंपटीशन पेंटिंग क्विज कंपटीशन और दिस ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, उसके साथ वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें और हमारा डिपार्टमेंट

0: बड़ा अप्रिशिएट करता है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसका।
1: जी ये बहुत अच्छी बात है। और
0: ये एनजीओस की भी आपने बात की, एनजीओस को मैंने यहाँ देखा, कुछ एनजीओस पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें ये हम फॉरेस्ट एरियाज में भी प्लांटेशन उनके साथ करते हैं। तो प्लस ये जो मैंने अभी बोला आपको जो प्लास्टिक या पोल्यूशन फ्री ड्राइव उसमें भी वो आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से आपके वसादत से यहाँ आपके प्रोग्राम से उनको रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी हमारे एनजीओज हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करें, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अच्छा रिस्पॉन्स है इन चीज़ों में, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारा मैंडेट है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे पास आते हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो चाहिए, जो फॉरेस्ट्स की वजह से, हमारे ग्रीन कवर की वजह से, हमारे जो स्ट्रीम्स की वजह से। तो ये सारा जो है इसमें अगर एनजीओज आगे आ जाए, कोलैबोरेट करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, तो वो इन जो हमारे ये एक्टिविटीज़ हैं इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
1: शौकत साहब, डाटा दिए बगैर आपको क्या लगता है कि इन सालों में कितना फ़र्क पड़ा है, हम जो यहाँ जंगलात का नुकसान करते थे अब क्या फ़र्क आया है, बेदारी हुई है लोगों में?
0: देखिए, चूंकि यहाँ एक आपको भी पता है कुछ एक टाइम रहा है कि थोड़ा डिस्टर्ब था जे एंड के में, जो डिस्टर्बेंस थे तो उस वजह से कुछ पैकेट्स में डैमेज हुआ है तब जाके। तो लेकिन फ्रॉम द लास्ट 30-35 इयर्स तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि हमारा एक वेल प्लानड प्रोग्राम होता है हर साल
1: जी।
0: तो उसमें हमारा एक जो होता है रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट से एक कंपोनेंट होता है, कि यानी जो पैचेस हमारे डिग्रेडेड पोजीशन में है हमारे जंगलात में, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका बाज़ाबता सर्वे किया जाता है, उनका बाज़ाबता जियो टैगिंग होती है, उनका बाज़ाबता एक जो जीआईएस में हमारे पास गूगल में आपने सुना होगा एक केएमएल फाइल और क्या केएमजेड फाइल और एक उसका एक होता है, वो केएमएल केएमजेड फाइल्स बनाते हैं। तो वो एक वेल प्लानड, उसको हम बोलते हैं एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन, उसके साथ डिपार्टमेंट वो एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन बनाता है, उसको फिर यहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी की एक मीटिंग होती है, एक स्कीम है हमारी कैंपा, वो कैंपा के तहत एक जो हमारे मेजर प्लांटेशन प्रोग्राम्स ओवरऑल होते हैं जे एंड के में, वो रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स के लिए होते हैं।
1: जी। शौकत साहब, बात आगे और भी होगी, यहाँ पे हम एक नगमा आपके लिए पेश करते हैं और अपने तमाम सुनने वालों के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि ये नगमा आप भी पसंद फरमाएंगे और हमारे सुनने वाले भी।

0: हमारा आउटसाइड फॉरेस्ट कवर जो होता है, तो उसमें वो टोटल है 1445 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ चुका है इन रिलेशन टू 2021 असेसमेंट 2-3 असेसमेंट में, जो वो भी एक पॉजिटिव चेंज है कि 1445 स्क्वायर किलोमीटर्स हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ चुका है। ये इसी रिपोर्ट से जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आती है बायनली, तो ये प्रेजेंट पोजिशन है हमारे फॉरेस्ट्स की ओवरऑल द कंट्री। इसके अलावा मैं थोड़ा यहाँ बोलना चाहूँगा, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसका जब हम देखते हैं कि इसका जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया क्या है, दैट इज 47.80% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया।
1: ओके,
0: हमारा जो
1: निस्पा
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जो हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है दैट इज 54%।
1: ओके,
0: फॉरेस्ट एंड
1: ट्री का है कि जो
0: आउटसाइड आउटसाइड का
1: जो फॉरेस्ट जितने भी पेड़ है वो
0: और
1: फॉरेस्ट 54
0: ये बन जाता है। प्लस इसी ये जो रिपोर्ट मैंने अभी बोल दिया आपको, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो हमारे फॉरेस्ट कवर बढ़ चुका है इस असेसमेंट के हिसाब से, दैट इज 83.55 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ चुका है, और जो हमारा फॉरेस्ट एंट्री कवर बढ़ चुका है वो है 91.25 स्क्वायर किलोमीटर। तो ओवरऑल जब हम इन रिपोर्ट्स को देखते हैं जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट शायद करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हम एक पॉजिटिव चेंज हम पॉजिटिव चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी ये रिलेशन है, ये रिलेशन यहाँ पे आ जाता है जो ये ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स होते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ट्री कैंपेन प्लांटिंग के अलावा जो हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल फॉरेस्ट खुद आते हैं, क्योंकि कुदरत का एक अपना एक कानून है कि अगर बैरन एरिया है उसको हम बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, तो नेचुरल जो वहाँ पे अपना फॉरेस्ट है वो खुद ब खुद आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के फॉरेस्ट इको रेस्टोरेशन प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ट्री अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ये इन सब का रिजल्ट है। ये पॉजिटिव चेंज जो आपको मिल रही है ये इन एक्टिविटीज़ की वजह से है, जो हम सारी एक्टिविटीज़ इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, और इसी को रिपोर्ट करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बायनली यानी 2 साल के बाद।
1: बहुत अच्छे, हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट में दिल्ली के शहर में पौधे लगाए गए, अच्छे अच्छे छोटे छोटे पौधे लगाए गए, आज वो बड़े हो गए और दिल्ली शहर में ना एक अलग ग्रीनरी मिल रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही निज़ामी साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे अर्बन या पेरी अर्बन एरियाज हैं इनमें जो प्लांटेशंस करते हैं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स या फॉर एग्जांपल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मेजर रोल तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही प्लांटेशंस करते हैं, तो इनसे आपका ग्रीन कवर अर्बन एरियाज में बढ़ जाता है। जो मैं अभी ट्री कवर की बात कर रहा था या आउटसाइड फॉरेस्ट की बात कर रहा था, जो हमारा ट्री कवर है ग्रीन कवर है वो इन्हीं चीज़ों से बदल जाते हैं। और आपने खुद बताया कि किस तरह से इनका रोल पोल्यूशन जो हमारा यहाँ पे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, तो और जो हमारी ग्रीनरी है ग्रीन कवर जो अर्बन एरियाज में बढ़ते हैं ये माहौल पे इसका ही बड़ा असर है।
1: ये शौक साहब मुझे एक बात बताइए, हमारे कश्मीर में मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं हमारे जंगलात में कितने वो उगते हैं और उनका क्या हाल चाल है?
0: नहीं, ये अगर जेएनके की बात करें तो ये मेडिसिनल प्लांट्स में एक बायोडाइवर्सिटी रिच यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे अच्छे खासे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, एक तो तादाद में, दूसरी उनकी डाइवर्सिटी में, यानी बहुत स्पीसीज यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स की पाई जाती है। तो मेडिसिनल प्लांट्स का यहाँ पे एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट अभी चल रहा है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ने एक यहाँ एक पॉलिसी भी स्टार्ट की है, NTF पॉलिसी। तो वो NTF पॉलिसी में क्या है, NTF पॉलिसी में अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स भी कुछ एरियाज में इन ऑपरेशन है, जिसको डिपार्टमेंट बड़ा रेगुलेट करता है थ्रू BMCs बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज। तो उसमें एक डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि जो हमारे वहाँ रूरल लाइवलीहुड है, फ्रिंज विलेजेस, फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस, इन पर्टिकुलरली जो वहाँ पे हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, तो वो मेनली वो लोग कलेक्शन करते हैं, तो उनका जो इनकम है, लाइवलीहुड इनकम जो उनका है, वो बहुत इनकम उनको इनकम उससे है। तो बाकी हमारा जो मेडिसिनल प्लांट्स का यहाँ बहुत अच्छा है, उनकी कंजर्वेशन, उनकी प्रोटेक्शन, और अभी जो हमने उनको इसमें लाया कि लाइवलीहुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड डिपार्टमेंट ने वो बना दिया।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक साहब, अपने तमाम सुनने वालों को ये बता दें कि आज के हमारे गेस्ट थे शौकत अहमद कुट्टू साहब, आप डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर

0: हैं डिमार्केशन फॉरेस्ट डिवीजन कश्मीर, आप आए वन महा उत्सव पे हमारे साथ बात की, इस हफ्ते के ताल्लुक से हमारे साथ बात की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
0: तो सुनने वालों से लेते हैं इजाजत पयाम सुबह प्रोग्राम से, अपने मेजबान रशीद निजामी को दीजिए इजाजत, अब अगली आवाज होगी नाहिदा बशीर की।
2: शुक्रिया रशीद साहब। समीन आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे पयाम सुबह, हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। यह आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 68.8 मीटर ते FM 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन वलो चकृत रोबोजो फनकार गुलाम कदिर हाफिज दिन सती ये मंडिश बुजुते कला में शमस फकीर।

0: देर। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से खबरें नष्ट करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.

जी दोस्तों, ये था जिंदगी और मौत फिल्म का नगमा। महेंद्र कपूर की आवाज़ थी, शकील बदायूनी के बोल थे और सी रामचंद्र की मौसीकी थी। और अब आपके नज़र करते हैं अनवर का गाया हुआ नगमा। ये है फिल्म ये इश्क नहीं आसां से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी है, अनिल बख्शी के बोल हैं और आवाज़ अनवर की।

दोस्तों, ये है आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ नगमा। नगमा लिखा है गुलशन बावरा ने, आर डी बर्मन की मौसिकी है और फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

0: समीन, आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे थे। आखिर पर आपने हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज़ में साहिर का लिखा हुआ गीत सुना और इसकी मौसीकी तरतीब दी थी रवि ने। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। अब हमारे यहाँ से खबरें नष्ट होंगी, पहले उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख अनवारुल हक।

मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है प्रोग्राम बज़्म-ए-निस्वां।

0: वहाँ यूनिफॉर्म पहना एक यूनिफॉर्म कोड हो जाता है, जहाँ पे हम बच्चे को भेजते हैं और वहाँ तरह तरह के लोग मिलते हैं। उसे उस्ताद भी मिलता है, ड्राइवर बस ड्राइवर भी मिलता है उसे। जब वो अपनी पसंद की कोई चीज़ दुकान से लेता है तो दुकानदार से भी इंटरेक्ट करता है, एक पियान से इंटरेक्ट करता है। क्लास में मुख्तलिफ 50 बच्चे हैं तो 50 घरों से आए हैं, तो 50 माहौल की
1: जी
0: आपस में बात करते हैं, यही उसका एक्सपोजर होता है। तो ये जो बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, ये बहुत ही एक कच्ची मिट्टी है, इसको जिस सांचे में डालोगे वो वैसा
1: बन
0: शेप ले
1: जाएगा
0: लेगा, ठीक
1: जी
0: है। ये मासूम है, बच्चा बहुत मासूम है। आप देखिए, छोटा सा बच्चा होता है हमारे सामने तो हम वो कश्मीरी में कहते हैं ना, एक खोखची दरवाजस पदकिंची खोख, तो वो कुछ भी नहीं होता है, मगर उसे डराते हैं कि उसके दांत लंबे हैं, उसकी आंखें चमकती हैं, उसके नाखून, तो वो एक इमेज क्रिएट करता है दिमाग में और वो डरने लगता है। जब भी कोई ऐसी चीज से वो देखता है या ऐसी क्रीपी आवाज सुनता है तो वो डर जाता है। दैट मीन्स वो हमारे अपने घर में उसका क्रिएट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे जब स्कूल जाएगा तो वहाँ पे खाली वो 5-6 किताबें पढ़ेगा, वो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन है उसी, उसकी तालीम है, क्योंकि आगे जाके बड़े होके उसके रोज माश उसको कमाना है, उसे घर चलाना है, उसकी फैमिली दोबारा होगी। तो जब वो स्कूल जाएगा, अच्छी तालीम हासिल करेगा, एक अच्छा पोस्ट, वो बिजनेस करेगा, तभी वो एक कामयाब इंसान बनेगा। मगर इसके साथ साथ इखलाकी तालीम बहुत ज़रूरी है। अब
1: जी
0: इखलाकी तालीम क्या है? इखलाकी तालीम समझे एक इखलाकी इकतदार, या फिर हम कहेंगे कि असूल,
1: जी
0: असूल पसंद बनना,
1: जी
0: मयार पे उतरना, या किरदार की तश्कील करना, ये इखलाकी जिम्मेवारी हम सब की। जब ये बच्चा स्कूल जाता है, अब उसे मॉरल एजुकेशन की शायद एक किताब देंगे, वो जरूरी नहीं है। वो प्रैक्टिकली क्या सीखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे आप घर में बैठे हैं, आप ऊंची आवाज में बोल रहे हैं,
1: जी
0: कभी कोई ऊंची आवाज में बोलता है, कभी कोई गाली गलौज कर लेता है, या कभी कोई लड़ाई झगड़ा करता है, या नेगेटिविटी फैलाते हैं। फॉर
1: जी
0: एग्जाम्पल, मैं अचानक से आपके बारे में बैक बाइटिंग शुरू करूंगी, आपके पीछे, आपको मालूम भी नहीं होगा, मगर मैं बीच, जहाँ पे सब लोग बच्चे भी होंगे, मैं ए इंसान के लिए या बी इंसान के लिए बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल करूंगी। ये बच्चा जो है, इसका मासूम जहन जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता इसके दिमाग में डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि एक बार क्या हुआ कि मेरा बच्चा आ गया तो अचानक से हर बात पे शिट कहने लगा। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, मैं बताना नहीं चाहूंगी, तो मगर बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो हमारी एक स्लैंग बन गए हैं। तो फिर मैंने उससे कहा कि बेटा, आपको पता है इसका मतलब क्या है, आप ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करो। तो वो कहने लगा कि मम्मा, ये तो सभी लोग बोलते हैं। मैंने कहा, सभी लोग बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो
1: ये
0: सही है।
1: सही है जी
0: उसके लिए वो बात एक स्लैंग था। या बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हम बड़े भी कह देते हैं, बिल्कुल मतलब नॉर्मल
1: आराम
0: सी,
1: से
0: आराम
1: जी
0: से, मगर उस लफ्ज़ का इम्पैक्ट बच्चे पे क्या होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। हम बहुत जल्दी जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, हम बड़े उदास हो जाते हैं, हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, या फिर झूठ बोलते हैं कि भाई बोल दो कि हम अंदर नहीं बैठे हैं, या
1: जी
0: फिर आज टीचर से बोल दो कि मेरे घर में शादी थी इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, या बोल दो कि मैं बीमार था। ये छोटी छोटी बातें जो है
1: आगे
0: वो
1: चल के
0: ही
1: तूल ले सकती हैं
0: जहन में उसके पनपने शुरू हो जाती है, और यही चीज़ें जब बड़ा हो जाता है उसे लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं, ये झूठ बोलना कोई मुश्किल बात नहीं है। मगर यहाँ पे बहुत सारी, ये हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे की होली सोली इखलाकी तालीम की होली सोली जिम्मेवारी माँ की है
1: जी
0: या बाप की है, या फिर हम स्कूल में कहेंगे कि भाई ये तो स्कूल से सीख के आया, नहीं, ये हम सब की जिम्मेवारी है। उसे अच्छे और बुरे की तमीज सिखाना, उसे गलत और सच बताना, या फिर उसे सच्चाई, ईमानदारी, हमदर्दी, बड़ों का एहतराम, छोटू से प्यार, ये सब चीजें हमें उसे आहिस्ता आहिस्ता सिखानी है। अब इसमें कौन से रोल मॉडल है जो इसे ये कर सकते? सबसे पहले हुए घर के वालिदैन,
1: जी
0: घर के जो आसपास में पेरेंट्स, जो बाकी सिबलिंग्स
1: बिल्कुल सही
0: है, रिश्तेदार है, या फिर स्कूल, स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल में बहुत सारे लोगों से वो मिलता जुलता है, और उसके बाद मैं ये भी कहूंगी कि जो हमारी सोसाइटी है वो भी अपना इसे पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं, उनकी भी इक्वली जिम्मेवारी है। पहले कहा जाता था कि मोहल्ले का एक घर का बच्चा पूरे मोहल्ले का बच्चा है, अगर कहीं मोहल्ले में कुछ गलत देखते थे किसी बच्चे में तो जल्दी से उसको डराते थे कि जाके मैं तुम्हारे बाप को ये बोल दूंगा। वक्त बदल रहा है और शायद वो पेरेंट इतना एग्रेसिव होता है कि इसने मेरे बच्चे के बारे में ऐसा क्यों
1: क्यों
0: कहा।
1: कहा।

0: ये नहीं कहना था,
1: लेकिन उससे बच्चे को शय मिल जाती
0: है, शय मिल जाती है। या फिर उस्ताद के स्कूल में जाके उस्ताद के सामने उस्ताद को भराबुल्ला कहना, या घर जाके ये कहना कि अरे तुम्हारे टीचर ने ये किया, तुम्हारे स्कूल ने ऐसा किया, तुमने तुम्हारे दूध वाले ने ऐसा किया, बिजली वाले ने ऐसा किया। ये सब चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता है हमें, हम जाने अनजाने उसके जहन में गलत चीज़ें पनपते हैं। देखिए आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है। हम कहते हैं कि भाई इसके बहुत सारे नुकसान हैं
1: जी,
0: मोबाइल हाथ में दिया बच्चे का, ठीक है। मैं कहूंगी कि आधी अधूरी तालीम सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे ज्यादा
1: खतरनाक है।
0: क्यों?
1: क्योंकि
0: नीम हकीम खतरा है जान, ये याद नहीं आ रहा था मुझे। क्या होता है कि सोशल मीडिया, आपके हाथ में वीडियो है, आपके हाथ में एक मूवी आप देख रहे हैं बच्चे के साथ, उसमें एक हीरो है, एक विलन है। पहले विलन बहुत आराम से वो जीत रहा है, झूठ बोल रहा है, वो जीत रहा है। आखिर में कुछ कार्टून भी अगर देखेंगे, आखिर में क्या होता है, एंड उसका होता है कि हीरो ही जीतता है। अगर यही बात हम उसके बाद बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे कि देखो उसने कितना बुरा किया, देखो ये अच्छा था, ये सच्चाई पे था, वो ईमानदार था, वो बेईमान था, ये सब चीज़ें अगर हम उस बच्चे के साथ खाने के दौरान बात करेंगे। आज क्या हो गया कि माँ अलग टाइम पे, बाप अलग टाइम पे, बच्चे ऊपर कमरे में खाना खा रहे हैं। नहीं, दस्तरखान का मतलब क्या था? बस दस्तरखान का मतलब था कि शाम को हम सब मिल के बैठेंगे और मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम यही इश्यूज़, यही छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। और मैं कहती हूँ कि ये प्रैक्टिकल वे है उसको इखलाकी तालीम देने का, कि उसको समझाना कि भाई देखो ये सही है, ये गलत, ऐसे इसके बारे में, बड़ों के बारे में हमें इस तरह से बात करनी है। आपको यह पता है कि हम जब कश्मीरी में बात करते थे हमें हथर्स करके बात करना पड़ता था, या इवन पंडित हथमारा कहके बात करते थे, और अब तो तू तड़ाक में भी बात कर लेते
1: हैं
0: और वो उसे अपना एक मॉडर्न ट्रेंड समझते हैं जबकि वो गलत है। तो इस तरह से हमें बहुत ही मोहतात रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो उसकी माँ की गोद है, और तरबियत जो बच्चे की है वो उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत एक अहम सबक है,
0: बहुत अहम सबक है, क्योंकि आज का बच्चा कल का सिटीजन है। ये जो आज बच्चा है ये खाली मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कल मेरे बच्चे, मेरे घर को ही नहीं मुनव्वर करेगा बल्कि ये पूरे आलम को करेगा, पूरे मुल्क के लिए एक अच्छी मिसाल बनेगा। हाँ, अगर आपने अच्छी तरबियत नहीं की, अगर आपने अखलाकियात उसमें अच्छी तरह से नहीं दिए हैं, तो क्या होगा कि वो चोर डाकू जो है वो माँ की पेट से तो नहीं निकला है ना।
1: अच्छा,
0: चोर
1: एक चीज यहाँ मुझे ना, मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगी लेकिन ये बात बहुत जरूरी है फौजिया जी, कि मुझे माओ से भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है। कुछ माओ से वो अपनी बेटी को ये सिखाती हैं कि बाहर जा रही हो किसी से कोई चीज नहीं लेना, कोई अगर तुम्हें प्रपोज करता है या तुमसे बात करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल मना कर देना, लेकिन वो बेटे को ये नहीं सिखाते हैं कि
0: हाँ,
1: किसी को कोई चीज नहीं देना, तुम किसी को प्रपोज नहीं करना, किसी लड़की को छेड़ना नहीं, किसी को सताना नहीं। या हम बेटी को ये कहते हैं कि आप ससुराल जा रही हैं वहां ऐसे ऐसे ऐसे करना, बेटे को हम कभी ये नहीं सिखाते हैं
0: कि बीवी आप ला रहे हो
1: उसके साथ तुम कैसा बर्ताव करना, उसके माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना। तो यहाँ पे
0: ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये इंसान जब एक लड़की में ऐसी चीज दिमाग में आ जाए तो वो कहती है कि मैं कुछ भी, कोई भी बैरियर तोड़ने को लिए तैयार हूँ। देखिए कुछ चीजें हैं बहुत जरूरी, जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज है। हम कहते हैं कि भाई ये हमारा राइट है, हम बोलेंगे, सोशल मीडिया पे बोलेंगे, हम कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम बोल सकते हैं। मगर उससे पहले बच्चों को ड्यूटी सिखाएं। अगर आप पिकनिक पे गए हैं तो कचरा तो ना डालें, ये तो बताएं कि भाई पानी है इसको खराब ना करें,
1: साफ रखें,
0: पॉलिथीन डाला है उसे उठाएं, अगर हम स्कूल में हैं तो बेंचेस ना तोड़ें, अगर घर पे हैं तो बड़ों की इज्जत करें, बड़ों से बात करें। तब क्या होता था कि नानी अम्मा के पास बैठ के कहानियां सुनते थे और उन
1: कहानियों में से ही सबक
0: होता था, क्योंकि बच्चा कहानी सबसे ज्यादा अच्छी तरह सुन पाता है और बाद में जब उसे वो मॉरल उसका कंक्लूजन देंगे तो वो बच्चा समझ जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। या हम कहेंगे कि मेंटल डेवलपमेंट, एक फिजिकल डेवलपमेंट पे तो हम बहुत खर्च करते हैं मगर मेंटल डेवलपमेंट पर हम ज्यादा जोर नहीं देते हैं। या फिर सेफ एनवायरनमेंट। आप देखिए, लड़की को कहेंगे कि भाई आप एहतियात करो, आप इससे डरो, आप

0: उससे डरो, लड़के से नहीं कहेंगे, डरना नहीं है मगर
1: किसी को
0: उससे
1: डराना नहीं
0: डराना भी नहीं है,
1: है जी।
0: सेफ एनवायरनमेंट देना है। हम सब की जिम्मेवारी है कि अगर एक बच्चा सड़क पे चल रहा है वो हम सब का बच्चा है, हमें उसे सेफली देखना है कि
1: जी
0: क्या कर रहा है ये, कहीं वो गलत काम तो नहीं, हमें उसे टोकना है वहां पर, ये सोच के कि मेरा बच्चा नहीं है मैं क्यों टोकू, ये गलत सोच है।
1: जैसे आज सबसे बड़ी वबा है फौजिया जी, अगर हम देखें ड्रग्स हमारे
0: ड्रग्स
1: यहाँ
0: है
1: बहुत, लेकिन एक बात है कि अगर मैं माओं की भी बात करूँ या पेरेंट्स की बात करूँ, तो वो इतना शेल्टर करते हैं अपने बच्चे को,
0: बहुत ज्यादा
1: इतना पर्दे
0: ओवर
1: डालते हैं,
0: प्रोटेक्टिव।
1: इतने पर्दे डालते हैं कि हाय कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ी
0: शौके
1: नाइंसाफी
0: मैं
1: कर रहे
0: आपको
1: हैं।
0: एक चीज याद आ गया मुझे कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो क्या होता था कि सैटरडे के दिन, मुझे याद आया कि सैटरडे के दिन हमारा होता था आधा दिन हमें क्लासरूम साफ करना होता था,
1: जी
0: झाड़ू मारना होता था, धोना होता था, और आधे दिन के बाद हमें हाफ डे के बाद हमें डिबेट्स होते थे, ड्रामा
1: जी
0: होते थे, क्लब्स होते थे, हॉल में सब मिलते थे। और ये अब ये जो ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट स्कूल में पियान नहीं था,
1: जी
0: या उसी दिन सफाई होती थी या बच्चों से सफाई कराते,
1: तरबियत
0: ऐसा
1: का
0: नहीं
1: एक
0: था,
1: हिस्सा
0: वो
1: था,
0: एक तरबियत का हिस्सा
1: मुझे बिल्कुल
0: होता
1: याद है
0: था।
1: क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ।
0: और वो वाला दिन हमारा सबसे ज्यादा खुशी का दिन होता था
1: जी
0: कि हमें आज सफाई करनी है,
1: अच्छा,
0: चार्ट नए लगाने हैं।
1: अमूरे खानदारी भी उसमें सिखाया
0: हाँ
1: जाता था,
0: अमूर, अच्छा उस
1: सिलाई बुनाई भी सिखाया
0: सिलाई,
1: जाता था।
0: और वो वार उस वाले दिन हम वाकई में जैसे पिकनिक मनाते थे, और मतलब बिल्कुल इनडायरेक्टली हमें बताया जाता था कि क्लासरूम साफ कैसे करना है, कमरे को ऐसे साफ, चार्ट कैसे लगाने हैं, टेबल कवर कैसे रखना, और इसमें हमें कुछ पॉइंट्स मिलते थे। आज हम जब क्लास में बच्चों को निकलते वक्त कहते हैं कि भाई जरा ये कागज उठाओ, ये बात नहीं है कि वहां पियान सफाई नहीं करता है, पियान सफाई करता है, मगर ये एक तालीम का एक हिस्सा है, मगर पेरेंट्स को एतराज है, भाई हम
1: जी
0: तो इतना पैसा दे रहे हैं, हम तो ये हमारे बच्चों से सफाई क्यों करवा रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि हमने बच्चों को बोला छोड़ दो इसको, भले से तुम लोग कचरा डालो, मगर एक उस्ताद होने के नाते मैं ब्रेक में ये ड्रिल जरूर कराती, क्यों, क्योंकि मैं चाहती थी कि इनमें ये बात इनकलकेट हो कि जहां मैं बैठा हूं वहां वो कमरा मुझे साफ
1: और फिर आप
0: रखना है।
1: देखिए फौजिया जी, ऐसे बच्चों के कमरे भी बिखरे पड़े होते हैं
0: बिखरे पड़े
1: घर
0: होते,
1: में, वो जो सख्ती है वो माँ पे ही आती है
0: और फिर माँ ही सबसे ज्यादा शिकायत करती है कि
1: जी।
0: देखो जी इनमें तमीज नहीं है, तरीका नहीं है, बात करने का शऊर नहीं है, ये लोग क्लास कमरे को ठीक नहीं रखते, मगर ये जो डिसिप्लिन है, ये जो मोटिवेशन है, ये बच्चे पे परवान चढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता।
1: जी
0: आप आखिर में जब वो बड़ा हो गया, आप उसकी शेप बन गई, आप उस वक्त कुछ करना चाहें तो नहीं हो पाता है। तो इखलाकी तालीम हमें, हम सबकी जिम्मेवारी है, एक बच्चे को एक बहुत ही बाशऊर, एक जिम्मेदार शहरी बनाना हम सबका काम है, उस पे तनकीद करना, उस पे फिक्रे कसना बहुत ही गलत बात।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, और वाकई आपकी जो बात है वो असर रखती है, ज़रूर हमारी बहनें जो हैं इस पे अमल करेंगी, और मैं भी कुछ बातें जो हैं वो याद रखूँगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबरक ताला आप सभी को उम्र नूर शान ज़ुल्कर्नैन अता फ़रमाए, आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर होंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर, जब तक के लिए खुदा हाफिज़
0: खुदा
1: नासिर।
0: हाफिज।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: समय आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम बजमनिस्वा, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें नश्र करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिक

0: योजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Union Home Ministry has designated

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, पहले निशस्त के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए नगमे से। इसके बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने, इकबाल कुरैशी की मौसीकी है और फिल्म है ये।

विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म का ये नगमा था। वर्मा मलिक के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी थी और आवाज़ किशोर कुमार की थी। और अब आपको सुनवाएंगे एक बार फिर वर्मा मलिक के बोल उत्तम जगदीश की मौसीकी में। लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ें हैं और फिल्म है वारिस।

जी फौजी भाइयों, ये था रविंद्र जैन का लिखा गीत रविंद्र जैन की मौसिकी में। यशुदास की आवाज़ थी और फिल्म थी चितचोर। और अब गरौंदा फिल्म का नगमा नक्शलालपुर ने इसे लिखा है, मौसीकार है जयदेव और इस नगमे को आवाज़ दी है रूना लैला ने।

0: जी फौजी भाइयों, ये था रूना लैला का गाया हुआ नगमा। जयदेव की मौसीकी थी, नक्शलाल पुरी के बोल थे और फिल्म का नाम था गरोदा। फौजी भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
3: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
2: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी

0: यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
1: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: फौजी भाइयों, वक्फे के बाद आपका प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं और आपको बताते चले कि आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से मुखातिब हैं और आप फिल्म नगमे सुन रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं DTH और ऑल इंडिया रेडियो के मोबाइल ऐप पर। और अगला गीत आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये है फिल्म मेरे जीवन साथी से। किशोर कुमार की आवाज़ है, गुलशन बावरा के बोल है और कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी है। लीजिए समाप्त कीजिए।

फौज भाइयों, ये थी कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजें। फिल्म थी रफू चकर। आइए अब आपको प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनाते हैं। ये है गुमराह फिल्म कनकमा। साहिर की बोल है, रवि की मौसिकी है और आवाज महेंद्र कपूर की।

0: जी फौजी भाइयों, ये था गुमराह फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर की आवाज़ में। रवि की मौसीकी थी और साहिर के बोल थे। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।
1: बोझ बन जाए तो

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 200.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 1:50 हो रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात हरियाणा

0: हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें रेलवे, सड़कें, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली की तरसील और तवानाई वगैरह भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बलोतरा में पचपेदरा के मकाम पर मुल्क का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया, जो मुल्क के तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में एक बड़ी कामयाबी है। जनाब मोदी ने बलोतरा में खिताब करते हुए कहा कि
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
0: इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चूरू सादुलपुर और चूरू रत्नागढ़ की रेल लाइन को दोहरा करने से मुतालिक प्रोजेक्ट और जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 और नेशनल हाईवे 125A को 4 लेन वाले प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये इमारत 23,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की आमद और रफ्त की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं, ताकि वो बिला रुकावट और आसानी से सफर कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सियाहत, तजारत और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज किया, जिसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है। इस स्कीम के लिए अगले 10 साल के दौरान 28,840 करोड़ रुपए सर्फ किए जाने का निशाना रखा गया है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को तकवीत देने की गरज से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सनांत के मकाम पर सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट मरकज का इफ्तिताह करेंगे। इसे 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है। ये मरकज मुल्क की तकनीकी साजो सामान तैयार करने के सफर में एक अहम संग मील साबित होगा। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्वस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। ये कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाज़त देगा कि वो इन अफराद के इकतसादी असासे को मुंजमद करे, असलहे की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें जब्त करें। UAPA की तरमीम से भारत के इंसदाद दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। इस तरमीम को 14 अगस्त 2019 में नोटिफाई किया गया था। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज इंतखाबी फहरिस्त के खसूसी नजरसानी अमल के तहत इंदराजी फॉर्म दाखिल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर, डिस्ट्रिक्ट इंतखाबी अफसर, इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर और बूथ सतह के अफसर ने दिल्ली में जारी इंतखाबी फहरिस्त की SIR के हिस्से के तौर पर उपराष्ट्रपति भवन में इंदराजी अमल में मदद की।
2: SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my

0: ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ मदर भारत।
1: सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो ओटीटी पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदाम करे। जराये के मुताबिक मजीद बताया जराये ने कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदाम की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मीशत, फिल्म इंडस्ट्री, ओटीटी प्लेटफॉर्म, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तहफ़ फराहम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने एतमाद जाहिर किया है कि अहमदाबाद और मुंबई को मिलाने वाला पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर 2019-29 तक मुकम्मल हो जाएगा। वो अहमदाबाद में नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उन्होंने गुजरात में रेलवे के जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया था। जनाब अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और गुजरात सेक्शन में 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। रेलवे के वजीर ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम मरहलावार तरीके पर किया जा रहा है। सूरत को बिलमोरा से जोड़ने वाला पहला सेक्शन अगले साल शुरू किए जाने का प्रोग्राम है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कम्प्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहिमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की सिमत में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहिमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियां बढ़ने की उम्मीद है। मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात पाए जाते हैं। इसी दौरान आज कौमी राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को हबस और गर्मी से कुछ राहत मिली। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच, जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब इसे तर्क करना पड़ा था। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों की क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

श्री 420 फिल्म का ये नगमा था मन्ना डे की आवाज़ में। और अब आपको सुनाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में सीता और गीता फिल्म का नगमा।

दोस्तों, ये था आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में सीता और गीता फिल्म का नगमा। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तीन देवियां से मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। एसडी बर्मन की मौसिकी है, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं।

दोस्तों, आपने एस डी बर्मन की मौसीकी में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुना। फिल्म का नाम था तीन देविया और आवाज़ें थी किशोर कुमार और साथियों की। यह आकाशवाणी श्रीनगर है, हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जत 68.8 मीटर ते FM 73.5 MHz पर समीन बलियो छकर तो बोजो फनकार छ गुलाम कादिर हाफिज दीन सती यमन निश बुजुते कलामे शाह गफूर।

जय हिंद फौज भाइयों, दूसरी निषद के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का पहला नगमा।

फौजी भाइयों, ये था पैगाम फिल्म का नगमा। सी रामचंद्र की मौसीकी थी, प्रदीप के बोल थे और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आपको बताते चले कि इस फिल्म में दिलीप कुमार के मद्देमुकाबले अदाकारी कर रहे थे राजकुमार, और राजकुमार हिंदी सिनेमा के तारीख के इन अजीम अदाकारों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी मुनफरिद शख्सियत, रौबदार आवाज़, बावकार अंदाज़ गुफ्तगु और जानदार अदाकारी के ज़रिए फिल्मी दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल किया जो आज भी शायकीन के दिलों में महफूज है।

जी फौजी भाइयों, ये था पैगाम फिल्म का नगमा। श्री रामचंद्र के मौसीके थे, प्रदीप के बोल थे, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ें थी। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में अदाकार राजकुमार की, और राजकुमार की कल यानी 3 जुलाई को बरसी थी, और उनके बरसी के मौके पर फिल्मी हलके और मदा ने इन्हें अखराज अकीदत पेश किया। आपको बताते चले कि इनका असल नाम कुलभूषण पंडित था और वो 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में पैदा हुए, जो इस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा था।

जी फौजी भाइयों, ये था घराना फिल्म कनक माँ। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि की मौसीकी थी, आशफ भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अदाकार राजकुमार की। और राजकुमार तालीम मुकम्मल करने के बाद मुंबई के माहम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार करते हैं। और कहा जाता है कि एक रात गश्त के दौरान एक सिपाही ने इनकी वजाहत और शख्सियत की तारीफ करते हुए इन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाई का मशवरा दिया। ये बात इनके दिल में घर कर गई। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में फिल्म साज बलदेव दोहे किसी काम से आए हुए थे। वो राजकुमार के अंदाज़ गुफ्तगू से इस कदर मुतासर हुए कि इन्हें अपनी फिल्म शाही बाजार में काम करने की पेशकश कर दी।

और भाइयों, ये था दिल एक मंदिर फिल्म का नगमा सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

जी फौज भाइयों, आप फिल्म संगीत का प्रोग्राम सुन रहे हैं और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अदाकार राजकुमार की और राजकुमार को फिल्म शाही बाजार का ऑफर आया। फिल्म साज

बलदेव दुहे जी से, और अगरचे शाही बाजार की तकमील में काफ़ी वक्त लगा, इस दौरान माशी मुश्किलात के बायस उन्होंने 1952 और में फिल्म रंगीली में एक मुख्तसर किरदार कबूल किया, मगर यह फिल्म कामयाब ना हो सकी। बादशाह शाही बाजार भी बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। मुसलसल नाकामियों के बायस कई लोगों ने इन्हें फिल्म के लिए नामौजूद करा दिया, जबकि बास का ख्याल था कि वो मनफी किरदारों में ज़्यादा मौजूद रहेंगे। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जद्दोजहद जारी रखी।

0: जी फौजी भाइयों, आप फिल्म संगीत का प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।
1: सर्विस सिलेंडर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बरसानी के

0: भव्य जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
1: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
0: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहने। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
1: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: फौज भाइयों, वक्फे के बाद आपका प्रोग्राम एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं और आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम में कुछ और गीत और आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में अदाकार राजकुमार के बारे में और 1952 और 1957 के दरमियान उन्होंने मोतादिल फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए मगर कामयाबी इनसे दूर रही। इनकी किस्मत इस वक्त बदली जब इन्हें फिल्म मदर इंडिया में एक किसान का किरदार मिला। अगर फिल्म की मरकजी शख्सियत नरगिस थी लेकिन मुख्तसर किरदार में भी राजकुमार ने अपनी मजबूत अदाकारी से नाजरीन को मुतासर किया। फिल्म की आलमी कामयाबी ने इन्हें बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पहचान दिले और फिल्मी दुनिया में इनकी हैसियत मुस्तहकम हो गई।

जी फौज भाइयों, ये था नील कमल फिल्म का नगमा। साहिर के बोल थे, रवि की मौसीकी थी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। और हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में अदाकार राजकुमार के बारे में। और राजकुमार ने एक मुस्तहकम मकाम बनाया और इसके बाद पैगाम में उन्होंने दिलीप कुमार के मद मुकाबल अपनी सलाहियत का भरपूर इजहार किया। दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर और दूज का चांद जैसी फिल्मों ने इन्हें सफ़े अव्वल के अदाकारों में शामिल कर दिया। वक्त के साथ साथ वो इस मकाम पर पहुंच गए जहां वो अपनी पसंद के किरदार मुंतखब करने लगे।

जी फौजी भाइयों, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं फिल्म संगीत का, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अदाकार राजकुमार की और 1965 में रिलीज होने वाले फिल्म काजल ने इनकी शोहरत में मजीद इजाफा किया, जबकि इसी बरस बीआर चोपड़ा की फिल्म वक्त ने इन्हें बेमिसाल मकबूलियत अदा की। इस फिल्म में अदा किए गए इनके मकालमे आज भी जुबान जद आम है और इनकी आवाज और अंदाज के नकल आज भी फनूनी अदाकारी के शायकीन करते हैं। इनके मकालमों की अदायगी ने फिल्मी तारीख में एक मुनफरद रिवायत कायम की, जिसने आने वाली नस्लों के अदाकारों को भी मुतासर किया।

जी फौज भाइयों, ये था वक्त फिल्म का नगमा मन्ना डे की आवाज़ में। और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में अदाकार राजकुमार की। राजकुमार ने नील कमर, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीज़ा जैसी फिल्मों में रोमानवी किरदार भी अदा किए। अगरचे इनकी शख्सियत ज़्यादातर बावकार और मजबूत किरदारों से मंसूब रही, ताहम उन्होंने हर तरह के किरदार में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। फिल्म पाकीज़ा में इनका अदा किया गया मकालमा, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा, मैली मैली हो जाएगी, आज भी हिंदी सिनेमा के यादगार तरीन मकालमों में शुमार किया जाता है। राजकुमार ने अपनी पूरी फिल्मी ज़िंदगी में ये साबित किया कि अदाकार की असल ताकत सिर्फ ज़ाहरी शख्सियत नहीं बल्कि आवाज़, मकालमे की अदायगी, एतमाद और किरदार में ढल जाने की सलाहियत होती है। यही वजह है कि इनके वफात के बरसों बाद भी इनका नाम फिल्मी दुनिया में अजीम तरीन अदाकारों में एहतराम के साथ लिया जाता है और इनका मुनफरिद अंदाज आज भी फिल्मी दुनिया के लिए एक मिसाल समझा जाता है।

फौजी भाइयों, ये था हीर रांझा फिल्म का नगमा। कैफी आजमी के बोल थे और आवाज लता मंगेशकर की थी। इसी के साथ अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हमारे यहाँ से उर्दू खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 1,00,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी, 24,000 से जायद यात्रियों ने किए पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। मरकजी सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे को बंद करने से मुतालिक मुजवजा मनसूबे को मनसूख करने का किया फैसला। और मरकजी वजारत दाखिला ने 23 अफराद को UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में किया शामिल। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बलोतरा राजस्थान में 1,06,000 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई एक का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक पेट्रोकेमिकल, शहरी ट्रांसपोर्ट, रेलवे, शाहराहों, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील से हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पचपदरा में भारत की पहली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए 54,000 नौजवानों में तकरीरनामे भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद भी अपनी तरक्की की रफ्तार को जारी रखेगा।
2: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो तीनों ममालिक की आला क्यादत से बाहमी दिलचस्पी के कई मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसका मकसद आपसी रिश्तों में मजीद इस्तेकाम लाना है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी से जारी है और आज भी हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। तफसीलात के मुताबिक आज अब तक कुल 12,000

0: यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और यूं दर्शन करने वालों की तादाद 24,000 से जायद हो गई है। इंतजामिया ने यात्रियों की सलामती और यात्रा के ऐसे इनका के लिए तमाम इंतजाम किए हैं और यात्रा पर आने वाले यात्री न सिर्फ यहां की खूबसूरती बल्कि मकामी लोगों की मेहमान नवाजी से भी जबरदस्त मुतासिर नजर आ रहे हैं।
1: शंकर भगवान की जय। मैं विश्वनाथ यमुनानगर निवासी, मेरी 17वीं यात्रा है। जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा। सरकार से ये आशा करता हूँ कि अगले साल इससे भी कुछ बेहतर करे।
2: मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं पंजाब से सरहंद से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, भोले बाबा ने हमें बुलाया दूसरी बार भी, ऐसे ही हर साल बुलाए। प्रशासन बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है।
3: मेरे नाम टीना गावा फ्रॉम सरहंद पंजाब, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ भोले बाबा सबको ही बुलाए,
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए उन पर जोर दिया था कि वो वोकल फॉर लोकल जज्बे को तकवीत बख्शते हुए अपने अखराजात का 10% हिस्सा मकामी अशिया खरीदने पर सर्फ करें ताकि यहां के लोगों बिलखसूस नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों और जम्मू कश्मीर की मईशत मजीद मजबूत हो जाए। दरियासना जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज मजीद 4,812 यात्री वादी पहुंचे, जिनमें 2,041 मर्द और 2,771 खवातीन श्रद्धालु शामिल हैं। अदालत उजमा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। श्रद्धालुओं की सलामती और यात्रा के ऐसे इनका के लिए इस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू व कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी भारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। महकमा जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा ने यात्रा के पहलगाम रूट का तफसीली दौरा करके वहां आबरसानी के बुनियादी ढांचे और पीने के पानी की सप्लाई का जायजा लिया। उन्होंने साथ ही जारी यात्रा के दौरान इंसदादी सैलाब के लिए दरकार इकदाम का भी जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे के रनवे को बंद करने से मुतालिक मुजवजा मनसूबे को मनसूख करने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर को बिला खलल एयर कनेक्टिविटी दस्तियाब होगी, नीज मुसाफिरों और सयाहों को राहत मिलेगी। वजीर आला ने कहा कि उन्होंने इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के लोगों, ताजरों और सियाहत से जुड़े अफराद के मफादात को तहफ्फुज देने के लिए यह मामला जाती तौर पर मरकजी सरकार के साथ उठाया था। वजीर आला ने इस जमन में मरकजी वजीर दिफा और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा है कि सियाहत के इस सीजन में हवाई राबते को बरकरार रखना जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने उन्हें एक अजीम वतन परस्त फलसफी और रूहानी तौर पर दूर अंदेश शख्सियत करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की रूहानी तालीमात विकसित भारत के विजन को हासिल करने में नई तवानाई के साथ मुल्क की रहनुमाई करती रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मुल्क के एक अजीम दानिश्वर और कौम परस्त स्वामी विवेकानंद जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने कहा कि स्वामी जी की तालीमात आपसी भाईचारे, अखुवत और इंसानियत की बेलोस खिदमत करने जैसे अकदार को तकवियत बख्शते हैं और आजकल के दौर में भी हम सब के लिए मशाल राह हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। मरकजी वजारत दाखला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शूरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलह की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। ये कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वो इन अफराद की इक्तसादी असासे को मुंजमद करे, इस असलह की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें भी जब्त करें। UAPA की तरमीम से भारत की इंसदादी दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं।

0: सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने आज नंदीमर्ग कुलगाम में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों की तरक्याती जरूरियात और आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों के मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलों को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बाद में वजीर मौसूफा ने इलाके में एक सड़क प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा और इलाके के लिए मुतअद्दिद नए तरक्याती प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया। आज इमदादी बाहमी का बैन अल-अक्वामी दिन है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और तावुन के वजीर अमित शाह ने इस मौके पर आवाम के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि इमदादी बाहमी भारत में किसानों, खवातीन और छोटे दर्जे के कारखानों को कुवत बख्शने की मुहरिक रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि इमदादी बाहमी भारत की सकाफत, मजमू कुवत और खुद इन्हिसारी की बुनियाद है। आम लोगों की सहूलियत के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार में ईमेल का इंदराज कराने की सहूलियत दस्तयाब कराई है। ख्वाहिशमंद अफराद ईमेल का इंदराज या अपडेट आधार ऐप के जरिए कर सकते हैं। ये सहूलत 1 जुलाई को मुतारिफ की गई है और आइंदा 6 माह तक दस्तयाब रहेगी। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 2 रोज के लिए हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने कहा है कि आज दोपहर के बाद कल शाम तक अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती है, जबकि कई मकामात पर तेज बारिश के साथ सैलाबी रेलों का भी एहतमाल है। लोगों से कहा गया है कि वो नदी नालों और तूदे गिराने के एहतमाल वाले इलाकों में नकल हमल में एहतियात बरतें। और अब क्रिकेट। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 बैन अल-अक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय पेश है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आज दा पहाड़ी प्रोग्राम कहन का मैं तुस्ता मेजबान शबीरम शमस तुसी खिदमत बिच हाजिर और सो सारे को अदब ताजिम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जे तुसी सारे खैर खरीयत नाल होसो। सामीन अल्लाह ताला सुन लखा हजारा नियमत नाल इंसान को नवाजिया और हर वेले हर कड़ी नियमत की बारिश करदा जुलदा तो इन्हें नियमत का शुक्र करना भी जरूरी है। अल्लाह ताला किसी बंदे को नियमत के बदले कोई दौलत नहीं मंगता बल्कि रब चाहता है जो बंदा उस नियमत का शुक्र करे। शुक्र किते का तरीका यह भी है जे दिल नाल इंसान अल्लाह ताला दिया इन नियमत की कदर करे और यह समझे कि नियमत सिर्फ वो अपने फजल नाल देंदा है। जुबानी नाल भी शुक्र करा मगर हकीकी शुक्र यह है जे उस दिती दिया नियमतों को नेक कमां बिच लावां और अल्लाह को राजी करा। शुक्र करने नाल नियमत बद्दियां जुलदियां तो ना शुक्री नाल नियमत खसी जांदी है। तो सामीन आओ पहले सुनदे हैं अब्दुल रशीद कुरैशी की आवाज़ बिच लोक गीत।

जिसे अमीन गुलाम हसन तबसम दी आवाज भी तुम सुन रहे हो। गीत उम्मीद कर संगीत पसंद किया। समीन इंसान पूरी उम्र माल दौलत शोहरत इज्जत की तलाश बिच इतनी मेहनत करता है जो इस सब कुछ हासिल हो गया इस नाल दिल बिच सुकून आ गया सी। लेकिन यकीन बनो कितनी भी दौलत माल बड़ाई शोहरत हासिल करके ना इंसान इस सब सुकून दबा इस नहीं बन सकते बल्कि नेकी कर का सुकून देंदा है। किसी मोहताज की मदद कर का सुकून हासिल होता है। सच्चाई दे राह ता टुर का सुकून मिलता है। सब तो बड़ी चीज जिस नाल दिल का इत्मीनान ता सुकून हासिल हुआ वह है जिक्र इलाही यानी उस महबूब को याद करा जिस सुन असों को असों वास्ते इस सारा कुछ पैदा किया जरा सब दा मालिक है। अस्त गुनाह देख का अजाब नहीं करता बल्कि मुड़ मुड़ का इन्हों का पला सट का टकता है। तसामीन आओ प्रोग्राम अगर सुन दिया यूनुस ललावी की आवाज़ में एक गीत।

0: मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हमारे यहाँ से पहाड़ी खबरें नष्ट होंगी।
1: सामीन आदब, ए आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। 4:20 हो गए। पहाड़ी खबरनामा कैन कैमे जावेद मुगल। सब ते पहला खास खास खबरां दिया सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन राजस्थान विच 1,00,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टां को कीता घूम देना वक्फ। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा सोहने तरीके नाल जारी। 24,000 थी ज्यादा यात्रियां सुन कीते गुफा विच शिवलिंगम दे दर्शन। मरकजी सरकार सुन श्रीनगर हवाई अड्डे उत्तर रनवे को बंद करना थी मुतलिक मजवजा मनसूबे को मनसूख करना दा कीता फैसला। और मरकजी वजारत दाखला सुन 23 नफरां को UAPA दे तहत दहशतगर्दां दी फरिस्त विच कीता शामिल। हुण पेश है इन्हां तों दुईआं खबरां दी तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन अज बलोत्रा राजस्थान विच 1,06,000 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टां दा इफ्तताह कीता ते कुझां दा बटा रख्या। इन्हां प्रोजेक्टां दा तालक पेट्रोलियम कैमिकल्स, शहरी ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, शाहरावां, काबले तजदीद तवानाई और बिजली दी तरसीम नाल है। वजीर आजम सुन पचपदरा विच भारत दी पहली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोलियम कैमिकल कंपलैक्स को भी कौम दे नां वक्फ कीता। उन्हां सुन मुख्तलिफ महकमें विच तैनात कीते गए 54,000 नौजवानां विच तकरीरनामे बंडे। तकरीब नाल खिताब करदे होए वजीर आजम सुन आखिया जे भारत मुख्तलिफ चैलेंजां दे बावजूद भी तरक्की दी रफ्तार को जारी रख सी।
2: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
1: सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा धुआं रवां पहलगाम और बालतल थी सोहने तरीके नाल जारी है। और अज भी हजारां दी तादाद विच शरदालुआं सुन पवित्र गुफा विच हाजरी दित्ती। तफसीलात दे मुताबिक उहनां तोणी मजमूई तौर उत्ते 12,000 यात्रियां सुन पवित्र गुफा विच शिवलिंगम दे दर्शन कीते हन। इंतजामिया सुन यात्रियां दी सलामती और यात्रा दे सोहणे इनेकाद वास्ते तमाम इंतजामात कीते हन। और यात्रा उत्ते आने वाले यात्री न सिर्फ इत्थे दी खूबसूरती बल्कि मकामी लोकां दी मेहमान नवाजी थी जबरदस्त मुतासिर नजर आ रहे हन।
3: शंकर भगवान की जय। मैं विश्वनाथ, यमुनानगर निवासी। मेरी 17वीं यात्रा है। जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा। सरकार से ये आशा करता हूँ कि अगले साल इससे भी कुछ बेहतर करे।
4: मेरा नाम सुनीता रानी है। मैं पंजाब से सरहंद से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, भोले बाबा ने हमें बुलाया दूसरी बार भी। ऐसे ही हर साल बुलाए, प्रशासन बहुत

0: स्कूल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरे नाम टीना गावा फ्रॉम सरहंद पंजाब। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कहती हूँ भोले बाबा सबको ही बुलाएं। मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुल कल यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए उन्हें जोर दिता आसा जे ओ वोकल फॉर लोकल जज्बे को तकवी बख्शते हुए अपने अखराजात का 10% हिस्सा मुकामी चीज़ा किन्ना उतर लावन ता जे इत्थे दे लोकां बिलखसूस नौजवानों वास्ते रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा हो सकन और जम्मू व कश्मीर की मईशियत मजीद मजबूत होवे। इसी सिलसिले में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से अज मजीद 4,812 यात्री वादी पहुंचे, जिन्हां विच 2,041 जने और 2,771 कालसिरियां शरदालू शामिल हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन श्रीनगर हवाई अड्डे के रनवे को बंद करने के हवाले से मौजूदा मनसूबे को रद्द करने वास्ते मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला सुन आखे जे इस फैसले से जम्मू व कश्मीर को बगैर कसा खलल एयर कनेक्टिविटी दस्तियाब हो सी, इस दे अलावा मुसाफरों और सैलानियों को राहत मिल सी। वज़ीर आला सुन आखे जे उन्होंने सुन इस हवाले से जम्मू व कश्मीर के लोगों ताजरां और सेहत नाल जुड़े नफरां दे मफादात को बचेना वास्ते ए मामला जाती तौर उते मरकजी सरकार नाल चाया आसा। वज़ीर आला सुन इस ज़िमन विच मरकजी वज़ीर दिफा और शहरी व हवाबाजी दे वज़ीर राम मोहन नायडू दा शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सुन आखे जे सेहत दे सीजन विच हवाई राबते को बरकरार रखना जम्मू व कश्मीर दी मईशियत वास्ते अहमियत दा हामिल है। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन अज स्वामी विवेकानंद को उनकी बरसी उत खराज अकीदत पेश कीता। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच नायब सदर सुन उन्हां को एक अजीम वतन प्रस्त फलसफी और रूहानी तौर उत दूरअंदेश शख्सियत करार दिता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन आखे जे स्वामी विवेकानंद की रूहानी तालीमात विकसित भारत के विजन को हासिल करना विच नवी तवानाई दे नाल मुल्क दी रहनुमाई करदी रही सी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन मुल्क दे एक अजीम दानश्वर ते कौम परस्त स्वामी विवेकानंद जी को उनकी बरसी उत खराज अकीदत अदा कीता है। एक सुनिया विच एलजी सुन आखे जे स्वामी जी दी तालीमात आपसी भाईचारे और इंसानियत दी बेलोस खिदमत करने जजे अकदार को तकवीयत बख्शती रही सी। मरकजी वजारत दाखला सुन पाकिस्तान के त्रोबी नफरों को कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम वाले कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। यह दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दुई तंजीमों नाल ताल्लुक रखते हैं। इन्हों नफरों को शूरश पसंदी, नवे लोगों की भर्ती करना, हथियार की सप्लाई और जम्मू व कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी तक कई दुई सरगर्मियों इन दे मलवस होने उते दहशतगर्द करार देता है। एक कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जिजी एजेंसिया को इस चीज की इजाजत देसी जे ओ इन नफरों की इकतसादी असाजत को मुंजमद करे, हथियारों की खरीदो फरोखत उते पाबंदी लावे और उनकी जायदाद भी जब्त करे। UAPA बिच तरमीम थी भारत की इंसदाद दहशतगर्दी दे कानून फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इस दे जरिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। यह खबरां तुसी आकाशवाणी दे श्रीनगर स्टेशन ते सुन रहे हो। खबरां तुसी आकाशवाणी दी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH उता भी सुन सकते हो। सेहत और तिबी तालीम दी वजीर सकीना इतू सुन अज नंदी मरग कुलगाम विच एक लोकां दे दरबार दे दौरान लोकां दी तरक्याती जरूरतां और लोगों को दरपेश मसायल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने सुन लोगों के मसले गौर नाल सुने और यकीन दिता जे चाहे गए मामलों को तरजीह बुनियादों उत्ते हल किया जुलसी। बाद में वज़ीर मसूफा सुन इलाके में एक सड़क प्रोजेक्ट का भी बटा रखा और इलाके वास्ते कई नवे तरक्याती प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया। अज इमदाद बहमद बैनुल अकवामी ध्याड़ा है। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन और ताउन के मरकजी वजीर अमित शाह सुन इस मौके उत लोगों वास्ते नेक ख्वाहिशों का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सी पी राधा कृष्णन सुन आखिया जे इमदाद बहमी भारत में किसान कालसीरिया और निके दर्जे के कारखानादारा को कुवत बख्शने की मोहरक रही है। वज़ीर दाखला अमित शाह सुन अपने सुनिया विच आखे जे इमदाद बहामी भारत की सकाफत मजमुई कुवत और खुद इनसारी की बुनियाद है। महकमा मौसमियात सुन जम्मू व कश्मीर विच अगले दो ध्याड़ियां दे दौरान दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे सुन आखे जे अज दोपहर के बाद कल नमाशा तौनी अक्सर जाइया उतै

मुश्ताक साहब हूँ, मतलब कोर्स लिखी ना कोते माशाल्लाह, मतलब वनुड अल्लाह ताला मतलब वो चीज़ हो हिम्मत दा और बस दुआ थून कि अल्लाह ताला सुनो साया हमेशा कायम चीन ताकि असी जबानी करी बाशी करी असुड मनी लाई जरूरत हो असी कोई नौजवान को था बेशकुन अमान वापी को या अस बेशकुन मतलब यूनुस मजीद हो या आसिम यासीन हो जिया आलम हो मतलब इश्फाक अंजुम साहिब हाँ मतलब बदा कोई ना ना राइटर यहाँ को उसको बिलाल शेख साहब मतलब बस कोशिश थी ना लिखी नहीं और बड़ बेहतरीन लिखी नहीं कोई लिखी ना बस और कोशिश बनीजू बस की से बस की क्योंकि तड़प के तलब को बेटा इंसान हुको थी सोच दुनिया थी कोई कामयाबी के कामरानी हासिल भी इसलिए असुट कोशिश थी नहीं कि असुट पाजे यसी नौजवान उठ उस्ताद कोया वनी कोई बोझून उस्ताद उसी नला का सम हिसाब इस तो मुताल्लुक जोड़े कदरतरम सिंधा उम्मती कोई जा का सुन बुझ उलमाओं से ताल्लुक कशुन हुको थी सर मतलब सर दीन एडी अजनुट सुन आसान भी गलती कमी कोताही कोई से कमी इंदत नौजवान उठ पाजे तो मगर जोड़ लिखियो नहीं शोक हो सुन पाजे तो में कोई मंजे हुए कोई ऐसी राइटर यहाँ सेंसी नला कुम पाजे ताल्लुक जोड़े हुए ताकि सनी नोक पलक कोई दुरुस्त थी और कोने कमी कोताही से ठी गलती जब कोने इसे दुरुस्त थी उस्ताद वो चीज करो असुर उस्ताद फारिज के बने की प्यार मोहब्बत शफकत सिस्तम कोई शागिर था सिर्फ सिंचाई ताकि अगर सिर्फ सिंचाई कामयाब तो हुको थी असी कोई बाश ही नहीं भूल रिया क्योंकि बस शकुन नौजवानों कोई मतलब का मिठी जहां से कोई रजाई वनुज मतलब उम्मीद ही लुट चुकी असुट की नी नौजवान इसने कोई बाशी तो कलम जोर की दे मुछूटी जाए इसलिए असी कोई बुजुर्ग या सेंटेक में नी गुजारिश ही की सस तो में कोई स्टूडेंट या कोई तालबी या इल्मी हर इल्मेज को तो बस कोशिश थी ना सिंचुनी सम प्यार मोहब्बत हुई सिंचन और मुस तो में यार दोस्त उठे गोरम की छोट सिंचुनी तो छोस तो में बुजुर्ग कोई बंसी नला रापता था ताकि सही के कोई मकसद को वो पूर भी और असुर यो भी ना कि एक एक हिसाब एक थी मुत मुत सब बल्कि कामयाबी जो कि इतफाक जी इतफाक एहतियात जगह भी दारुन होको थी बस बुंजे एक मकसद तुम कोई मशहूर जिंदगी हासिल थी और बस कोशिश थी कि तुम ने कोई बाश ही मशहूर से मशहूर ये जान बस समीन तुम बाश को बस ये जान मशहूर होको थी बे हर दिशु याद असु छरीन क्योंकि बस शकुन जबान को हाथ खलई को जबान लोल बरवई होने जबान को मुठूर मुठूर याद जाकि जर्री दली की वाकई हो खुशीन गा कि नि जबान इट कोई जाक से मतलब कोशिश थी यानी मुठूटी फेरी नहीं करूं इसलिए वो चीज़ तुम जहन चिरा कि जबान इट से खिदमत थी तो हमेशा जिंदादार हूँ इंसान खेण बोलो ना दई एक फिना गाय पार्जुन या बिबुड़े शो भी ना दई गाय एक पार्जुन सस्पा तुम अफसोस फिरा गिजी एक मुश्किल थम

ਨੱਚਣੋ ਬੋਧ ਤਾਲੂ ਸਪੇਸ਼ ਮਾਰੇ ਮੁਰ ਜਵਾਬ ਨੱਚਣੋ ਬੋਧ

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM2 103.5 MHz पर। 5 बज चुके हैं। एक वक्फे के बाद आप सुनेंगे आज का गोजरी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: काम करांगा तो बहुत ज़्यादा इम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, बेरोजगारी खत्म हो सके। और बिलखसूस अगर हम कश्मीरी गल करूँ, जिन लोगों को एक कनाल जमीन तो ले गया है, 40 कनाल तक है, उसने तो महकमो पूरी तरह सपोर्ट भी कर रही है
1: जी।
0: और यह बिच आज वे पौधा नहीं लाया जा रहा कि जड़ा 10 साल या 15 साल बाद जाके फल दिन था, बल्कि इसमें एक नवी जान जड़ी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वह यह हुई कि एक तो जदीद तरीका नाल पौधा उगाया जा रहे हैं और दूसरा जड़ी वैरायटी वे इस तरह ही आ गई हमारे को, इस तरह ही किस्म पौधों की आ चुकी हैं कि जड़ी दूसरे साल ही फल थी, जिस नाम आइडेंसिटी को नाम दिया। इसके नाल जिन लोगों ने आइडेंसिटी प्लांटेशन की है उन्होंने बागों में शायद तुमने देखे हुआ हो कि दूसरे साल ही फल दे रहे हैं, और पहला हम कोई 12-15 बूटा एक कनाल में ला था, आज वे 166 बूटो एक कनाल में ला रहे। मैंने नहीं लगता कि जड़ो जमींदार बागबानी कश्मीर प्रोविंस में इस तरीका नाल कराया, वो आइडेंसिटी प्लांटेशन नाल, तो उसने कोई ज़रूरत पाई कि बाहर उन जा वो मजदूरी कराया, बल्कि उसने कारी में मजदूरी मिल जाई और एक कनाल बिचू में वो 1 लाख के ऊपर पैसा कमा सके, जबकि एक मजदूर है 1 लाख रुपये मजदूरी करके नहीं कमा सकते। तो अगर किसी को 10 कनाल जमीन 8 कनाल जमीन है तो मैंने वो बहुत सारी 2-4 फैमिलीज ना सपोर्ट कर सके। उसके बरकस जरा लोग हमारा आलम में बहुत सारा रवाजी काम कर रहे हैं, जैसे मक ला रहे हैं तो मक बिचू कनाल बिचू तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये मिले, तब ही तो अंदाजों कर सकें कि एक आदमी दुकान है जिसमें 1 लाख रुपये कमा रहे हो, दूसरों वही दुकान जी 3 हज़ार जिसमें इनकम है वो कमा रही है, तो यह चीज़ हमें बदलने की ज़रूरत है
1: जी।
0: तम देख रहे हैं और बिलखसूस तम कश्मीर में देख रहे हैं कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट हमारा वो जिन लोगों ने बागबानी कर रहे हैं उन्हें अच्छी इनकम है, लेकिन बिलखसूस हमारा ट्राइबल लोग जड़ा है इस फील्ड में नहीं आ रहे। उन वास्ते सरकार ने जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है या UTE स्कीम है उन्होंने वास्ते स्पेशल प्रोविजन रखे हुए कि उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, वे लोग की जड़ा उन्होंने टारगेट किए जाना चाहिए और उन्होंने बढ़ावा देना चाहिए, उन्होंने प्रेफरेंस देनी चाहिए कि उन्होंने भी बाग लगे। पहली तो यह इस वास्ते कुछ स्कीम जी हमारे को आ चुकी हैं नहीं, वे स्पेशल इन लोगों वास्ते हैं और बिलखसूस कश्मीर का जितना भी हमारा बागबान है और ख़ासकर ट्राइबल लोग उन्होंने गुजारिश करूँगा कि वे इन स्कीमों को फायदे, जिस तरह एक JKSIP स्कीम है जम्मू कश्मीर कॉम्पिटिटिव इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, उसके तहत हम नर्सरी ला रहे हैं, उसके तहत हम पौधा बहुत सारा लगवा रहे हैं, बाग लगवा रहे हैं, वे बाग भी आइडेंटिटी पैटर्न पर हैं जिसमें 50% सब्सिडी है, उसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं पता कि बागबानी किस तरह करनी है उन्होंने हम ट्रेनिंग दे गया ताकि वे अपडेट हो जाएं और खुद अच्छा तरीका नाल बागबानी कर सकें, उन्होंने पानी की सहूलत प्रोवाइड करा रहे हैं। इतनी नहीं बल्कि बहुत सारा एरिया मैंने जम्मू और कश्मीर दो ही जगह पता है कि जिस लोग बागबानी नहीं कर सकता उसकी वजह यह है कि जंगली जानवर जड़ा है वे कोई भी फसल जिस वेला लाई जाए उसने ख़त्म कर छोड़ना और लोगों ने इस वजह से लाने बंद कर, उन वास्ते भी हमने इस स्कीम में एक प्रोविजन रखी है कि सोलर फेंसिंग
1: जी
0: कि एक इस तरह की तार बंदी है जिसके बीच थोड़ा चटको लगा हो और सोलर फेंसिंग है उसमें चटको लगा जो कोई जानवर है जंगली जानवर है वो नज़दीक नहीं आता, उसमें भी अगर हमारा लोग आए तो उन्होंने उससे एक प्रोविजन रखी हुई है कि भाई वे ज़्यादा से ज़्यादा JKSIP में ये जो स्कीम है उसमें 3 किस्म का लोगों पर मेन जोर दिता गया है, जिन्होंने बागबानी या दिगर किस्म की जो जमींदार की स्कीम है चाहे वो थारी पेट बकरी पालन हुआ कम है माल मवेशी रखन हुआ है एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर या कोई भी और सेक्टर है प्लानिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसमें स्कीम में प्रोविजन रखे हुआ है एक तो औरतों वास्ते क्योंकि औरतें एक वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जी उन्होंने वास्ते है और औरतों वास्ते है और नौजवानों वास्ते ताकि ये 3 सेक्टर या 3 लोग की ये जिस वेल्ले बेरोजगार हो जाएगा तो उसके नाल हमारा हमारी स्टेट UT की एक नोयत बदलाई उन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएगा और तम देख रहे हैं कि औरतों ने कोई काम नहीं मिलते, अगर वे भी अपने बहुत सारा काम है चाहे वो एग्रीकल्चर में दस सकूँ जिस मशरूम हुआ है बीज हुआ है मानी रख शायद बारह में कह रहे हूँ या हम ये तुमने दस है कि बागबानी कर रहे हैं तो इन्हें भी इसी खास रेशो एक रखनी है 45% ये होना चाहिए, इसी तरह नाल किसी

0: 10% है, 3% है, वह एक रेशियो इस कारण रखेगी ताकि सब लोग ग्रोथ सारंगी हो जाए। ये जो पिछड़ा हुआ तबका और उसमें वे ब्लॉक लिया गया है, सारा ब्लॉक इसमें नहीं आता, इसमें वे ब्लॉक 45 ब्लॉक है जम्मू का और 45 कश्मीर का जरा बैकवर्ड था, तो ताकि उन वे भी मेन स्ट्रीम में बिछा सके, सरकार की एक कोशिश है। इसी तरीके दसूँ कि सोलर फेंसिंग हो तो मैं क्योंकि आज का वक्त है जैसे तुमने क्योंकि इन्वायरमेंट डे की बारह बात हो रही है, गलत इस पर कहना चाहूँ कि हमारा जंगलात ना बचाना बहुत जरूरी है। इसके नाल मौसम की भी तो बेहतर रहा और ठंड मतलब बारिश होगी और आबो हवा अच्छी दुरुस्त रही, लेकिन इसके नाल नाल एक और चीज़ जरूरी है कि जंगली जानवरों को कार जड़ो है वो जंगलात है, और जंगलात के बीच जिस वक्त जंगलात ख़त्म हो रहे हैं तो ये जंगली जानवर फिर आबादी की तरफ आएँ कि जित उन्होंने खान पीन वास्ते मिले, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि जंगलात के बीच फ्रूट प्लांट लाए जाए, वे फलदार पौधा कि जिन्होंने फल खा गया ताकि उन्होंने खुराक भी उत्ते मिल जाए, जरा मार जानवर वे उस रहे वो ताकि ये लोग भी इस माँ जो एरियो उन्हें को अपनी जमीन है उन्हें बीच बागबानी कर सकें, उन्हें बीच और कोई काम खोल सकें, एग्रीकल्चर का काम कर सकें, तो उस वास्ते यह भी एक वक्त की ज़रूरत है। इसी तरीके हमारे को और भी बहुत सारी स्कीम है, HADP की एक स्कीम है, हमने हाई डेंसिटी प्लांट्स जरा बाहरों आना पीता उस हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपनी नर्सरी जी उन्हें बिच मदर ब्लॉक लाए जी, उन्हें बिच रूट स्टॉक जो है क्योंकि वो कलोनल रूट स्टॉक है जो कि मतलब इतने बार वाले में तैयार करके वो सर्टिफाइड प्लांट, उस प्लांट के ऊपर फिर हम पैवन ला गए अगर तैयार करें पौधों, तो वो जो रूट स्टॉक है उस पर भी हम 80% सब्सिडी दे रहे हैं, ट्राइबल लोगों के वास्ते भी उस पर उसमें प्रोविजन है, मदर ब्लॉक में भी 80% सब्सिडी उसमें प्रोविजन है, और उस तो अलावा नर्सरी को लाना चाहे उसमें 50% सब्सिडी है वो भी उस वास्ते प्रोविजन रखा गया है, ग्रीन हाउस जलाएं वे प्रोविजन रखे हुए हैं उसके बीच। इसी तरीके पुराना बाग है जरूरत है कि बदलान की जिन्होंने पैदावार बहुत कम हो चुकी है
1: जी,
0: उसकी शाख्तराशी करनी है, उसके बीच कोई पौधों हटा गया नवो पौधों लाना है तो अच्छे किस्म के पौधों लाने वास्ते उस वास्ते उसके बीच हमने पैसों रखे हुए और ट्राइबल लोगों वास्ते वो पैसे वे भी उसने कर सकें और जनरल लोग भी इसमें इस्तेमाल कर सकें। कहने मतलब ये है कि HADP स्कीम है, JKCP है या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जिस तरह है, हमारा कोई MIDH स्कीम एक है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उस मिशन को मतलब ये है कि सारी किस्म की सहूलत जी एक जमींदार ने दीती जाए, चाहे उसने तार दीती जाए उसमें सब्सिडी है 50% मीटर का हिसाब न, और इसी तरीके आज देसी खाद की जरूरत महसूस की जा रही है, और देसी खाद बल्कि सब सामीन ना कहना चाहूँकि भाई देसी खाद की तरफ हमने सही रुझान रखना चाहिए। आज बहुत सारी बीमारियाँ जरा हम शिकार हो रहे हैं उसको एक कारण यह भी है कि जितनी ज़्यादा बागों में दवाई इस्तेमाल की जा रही और हैल जो है फर्टिलाइज़र वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी इतनी ज़रूरत भी थी, पहला तो मिट्टी की टेस्ट हमारा लोग करवाता भी नहीं
1: जी।
0: अगर मिट्टी की टेस्ट को टेस्ट कराएं तो उस वक्त हमारे को लेबॉरेटरी जम्मू भी है और कश्मीर भी है, वे अपना सैंपल भेज सकें, और आज की डेट में वो पुराना जमाना नहीं कि किधर तू मिट्टी ले गया टेस्ट कर रहा देख रहा हो, बल्कि बिल्कुल जियो टैग है वो, उस जगह फोटो लिए जाओ जिस जगह थी उसकी मिट्टी लेनी और महकमा उसके बारे में गाइड भी कर रहे, उसके बाद जितनी ज़रूरत है अगर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगी अंग्रेजी खाद की तो वो जरूरत के मुताबिक चाहिए, वरना उन्हें देसी खाद इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि देसी खाद को नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही फायदा है, उसके बीच सारे ही ज्यादा न्यूट्रेंट है वे मौजूद हैं, और देसी खाद बनाने वास्ते हम 50,000 रुपये एक यूनिट में दे रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं, इसी तरीके नाल वेटनरी वाला भी और छोड़ के दे रहे हैं इसमें सब्सिडी, तो हमारा लोग जड़ा है इस पेशा नाल क्योंकि जुड़िया हुआ है, और कश्मीर में बहुत सारा बागबान ना देसी खाद की जरूरत है, लेकिन अगर वे जुड़ा जिन्होंने हमारा लोगों ने माल मवेशी रखे हुए अगर वे वर्मी कंपोस्ट बनाना सीख जाएगा तो बच्चों का रोजगार खुद खुलेगा, वे बच्चा उसने पैकिंग करके अच्छा तरीका ना बेच सकें और उसकी कीमत 20-25 रुपया तो काटनी होगी एक किलो ही, लेकिन उसको बनाने को तरीको जुड़ो वो टेक्निक वह सीखनी है, और उस वक्त डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है, तो कहने का मेरा मतलब यह है इस तो अलावा तम अगर देखें तो और भी इसमें हमारी ट्रेनिंग वगैरह को प्रोविजन जो सेंटर स्पन स्कीम है उसके बीच भी रखे हुए हैं, हम बाहर टूर ले जा रहे हैं किसान ना अगर मारा ना कश्मीर में तो मैंने महसूस नहीं हो तो कि ज़रूरत है हमारा कश्मीर तू बाहर जाएंगी हमारा किसान ना इतनी बहुत सारी जगह इस तरह का स्पॉट नहीं जरा देखा जा सके, लेकिन अगर रियासत तू बाहर भी किसी ने जाना हुआ है अगर किसी ना ایک ڈسٹرکٹ دوسری ڈسٹرکٹ میں جانا ہوا ہے تو اس سے ٹریننگ پروگرام رکھا ہوا ہے، ایکسپوجر وزٹ رکھا ہوا ہے، اس سے

0: यो बहुत फार फ्लंग एरिया गूल एरियो,
1: क्लाइमेट अलग है उसको,
0: क्लाइमेट डिफरेंट जगह, कुछ इलाका ठंडा है कुछ थोड़ा गर्म है, तो इन पर एक खसूसी तवज्जा दीती जा रही है। और यह भी एक ज़रूरी बात है कि हमारा लोग जितने भी बसे हुए हिली एरिया में बसे हुए, टोपोग्राफी टफ है उनकी, रेन की जगह जड़ी है वैसी है कि हमारा बहुत सारा मुलाजम में वे जा भी नहीं पाता, लेकिन हमने सख्त हदायत दी है मुलाजमान कि तुम इन इलाका में स्पेशल कैंप करना चाहिए। और इस वक्त जेके सिप में हमने यो जो प्रोविजन रखी होगी उसको मतलब ये है कि ताकि इन लोगों पर वस्ते अगर जैसे हम वुमेन एम्पावर करना चाहते हैं वुमेन्स का कैंप आना कराना चाहिएगा, अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा करवाना पड़ेगा, तो उस वक्त हमने उन्होंने राय दी थी कि अभी तो हमने वही कराना है। वल्नरेबल कम्युनिटी SC और ST है, हमने क्यों जित वल्नरेबल कम्युनिटी में वो शेर रखे गए हैं तो उनका स्पेशल कैंप करवाया जाए, खाली SC और ST का कैंप करवाया जाए, हमने यूथ ना टारगेट करना है तो हमने यूथ वस्ते क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम जो हुआ है वो यूथ ही हुए ताकि वो पर्टिकुलर जो सेक्शन है उस बिचों पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो पाए, उसके नाल ज़्यादा से ज़्यादा भी अपटेक करें, स्कीम्स का फ़ायदा चाहें। और उस वस्ते हमने कोई भी इलाकों ऐसा नहीं देखियो कि जिसमें हमारा लोगों पर अगर ध्यान नहीं देते हो हमने दोबारा उसने इनिशिएट नहीं किया, हमने कर दी तो उन कोशिश की है कि भाई उन इलाका में हमारा लोग जाएंगा और चाहे वह एग्रीकल्चर है हार्टिकल्चर है जो भी है सब लोग हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी खास डायरेक्शन है अपना मुलाजमान डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ना कि उन इलाकों पर तवज्जो दी जाए और इनकी माली हालत बेहतर करने वास्ते जितनी स्कीम चाहे UT की हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उन्होंने तो उन्होंने फ़ायदा दिता जाए।

0: जिस तमने गल की कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की गल ट्राइबल इलाकों की, ठीक है, टेक्नोलॉजी है आए को इस्तेमाल हो रही है, सब चीज़ें हैं, अगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जी जीन बैंक के सीड बैंक के जी मारी वाइल्ड वैरायटी थी, जी मारी ट्राइब लोगों ने अपने ना वैरायटी आनी थी, मक्की थी या बाकी वैरायटी थी, उन्हें प्रिजर्व करने के बारे में कुछ इकदम किया गया?
1: जर्मप्लाज्म मेंटेन रखने वास्ते भी सरकार है जी बहुत कोशिश कर रही है, और या मैं आप एज डायरेक्टर जम्मू में अपना जितना भी नर्सरीज में हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक वास्ते की हो कि हर एक इलाका में जितनी भी नर्सरी हो उनमें 2-4-10 मरला हो ऐसा एक ब्लॉक होना चाहिए जिसमें हर किस्म का पौधा होना चाहिए
0: जी।
1: या ना वह कि कुछ स्पीशीज मारी जड़ी वे बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म ही हो जाए, तो इस वास्ते भी एक सरकारी, और उसके अलावा बहुत सारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्कीम्स भी डील कर रही है जिनना या भी जर्मप्लाज्म कलेक्शन वास्ते की हो जाए, यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रही है, तो उस पर भी काफ़ी हद तक हमारी डिपार्टमेंट की एक कोशिश है कि ताकि वे वराइटीज़ भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वे रहनी चाहिए।
0: सीजनल जो हमारा फ्रूट है उन्होंने, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी को बड़ा इंटरवेंशन है, बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स हैं, हमारा बच्चा ने कौन याद कराओ कि 12 महीने में किड़ी फसल का दो, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज ऐसा हो गया है कि खरबूजो आज भी आवे, सियाल भी आवे, जड़ा सियाल का फ्रूट है बाहर के बच्चे, जड़ा बाहर के गर्मी के बच्चे, कुछ साइकिल इसकी वजह नहीं, इस बारे में मतलब कभी सोच विचार हो?
1: देखो ऐसा है कि रोटेशन ऑफ द क्रॉप ही जितना तलक है
0: जी,
1: उस वास्ते कैलेंडर ऑलरेडी बने हुए हैं, एक कैलेंडर बने हुए हैं कि किस टाइम तमने हूँ तो पहला गल कर रहे थे कि इंटर क्रॉप पर अपना ध्यान देना चाहिए कि अगर मामले को क्रॉप मेन क्रॉप लाइव है जिस तरह सेब का जम्मू कश्मीरी हूँ गल कर रहे हो सेब लाइव है या अखरोट लाइव, तो उसके बीच भी जो जगह खाली है उसके ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए, और कोई अगर जिस तरह पहले तो हम स्ट्रॉबेरी में मिसाल देती स्ट्रॉबेरी ला सकें, उसके बाद

0: पथराव हुओ, कांगड़ी चली, गोली चली, पूरो ग्रां गठो हो गयो, ते खबरे किस तरिया का चोट आई ते बापू और भी जा पर हो गया। फौज नस गई, तहसीलदार, डीसी, एसपी ते खबरे और भी कौन कौन आयो। ओनी हो गई थी टेरी पर तीजी कब्र भी बन गई। हूँ हम सारा यतीम हो गया ते वक्त गुजर तो रहे हो। एक साल इंगा शक्ल बिगाड़ के कुछ लोग लुटन लासन वास्ते रात ग्राइयम ग्राइयम में दाखिल हुए था ते पूरा इलाका में शोशो थो कि भूत आ गए। एक चारे रात देर नाल बदल जो आए वो थो, हूँ कोठा पर मक बटली करूँ तो लगो वो परला ग्राम में शोर हो भूत भूत नसो नस रोग नस्ता में था। मारा तक विवाह बगदड़ मच गई थी, हम भी नसन आला में शामिल हो गया। कड़क की रात थी, एक बड़ा अंज परूं चढ़ियो ते मेरी दो जंग टूट गई, चमटोक हो गई। सख्त बारिश थी, दूजे दिन पेशी तक हूँ पियो रहो, रात भी खासी भाग गई थी। अस्पताल पहुँचो पर वक्त गुजर गयो थो, किसी भी सूरत में मेरी दो टंग कपनी पै गई ते हूँ विसाखियों के मुंडे चढ़ गयो। हूँ अपनों पार दूजा का मुंडा पर नहीं थो सटूँ, अपना दुख दर्द न खदेड़ वास्ते गीत वगैरह रिकॉर्ड करके कैसेट बेचूँ थो ते वक्त गुजारूँ थो। सियाल जम्मू चले जाऊँ ते बरिया श्रीनगर चंगो काम चले थो। पिछले साल सियाल हूँ जम्मू ही थो, कश्मीर में सख्त बर्फ पोए, उस साल कोई ज़्यादा ही पै गई ते बस्तियों का बचाव वास्ते जंगल उसने पकड़ के रखें, चूँकि मारो बन आज़ादी आला ने मुका छुड़ियो थो ते शिंगर दी छुट्टी भी लानी पूरी माली की बटली हो गए। छंज आयो ते मारी पूरी बस्ती ने लपेट में लेके चली गयो, तमाम अहबाब माल समेत दब के मारी गया। सिर्फ हूँ एक बदनसीब जम्मू जान की वजह से बच गयो थो। तम आ रहे हैं आगे कित कित किसना लोड़ेगा, हूँ बसाखियों का सारापुर कुमान पोस्ट के उरारले पासे अडिकवान होंगो। देखियो आन आलो थारो काफलो इत की इस आखिरी चिंगारी ना दुदुड़ मन ना दब छुड़े, थारो अडिकवान इबरार।
1: गुलसित चौधरी साहब बहसित डायरेक्टर थारी मारा किसान जड़ा पाई है, किसान और बदल गया है, जो पढ़े लिखे नौजवान है वो आज की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मिशन युवा कहता है तो उसने जड़ी वे मुराद दी जा रही है, तो उनके मैसेज है वे इसके ना धोखेबाजी न करें, इससे फायदे उठावे।
2: देखो आज ये जितनी स्कीम है वे सारी ऑनलाइन, ऑनलाइन स्कीम को मतलब भी यही है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बिल्कुल एक शफाफ तरीका नाल स्कीम ना चलाई जा रही है, इसके बीच किसी नाल धोखा की गुंजाइश नहीं रहती। जित तक सब्सिडीज को तल्लक है वे डायरेक्ट अकाउंट में किसी भी कोई भी किसान कोई भी बेनिफिशियरी है उसका डायरेक्ट अकाउंट के बीच पैसे हो जाए, यानी कि ना तम पैसा का लेन देन में कोई हेराफेरी कर सकें और ना ही तम स्कीम में छपा सकें, सारी स्कीम हमारी पोर्टल पर अवेलेबल। और तमने जैसे जेके सीप को पोर्टल है अपनों है, HADPO को है, किसान साथी एक पोर्टल है उस पर जा सकें, MIDH को है, मित्र सुरक्षा पोर्टल है तमने उस पर जानो, यानी ऑनलाइन अप्लाई है थारी, इवन कपेक्स की जो स्कीम है जन सुगम एक पोर्टल है, तो सारी हमारी स्कीम तो अवेलेबल नहीं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर आ डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर उसकी साइट पर जाएगा तम सब स्कीमों के बारे में जानकारी हो जाए, उसको पैटर्न किया है सब कुछ पता लग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई किसी के नाल धोखाबाजी नहीं हो सकती, बल्कि मारो एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, अपनी लोगों की बहबूदी करनी है, अपनी बेहतरी करनी है, और बेहतरी करने का मतलब ये है कि हम तो जो बिल्कुल सुतो हुआ जिसने कुछ पता नहीं उसने हमने जगाणु है और उसने हमें दसना है कि भाई तमने इस तरह कर गया तो तम आगे बढ़ सकें। और बहुत सारे लोगों ने इन स्कीमों को फायदों भी ताई चाहे क्योंकि महकमा ने काफ़ी हद तक अवेयरनेस देती है, तो इसमें मेरा उम्मीद है कि ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें किसी हमारा किसान ना कोई शक शुबा की गुंजाइश रहेगी। बहरहाल महकमा के नाल और स्कीम ना पढ़ने की जरूरत है, उसमें समझने की जरूरत है। आज के जी किसान खिदमत घर खोलिया हुआ है, अगर वे उस जाकर ऑनलाइन देखेंगे सिस्टम ना उतनी हो सके, या कोई बच्चों मोबाइल चलाए उतनी वे सारी जानकारी ले सकें। उसके अलावा महकमा ऑफिस जरा चाहे जोनल लेवल तो ले डायरेक्टरेट तक जितना भी वे भी इस पर काम कर रहे हैं उतने में जा जानकारी ले सकें, तो इसमें किसान की बेहतरी के बारे में हमने कोई ऐसो कदम नहीं जो नहीं उठायो कि जिस नाल के उसना कोई कमी पेशी लग जाए। तो कोशिश है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा किसान जड़ा उन सब इन स्कीमों को फ़ायदा मिले और वक्त की ज़रूरत है कि हमारा किसान आगे आए।
1: गुलसित चौधरी साहब तम डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं, अपनी टीम के तरफ थारा हम शुक्रिया अदा करें, तमने अपने जो मसरूफ़ वक्त है उस पर वक्त कट के तम तशरीफ लिया जानकारी जी पहुँचाई थारो।

0: स्टूडियो में तशरीफ आनुस था, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया बहुत।
0: इसका नाल ही मारा प्रोग्राम को वेलो मुख्य प्रोग्राम का प्रोड्यूसर बिशिंग फारूक वानी, अपना मेजबान जाकिर हुसैन। अगला प्रोग्राम थोड़ी इजाजत। अच्छा जी, रब रखो।

इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इशा आकाशवाणी श्रीनगर शब जित 5 मिनट सफेद पेश गनी बाइन हिंदी खतर अजुक प्रोग्राम।

0: सुविधा भी दी गई है क्योंकि RFID कार्ड मैंडेटरी है इस यात्रा को करने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन और बिना पंजीकरण के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कुछ इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है। जो पंजीकृत यात्री हैं, जो रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं, उन्हीं को ही RFID कार्ड की सुविधा और यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। जो जो भी यात्री बिना पंजीकरण के कश्मीर पहुंचे हैं, उन्हें कुछ दिन वेट करने की जरूरत है क्योंकि अभी उन्हें RFID कार्ड की सुविधा या यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। हमारा ये प्रयास है कि जितने भी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन या यात्रा की इच्छा रखते हैं, उन सभी को यात्रा कराई जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना है।
1: दौरान वोचस जम के भगवती नगर यात्री निवास पे मजीद 4,800 बह यात्री वादी इन मज 2,080 मर्द तो 2,760 जनान शामिल है। जम्मू कश्मीर वजी अला उमर अब्दुल्लाहन श्रीनगर हवाई अड्डुक रन वे बंद कर मुतलिक मजबूज मनसूख कर बापत मरकजी सरकार शुक्रिया अदा कर्मुत। वजी अला वन से अम फैसल सत रोज जम्मू कश्मीर कुन ठड़ वर हवाई रबत बनित तो सी वा सफर कर वाल सालान तराम तमो वन तमो अत मुतलिक जम्मू कश्मीर कन लूकन तजरन तो सयाहत सबस्त नफर हिंद मफादन तहफ़ दिन मौक यह मामलों जी तौर मरकजी सरकार सुलमुत। वजीर अहम कत मुतलिक मरकजी बचाव वसीत शहरिया बाबोजी हिंदिस वजीर राम मोहन नायडू सुन शुक्रिया अदा। तमो वन सयाहत किस यीजन मज हवाई रबत बरकरार थान जम्मू कश्मीर चो मीशत बापत अहमियत थवान। भारतीय मौसमियात महकमन गुजरात गवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मगरबी मध्य प्रदेश तो उड़ीसा मज बार रूद कुन कुन जाए गंड रूद पे रेड अलर्ट जारी कर्मुत। इथे पे मशरकी राजस्थान मशरकी मध्य प्रदेश सैरी कर्नाटक तेलंगाना मज इन वाल दोन बापत बार रूद पे सूरत हाल बरकरार रोस इम्कान बावन आमुत। आ दौरान दिल मज उबर नब रोस तो रुदलव पे इम्कान। IMD दर्ज हरारत ज्यादा खुद ज्यादा 34 पे 36 डिग्री सेल्सियस तम तो कम खुद कम 7 पे 28 डिग्री सेल्सियस तम रोज पेशगोई कर्म। मुतलक महकमन जम्मू कश्मीर के अक्सर हिस्सन मज इन वाल कैसन दोहन मज वन गगरान सन सोत सोत रूद पे पेशगोई कर सकस दोन जान पे अचानक सहलाब तो मिसलम वसित इन इम्कान बोमुत। महकमन लूकन नालन दरियावन तो कानि वसित इन खतर वाल इलाकन निश दूर रोजन मशवर दुत। आयुर्वेदिक इलमस मज तहकीक मरकजी कौंसिल CCRASN कर नव दिल मे एग्जीक्यूटिव कमेटी हिंस पूछम मीटिंग मुनद। मीटिंग आई आयुष वजारत हिंद सेक्रेटरी वेद राजेश सदारत मज मुनद कर वजारत वोन जी मीटिंग शहीदन पे मबनी आयुर्वेदिक तहकीक इको निज़ाम मुस्तकम बनानस कुन अहम कदम। अत इको निज़ाम मे आयुर्वेदिक तलीम तहकीक साइनसी मवासला तो डिजिटल हुकमरानी बदवाशर दिन के मकसद त्रे बड़ इकदाम कर आमत। CCRAS के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य वोन जी कौंसिल शहीदन पे मबनी आयुर्वेदिक तहकीक के इको निज़ाम पाबंद यम सयुर्वेद आलमी सतुस पे मकबूलियत हासिल सपद। ईरानस मे सबक रूहानी लीडर आयतुल्ला सैद अली खामनई सरकारी तौर शहन आखिरी रस्मन हज तैयारी जारी। ईरानिक सीनियर लीडर फौजी कमांडर तो गैर मुल्की शख्सियतों को मरहूम लीडर्स खराज अकीदत पेश। बिहार गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैद अता हसनैन तो खारजी मामल हिंद वजीर ममलिकत पबित्रा मारगेतरहन कर आखिरी रस्मन मज शिरकत। मरहूम सयाची हूं जुलूस वज इन वाल कैसन दोहन तम जारी अम पत तम मशहद शहर मज यम रतन नवि तारीख दफन कर सरकारी तौर रोज मातम ताजहन दोहन तम जारी। नायब सदर जमहूरी CP राधा कृष्णन वोमुत सहाफत पजि पजर दयानदारी तला पेशवर मयार मुताबिक नायब दिल ऑर्गेनाइजर्स वीकली हिंद शीतवी योम ताशीश तकरीबी खिताब करान नायब सदर जमहूरियन जमहूरियत तमवीज बतवाशर मिलान ये सहाफत पन साग बरकरार थवित लूकन जानकारी दिन कान तो सवाल करान यह जन बाशोर अबूनी बहस हौसला अफजाई कर کشن خبرن ہند بلٹن اند واتن خاص خاص خبرن پہ بیاکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو راجستھان کے بلوتراہس مز بھارت کے گوڑنے کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس مربوط گرین فیلڈ کو ممکنہ وقف۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن سندرواد پہ انڈونیشیا آسٹریلیا تو نیوزی لینڈ شان دھون ہند دور دہشت گردی روٹ کرنے گجرات سکاٹ

0: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
0: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: शर्वीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनकी शख्सियत भारतीय सकाफत, रूहानियत और कौमी शऊर को हर दौर में मुतासिर करती रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर मैं उन्हें दिल की अमीक गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करता हूं। भारतीय सकाफत, रूहानियत और कौमी शऊर को आलमी शनाख्त देने में उनका तआवुन बेमिसाल।

0: हर दौर में मुतासिर करती रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर मैं उन्हें दिल की अमीक गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करता हूं। भारतीय सकाफत, रूहानियत और कौमी शूर को आलमी शनाख्त देने में उनका तआवुन बेमिसाल है। विवेकानंद के पायदार असरात को उजागर करते हुए मौसूफ ने कहा कि उनकी फिक्री सलाहियत और बाइस तहरीक ख्यालात मुल्क भर के करोड़ों नौजवानों के लिए एक रहनुमा कुव्वत बने हुए हैं। वजीर आजम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का रूहानी पैगाम एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के अज़्म को पूरा करने में नई तवानाई और समत फराहम करता रहेगा। इधर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल और इसकी नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर राजस्थान के गवर्नर, वजीर आला, मरकजी वजीर सियाहत सकाफत और दीगर शख्सियात मौजूद थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ही राजस्थान के बालोतरा जिले में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया और तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और उनका संग बुनियाद रखा। तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की लागत से कायम 90 लाख टन सालाना सलाहियत की रिफाइनरी HPCL और हुकूमत राजस्थान का मुश्तरका मंसूबा है। इस मौके पर वजीर आजम ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले जयपुर मेट्रो के दूसरे मरहले का भी संग बुनियाद रखा, जिससे शहर के सनती और रिहायशी इलाकों के दरमियान राबते में नुमाया बेहतरी आएगी। समन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजाम का अलसतही जायजा लेते हुए यात्रियों से अपील की है कि वो सिर्फ दुरुस्त और मुकर्रर तारीख के रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रा के लिए रवाना हों। जायजा इजलास में यात्रियों की नकल हरकत, सिक्योरिटी ब्रीफिंग, सिक्योरिटी ट्रैफिक, रिहायश और दीगर इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में वाजे किया गया कि यात्रियों की एक बड़ी तादाद बगैर रजिस्ट्रेशन के यात्रा के लिए आ रही है, जिसके बाइस इंतजार का वक्त बढ़ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिदायत दी कि सिर्फ मुकर्रर तारीख की दुरुस्त रजिस्ट्रेशन रखने वाले यात्रियों को ही मुकद्दस गुफा की जानिब जाने की इजाजत होगी। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अमरनाथ यात्रियों के नकल हरकत को महदूद करने के बजाय उन्हें बसों से उतरकर मकामी बाजारों और दीगर मकामात का दौरा करने की इजाजत दी जानी चाहिए, ताकि वो कश्मीर से कुछ खरीदारी कर सकें। वाजिर है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों से कहा है कि वह अपने सफरी खर्चे का कम से कम 10% हिस्सा कश्मीर में खर्च करके वादी की मईशत को बढ़ावा देने में अपना रोल निभाए। इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यात्री अगर बाजारों का रुख कर ही नहीं पाएंगे तो खरीदारी कैसे होगी। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मौसूफ ने मजीद कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट को हफ्ते में 2 रोज बंद रखे जाने के फैसले को वापस लिया जाना एक खुशायंद कदम है।
1: उम्मीद करते हैं कि यात्री भारी तादाद में आएं, दर्शन ठीक तरह से करें और सही सलामत यहां से वापस लौटें। उनके लिए जितने इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से अरेंजमेंट्स किए जा सकते थे हमने किए, बाकी जो अरेंजमेंट सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के और जो श्राइन बोर्ड ने करने हैं वो लोक भवन के जरिए देखे जा रहे हैं। हम तो उनसे सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि जब वो आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर यहाँ के भाईचारे और अमन के लिए भी वो प्रार्थना करें। अच्छी बात है, अगर करते हैं तो हमें फायदा है, लेकिन उनको ना गाड़ियों से बाहर निकल के कहीं घूमने की भी इजाजत मिलनी चाहिए, नहीं तो क्या खर्च करेंगे। उनको तो कैदियों की तरह गाड़ियों में बांधा रखा है, दाएं बाएं जाने की इजाजत नहीं। थोड़ा सा तो उनको घूमने दीजिए, ताकि वो भी 10% अपना बजट यहाँ खर्च करेंगे तो हमारे लोगों को थोड़ा फायदा होगा उसका। मंडे ट्यूजडे वाला बहुत भारी पड़ रहा था। मैं कल ही कुछ टूरिज्म के लोगों से मैंने बात की थी, उनके कई सारे ग्रुप्स जो हैं वो कैंसिल होना शुरू हो गए थे। जब से ये खबर आई है तब से लगातार मैं इस कोशिश में लगा रहा हूँ। मरकजी हुकूमत के साथ मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब से बात की, मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू साहब से बात की, यहाँ तक के जब मैं वजीर आजम साहब से मिला मैंने इसके बारे में भी उनसे जिक्र किया था। अगर इसका नतीजा ये निकला कि कम अज़ कम मंडे ट्यूजडे वाला सिलसिला जो है फिलहाल ठीक रहेगा, एक तो ये हमें एक राहत मिली है, लेकिन उसके साथ साथ अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब अक्टूबर में एयरपोर्ट बंद होगा तो कम से कम कुछ अल्टरनेट फ्लाइट हमें अवंतीपुर में मिलने चाहिए।
0: ये थे जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने आज मीडिया नुमाइंदों से बात की और यात्रा के ताल्लुक से भी अपने ख्यालात का इजहार किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुसन खूबी पहलगाम और बालतल के रास्तों से जारी है। वाजिर है कि यात्रियों को तमाम तर सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए हुकूमत ने गैर मामूली इंतजाम किए हुए हैं। तहम इसी दौरान ये इतिलात आ रही हैं, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि कई अनरजिस्टर्ड यात्री भी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं।

0: नतीजे में यात्रा को खुशरूबी से अंजाम देने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। ताजा इतिलात के मुताबिक यात्रा के पहले दो दिनों में 31,379 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। फिलहाल पहलगाम से एक रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे एस तारिक।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा अकीदत जोश और खरोश और बेहतरीन इंतजाम के साथ मुसलसल जारी है। आज सुबह 4 बजे पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से हजारों तीर्थ यात्री गाड़ियों के जरिए तकरीबन 16 किलोमीटर दूर चंदनवारी पहुंचे, जहां से उन्होंने मुकदस गुफा की जानिब अपनी पैदल यात्रा का आगाज किया। यात्री अपने अगले पड़ाव शिशनाग और पंचतरनी पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब शिशनाग और पंचतरनी में रात क्याम करने वाले हजारों श्रद्धालु आज मुकदस गुफा पहुंचकर शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। इधर जम्मू के भगवती नगर यात्रा बेस कैंप से रवाना होने वाले 3,434 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिला काजीगुंड ट्रांजिट कैंप से होते हुए बाहिफाजत पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुंच गया। 139 छोटी और बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल इस तीसरे काफिले में 2,771 रजिस्टर्ड यात्री शामिल थे, जिनमें 2,030 मर्द, 542 खवातीन, 105 साधु, 88 साध्वियां और 6 बच्चे शामिल थे। सरकारी एदादुशुमार के मुताबिक रिपोर्ट फाइल करने तक 28,495 यात्री मुकदस गुफा में बर्फानी शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की सहूलियत के लिए इंतजामिया ने लुनवन बेस कैंप, शिशनाग और पंचतरनी में रिहाइश, खुराक, तबी इमदाद और दीगर बुनियादी सहूलियत के मौसम इंतजाम किए हैं। दुशवार गुजार पहाड़ी रास्तों पर यात्रा को महफूज बनाने के लिए 25 अहम मुकाम पर खुसूसी माउंटेन रेस्क्यू टीमें तैनात की गई है, जो खुसूसी तरबियत और जदीद रेस्क्यू आलात के साथ लेस है। माहौलियात तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए यात्रा रूट पर जगह जगह सफाई सुथराई और बैतुल खुला की मुनासिब सहूलियात फरम की गई है। इस साल भी यात्रा को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा गया है और इसे ग्रीन यात्रा बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मौकम मौसमियात के मुताबिक यात्रा ट्रैक पर मौसम खुशगवार है। इस वक्त पहलगाम से मुकदस गुफा तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस ग्रेड रहा, जबकि रात के वक्त दर्जे हरारत में कमी वाकया होती है। जम्मू से मुकदस गुफा तक कौमी शाहरा और यात्रा के तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार दिन रात पूरी मुस्तदी के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, ताकि यात्रा पुरअमन महफूज और कामयाबी के साथ जारी रहे। दरियासना, हुब्बुल वतनी और कौमी वकार के इजहार के तौर पर भारतीय फौज की चनार कोर ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के रिवायती पहलगाम रास्ते पर वाक़ चंदनवारी में नसब किए गए अजीम उशान हाई मोस्ट कौमी परचम का इब्तिदा किया। इब्तदाई तकरीब में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी कश्मीर, फौज के सेक्टर कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PDA, सिविल इंतजामिया के हुकाम और पुलिस व फौज के दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना पेश किया गया।
0: पहलगाम से इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर अभी जैसा हमने जिक्र किया कि श्रीनगर हवाई अड्डा इंतजामिया ने सोमवार और मंगलवार को मुकम्मल तौर पर रनवे बंद रखे जाने का मुजवजा मंसूबा वापस लेते हुए ऐलान किया है कि हवाई अड्डा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक फजाई ऑपरेशन हफ्ते के तमाम दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे, जबकि रनवे की रात के वक्त देखभाल और मरम्मत का काम अक्टूबर तक जारी रहेगा। इधर कृषि विज्ञान केंद्र मलंगपुरा पुलवामा में आज 29वां साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जरई तहकीक को किसानों की जरूरियात से हम आहंग करने और जरई तौसी खिदमात को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। इजलास की सदारत स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की, जबकि इस मौके पर डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉस्ट डॉ रेहाना हबीब कांट मेहमान एजाज की हैसियत से मौजूद थी। समय राजौरी में कल देर रात जम्मू पुंछ शाहरा पर पेश आए एक सड़क हादसे में एक भाई बहन के हलाक होने की इत्तला है। हादसे में मजीद कुछ अफराद जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस ने इस वाकये की तहकीकात के लिए अगरचे रिपोर्ट दर्ज कर ली है, ताहम मकामी आबादी बिलखसूस राजौरी की सिविल सोसाइटी का कहना है कि जम्मू पुंछ शाहरा पर ट्रैफिक एकदम बेहंगम हो चुका है और ये कि गाड़ियों की तेज रफ्तारी पर बिल्कुल कोई नजर नहीं रखी जा रही है। बताया जाता है कि इस शाहरा पर गाड़ियां यूं चलाई जाती हैं मानो कोई मुकाबला आरआई हो। फिलहाल इस ताजा हादसे के ताल्लुक से एक रिपोर्ट के साथ आरिफ कुरैशी।
2: रजौरी जिला के सब डिवीजन निशा

0: के इलाके में गुज़श्ता रोज शाम के वक्त एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जब रजौरी से आने वाली एक मुसाफर बस शाम के वक्त निशारा के करीब जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर एक निजी कार से टकरा गई। तसादम इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस हादसे में एक बहन भाई की मौत हो गई जबकि दीगर दो अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर बंगोटी के मकाम पर एक कार और मुसाफर बस के दरमियान आमने सामने की शदीद टक्कर हो गई। हादसे में SPO शुभम कुमार वालदेव राय सकना कलसिया मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शुभम कुमार की बहन समेत तीन अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हादसे की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई और मकामी लोगों ने फौरी तौर पर राहतकारी का काम शुरू किया। जख्मियों को पुलिस व मकामी लोगों की मदद से गाड़ी से निकालकर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुंदरबनी मुंतकल किया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए शुभम कुमार की बहन ने भी दम तोड़ दिया, जिसकी पहचान रीना चौधरी के तौर पर हुई है। इनकी अचानक मौत से इनके अबाई गांव कलसिया में गम की लहर दौड़ गई, इलाके में शोक का माहौल पैदा हो गया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुंदरबनी में डॉक्टरों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मियों को मजीद इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकल कर दिया। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। मौके की सूरत हाल का जायजा लेकर दोनों गाड़ियों को अपनी तहवील में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तारी और बेकाबू ड्राइविंग बताई जा रही है, ताहम पुलिस तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है। मकामी लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि हर दूसरे दिन इस कौमी शाहरा पर कोई न कोई हादसा होता रहता है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर सेंट्रल डिवाइडर नहीं है, जिसके कारण आए दिन हादसा होते रहते हैं। इनका कहना है कि जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर मुसाफर बरादर गाड़ियां हद से ज्यादा तेज रफ्तार से चलती हैं। ड्राइवर हजरात एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में ट्रैफिक कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी कर रहे हैं। नुशायरा से सुंदरबनी तक ड्राइवर गैर जिम्मेदाराना अंदाज में गाड़ियां चलाते हैं। ओवरटेकिंग के दौरान न सिर्फ रफ्तार हद से ज्यादा तजावज कर जाती है, बल्कि मोड़ों और तंग मुकामात पर भी एहतियात नहीं बरती जाती। मकामी लोगों का इल्जाम है कि सूरत हाल की संगीनी के बावजूद मुतल्लिका महकमा की जानिब से मुअस्सर निगरानी का फुकदान है। कौमी शाहरा पर जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स का न होना और ट्रैफिक पुलिस की महदूद मौजूदगी ड्राइवरों को खुली छूट दे रखी है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमा से अपील की है कि शाहरा पर रफ्तार को काबू रखने के लिए स्पेशल चेकिंग सिस्टम नस्ब किया जाए और अजाफी अहलकार तैनात किए जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
1: रजौरी में सड़क हादसा, दो अफराद हलाक, आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने इतला दिया कि जिले अस्पताल के डॉक्टरों और नीम तिबी अमले ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जाम और रुकन असम्बली किश्तवाड़ के रवैये के खिलाफ आज बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर मुख्तसर अलामती हड़ताल की। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के बकौल तमाम जख्मियों का बरवक्त इलाज करने के बाद उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जा चुका था, ताहम इसके बावजूद कुछ अफराद ने अस्पताल में हंगामा आरई की, जिसमें रुकन असम्बली भी उनका साथ दे रहे थे, हालांकि डॉक्टरों की कोई कोताही नहीं थी। जराये के बकौल डॉक्टरों और नीम तिबी अमले ने सोमवार को मुकम्मल हड़ताल करने का ऐलान किया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर वो अपने फराइज में गफलत के मुर्तकी पाए गए तो कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर उनका किश्तवाड़ से तबादला किया जाए। जाहिर है कि यह मामला तूल पकड़ता हुआ मालूम होता है। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बना।
4: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर

0: कोविड प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
1: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
0: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग ना हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
1: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज का प्रकाश पर्व कल 5 जुलाई को मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। वादी में इस ताल्लुक से सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पाशाही रहने वाली में मुनक्किद होगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला, राज्यसभा के रुकन शमी ओबेरॉय, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और पार्टी के दीगर कई लीडरान ने गुरु पर्व के मौके पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। उधर किश्तवाड़ के इलाका डोगा में हजरत खैर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। आज सुबह से ही वहां पर हजारों अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और फातिहा खानी और दुआओं में शिरकत की। वाजिर है कि हजरत खैर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हजरत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मोतमद खास थे और उन्होंने दीनी तालीमात की इशात और इस्लाह माशरा के लिए नुमाय खिदमात अंजाम दी। समन SKICC श्रीनगर में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, स्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और स्किम्स सरूड़ा के कम्युनिटी मेडिसिन शोबे के बाहमी इश्तराक से मुनक्किदा नफसियाती तकालीफ से मुतालिक दो रोजा कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम को पहुंची। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले नफसियाती माहरीन और मौलजीन ने शिरकत की। इस मौके पर माहरीन ने जोर देकर कहा कि नफसियाती तकालीफ को जिस्मानी तकालीफ की तरह ही संजीदगी से लिया जाना चाहिए और इनके लिए इलाज का रास्ता ढूंढने में कोई पसोपेश नहीं किया जाना चाहिए। माहरीन ने मजीद कहा कि अगर एक सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद नफसियात का होना अजहद लाजिम है। एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन।
3: श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जारी दो रोजा मेंटल हेल्थ कॉन्क्लेव में आज माहरीन ने मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत के बढ़ते हुए मसाइल की तरफ तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया है। माहरीन का कहना है कि जिस तरह मुख्तलिफ जिस्मानी इमराज व मसाइल की बर वक्त तशखीस और इलाज मुआलजा लाजमी है, बिल्कुल इसी तरह ज़हनी सेहत का ख्याल रखना अजहद जरूरी है। इस कन्क्लेव का इनकार इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के जेरे एहतमाम और साइकेट्री डिपार्टमेंट JVC और सिक्किम्स के शोबे कम्युनिटी मेडिसिन सिक्किम्स डीम्ड यूनिवर्सिटी के ताउन से किया जा रहा है। इस दो रोजा कन्क्लेव में मुल्क भर के मुमताज माहरीन नफ्सियात, अवामी सेहत के मौलजीन, माहरीन तालीम, मुहक्किकीन और तलबा ने शिरकत की। शर्का ने ज़हनी सेहत को दरपेश उभरते हुए चैलेंज पर तबादला ख्याल किया और ज़हनी सेहत की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए इल्मी और शवाइद पर मबनी तजावीज पेश किए। ये कन्क्लेव साइंसी उसूलों और जवाबित के मुताबिक तबादले ख्याल करने, पेशवराना ताउन फराहम करते हुए इस अहम तरीन सेहत आमा के मसले से निमटने के अज़्म की तजदीद के लिए एक मुअस्सर कोशिश के बतौर किया जा रहा है। इस मौके पर माहरीन ने इस बात पर जोर दिया कि ज़हनी सेहत अब ऐसा मौजू नहीं रहा जैसे सेहत की देखभाल के निजाम से अलग रखा जा सके। माहरीन नफ्सियात ने कहा कि ज़हनी सेहत फर्द की फलाह व बहबूद और समाजी तरक्की की बुनियाद है। जब तक हम जज्बाती और नफ्सियाती सेहत को जिस्मानी सेहत के बराबर अहमियत नहीं देते उस वक्त तक एक सेहतमंद माशरा तश्कील नहीं दिया जा सकता। लिहाजा आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ ज़हनी बीमारियों का इलाज करना नहीं बल्कि इस खामोशी और माशरती बदनामी को खत्म करना भी है जो लोगों को बर वक्त इलाज हासिल करने से रोकती है। इस तकरीब में सिक्किम सरबरा प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई मेहमान खसूसी थे जबकि डीन मेडिकल फैकल्टी मेहमान जीवेकार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकेट्री डिपार्टमेंट सिक्किम मेडिकल कॉलेज, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर से बाहर के कुछ माहरीन भी ऐवान सदारत में मौजूद थे।

0: वादी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को यात्रा करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। एलजी ने कहा कि यात्रा ट्रैक्स पर यात्रियों की तादाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऐन मुताबिक मुनक्कद की जा रही है, लिहाजा यात्रियों की सलामती और सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल पर अमल करना लाजमी है। मीटिंग में बताया गया कि सिर्फ मखसूस दिन के लिए वैलिड रजिस्ट्रेशन रखने वाले यात्रियों को ही पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाए। एलजी ने गैर रजिस्टर शुदा श्रद्धालुओं से कहा कि वो अपने सफर को कुछ दिनों के लिए मौखर करें, ताकि यहां पहुंचने पर उन्हें किसी किस्म की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एलजी ने तमाम महकमों और सलामती एजेंसियों को हिदायत दी कि वो तमाम मुतलकीन बशमूल लंगर इंतजाम, लंगर तंजीमों, खदमत करने वालों और दीगर गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम करें। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप के भंडारी और कई दीगर अफसर भी मौजूद थे। दरियासना सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि यात्रियों की सहूलत के लिए इंतजामिया ने तमाम इंतजाम किए हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि काफी तादाद में श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दर्शन करने में ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा,
1: ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की एक कैरिंग कैपेसिटी, एक सीलिंग फिक्स की है, जिसके हिसाब से ही श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए अलाउ किया जाता है। जो रजिस्टर्ड यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, उनके लिए विभिन्न फैसिलिटेशन काउंटर्स पे EKYC और RFID कलेक्ट करने की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि RFID कार्ड मैंडेटरी है इस यात्रा को करने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन और बिना पंजीकरण के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कुछ इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है। जो पंजीकृत यात्री हैं, जो रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं, उन्हीं को ही RFID कार्ड की सुविधा और यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। जो भी यात्री बिना पंजीकरण के कश्मीर पहुंचे हैं, उन्हें कुछ दिन वेट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उन्हें RFID कार्ड की सुविधा या यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। हमारा ये प्रयास है कि जितने भी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन या यात्रा की इच्छा रखते हैं, उन सभी को यात्रा कराई जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना है।
0: अदालत उजमा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। श्रद्धालुओं की सलामती और यात्रा के ऐसे इनकाद के लिए इस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का एक वक्त इसके सदर जीएम शाहीन की क्यादत में लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ और जम्मू कश्मीर में सियाहती सेक्टर को फरोग देने से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। वफद ने कई दीगर मामलात भी एलजी की नोट्स में लाए। दरियासना ओमपोरा बड़गाम के एक निजी तालीमी इदारे का एक वफद स्कूल के प्रिंसिपल शाहनवाज शफी की क्यादत में एलजी से मुलाकात हुआ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे के रनवे को बंद करने से मुतालिक मुजवजा मनसूबे को मनसूख करने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर को बिलाखलल एयर कनेक्टिविटी दस्तियाब होगी, नीज मुसाफिरों और सयाहों को राहत मिलेगी। वजीर आला ने कहा कि उन्होंने इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के लोगों, ताजरों और सियाहत से जुड़े अफराद के मफादात को तहफ्फुज़ देने के लिए यह मामला जाती तौर पर मरकजी सरकार के साथ उठाया था। वजीर आला ने इस जमन में मरकजी वजीर दिफा और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा कि सियाहत के इस सीजन में हवाई राबिते को बरकरार रखना जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। कई अरकानी असम्बली ने आज राबता दफ्तर श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और अपने अपने हलकों की तरक्याती जरूरियात और लोगों के मसाइल उनकी नोट्स में लाए। मुलाकात करने वालों में एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह और एमएलए बानिहाल सजाद शाहीन शामिल थे। वजीर आला ने अरकान के मसाइल गौर से सुने और यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने आज नंदी मर्ग कुलगाम में एक आवामी दरबार के दौरान लोगों की तरक्याती जरूरियात और आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों के मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलों को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बाद में वजीर मौसूफा ने इलाके में 3.5 करोड़ रुपये लागत वाले

एक सड़क प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा और इलाके के लिए मुतद्दिद नए तरक्याती प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शूरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहा की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतादिद सरगर्मियों में मुलवस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। यह कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वो इन अफराद के इक्तिसादी असासे को मुंजमद करे, असलहा की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें भी जब्त करें। UAPA की तरमीम से भारत की इंसदादी दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियार हासिल हुए हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से 13 अगस्त तक मुनक्कद किया जाएगा। ये जानकारी पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंदा को उनकी बरसी पर खराज पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने उन्हें एक अजीम वतन परस्त, फलसफी और रूहानी तौर पर दूर अंधे शख्सियत करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंदा की रूहानी तालीमात विकसित भारत के विजन को हासिल करने में नई तवानाई के साथ मुल्क की रहनुमाई करती रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के एक अजीम दानिश्वर और कौम परस्त स्वामी विवेकानंदा जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने कहा कि स्वामी जी की तालीमात आपसी भाईचारे, अखवत और इंसानियत की बेलोस खिदमत करने जैसे अकदार को तकवियत बख्शते हैं और आजकल के दौर में भी हम सब के लिए मशाल राह हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सूबाई सतह का एक खसूसी इजलास आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में तंजीमी उमूर, पार्टी सरगर्मियों, लोगों को दरपेश मसाइल और तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के साथ किए गए वायदों को पूरा करेगी। दरी असना उन्होंने आज खानयार श्रीनगर में हालिया आग से मुतासरीन में 14,20,000 रुपये की इमदादी रकम तकसीम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने सिख बरादरी को गुरु हरगोबिंद महाराज की 431वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मजहबी त्यौहार, भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी के अकदार को तकवियत बख्शने में अहम रोल अदा करते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा ने आज जम्मू में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग के दौरान 6 और 7 जुलाई को बीजेपी कौमी सदर नितिन नाबिन के जम्मू दौरे के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो कौमी सदर के दौरे को कामयाब बनाने के लिए तनदेही के साथ काम करें। कानून साज असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नामी किताब को तमाम सरकारी लाइब्रेरियों और तालीमी इदारों से वापस लेने और इस पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सार्फीन की शिकायत के बेहतर अजाले और उन्हें इंसाफ फराहम करने में डिजिटल असलाहत के जरिए मरकजी सरकार की जानिब से की जा रही कोशिशों को उजागर किया है। आज इमदादी बाहमी का बैन अक्वामी दिन है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और तावन के वजीर अमित शाह ने इस मौके पर आवाम के तई नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में CP राधाकृष्णन ने कहा है कि इमदाद बाहमी भारत में किसानों, खवातीन और छोटे दर्जे के कारखानों को कुवत बख्शने की मुहरिक रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि इमदाद बाहमी भारत की सकाफत, मजमू कुवत और खुद इंसारी की बुनियाद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो तीनों ममालिक की आला क्यादत से बाहमी दिलचस्पी के कई मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसका मकसद आपसी रिश्तों में मजीद इस्तेकाम लाना है। हजरत सैयदना इमाम जैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स की मुनासिबत से आज मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में खसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें उलमा ने इमाम जैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी कमालात और इस्लामी खदमात पर रोशनी डाली। आसार शरीफ, डांगरपोरा, नरवारा, श्रीनगर में हर नमाज के बाद तबरुकात की निशानदेही कराई गई। और अब मौसम,

बाधे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

दोस्तों प्रोग्राम के नाम अगली फरमाइश आई है सांगली से। आप हैं हनुमंत शिंडे, संगीता शिंडे, ऋषिकेश और वसुंधरा। आपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में नगमा सुनना चाहा है। फिल्म का नाम है मिस मैरी। इसी गीत को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोरा, चंदन अरोरा, प्रकाश अरोरा और अंकुश अरोरा, सदर बाजार कुरावली से। अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, जज्जर हरियाणा से। बिट्टू बाटिया, रीता बाटिया, रजत बाटिया, मंजू और मयंक ने मेल भेजा है। नवशारा गिलकदल से जावेद अहमद, जमीला लारीब, इजहान, मोहम्मद रफीक भट्ट और मोहम्मद अशरफ भट्ट ने पोस्ट कार्ड भेजा है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्ट्रा, पर्ल डिकोस्ट्रा, रोजी डिकोस्ट्रा और विल्स डिकोस्ट्रा। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ, अर्चना, प्रणय, हिरामन और महेश। केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में नगमा। फिल्म का नाम है मिस मैरी।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज, और वादी की आवाज के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के हुए नगमे। जी, ये पोस्ट कार्ड आया है डोंगर गांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से। आप हैं राष्ट्रपाल गजबइये, राधिका गजबइये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजबइये। आपने फिल्म सोल्जर से नगमा सुनना चाहा है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। इसी नगमे को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। रुचि गुप्ता ने मेल भेजा है विराम गाम राजकोट से। आपके साथ हैं ट्विंकल और उमा गुप्ता। बालोदा से राधिका हगोड़िया ने मेल भेजा है। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने मेल भेजा है। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान, आपने मेल भेजा है हनुमानगढ़ राजस्थान से। बालूद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमूरिया, अजय देव तमूरिया और मास्टर अली कबीर। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह और ज्योति सिंह का मेल हमें मौसूल हुआ है। और रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सोल्जर से नगमा अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में।

छत्तीसगढ़ बाटापारा दतरंगी से ये पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की जानिब से। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोध, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। जिला खरगोन सनावद एमपी से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार बुड़ाना। आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया, कान्हा और कृष्णा। बिलई तीन चरोड़ा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुद्दीन सिद्दीकी, जीशान अहमद, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और आपके सभी घरवाले। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलो परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मन्ना डे और साथियों की आवाजों में नगमा फिल्म सीमा से। सुनिए अपनी पसंद।

ये पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है बेरेडी से। आप हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तन्नू करमरकर। आपने फिल्म दीवार से नगमा सुनना चाहा है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। इसी गीत को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं कोजागिरी कॉलोनी कोपरगांव से सुरेश, वर्षा, श्रद्धा और मानसी। गांव जलालपुरा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार, शिवम प्रजापति, आर्यन लाविस प्रजापति, मुनीश देवी प्रजापति। बेतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे और स्वप्निल लोखंडे। शेरीवडनेर महाराष्ट्र से ये मेल आया है बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर और अनामिका दामोदर की जानिब से। दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप और विश्वदीप येले। फिरोजपुर पंजाब से पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है स्वरण सिंह गिल की जानिब से। आपके साथ हैं दलजीत सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह। सलर पहलगाम से ये पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है पीरजादा मेराजुद्दीन, कैसरुद्दीन और निजामुद्दीन की जानिब से। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म दीवार से नगमा किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में।

0: इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समन आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश होगा पेशरफ्त। आज के प्रोग्राम का मौजू है कश्मीर में लेवेंडर की काश्त और रोजगार के मौके। मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद शाह। प्रोग्राम के मेजबान हैं इरफान अमीन मलिक। शब 10:00 कश्मीरी मौसीकी का फरमाइशी प्रोग्राम पेश होगा तोहंस फरमाइश। प्रोग्राम पेश करेंगे रशीद निजामी। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश। डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
3: जिला नामा का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। आज के जिला

0: तो मुझे लगता है हमारी रियासत को और ज्यादा आगे बढ़ने में कोई दुश्वारी अब नहीं होगी। और साथ साथ हमारे जो जवान है वो भी एग्रीकल्चर से रागिब हो रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि इंसेंटिव बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, और वक्त करीब में हम एग्रीकल्चर में रूल करेंगे।
1: रिया साहब, ये बताएं कि आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आपने बहुत सारे किसानों को जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी से बाहर आपने उनको भेजा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सलाह मशवरा मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम से हासिल करें। कैसा रेस्पॉन्स इन एल्डरली किसानों का रहा जो बाहर आपने भेजे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए?
0: जब हमने यहाँ से उन किसानों का इंतखाब किया बाहर भेजने के लिए तो रिलक्टेंस बहुत ज्यादा थी। चाहे रात को 4 नाम आते थे, सुबह 2 इनकार करते थे, लेकिन जब वो यहाँ से गए, फिर वहां से आके जब मैंने उनसे इंटरेक्शन की, वो इतना ज्यादा मुतमइन और खुश थे। उनने बहुत कुछ सीखा है और उनने मुझे ये कहा कि काश हम भी उसी तरह मेहनत करें जम्मू कश्मीर के यूटी में जैसे बाहर के लोग मेहनत करते, हम उनसे ज्यादा पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और आमदनी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि उनने कहा कि हमारी जमीन जितनी ज्यादा फर्टाइल है, बाहर इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है, जितनी हमें हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है उतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है। उसके बावजूद यहाँ ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, लेकिन जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये, हमारी हुकूमत ने ये स्टेप उठाया है यहाँ से किसानों को बाहर भेजना, वहां से तरबियत हासिल करके यहाँ से हैं। मैं यही कहूंगा जो वहां से वापस आए तो उनसे जब मैं मिला, इनसे इंटरेक्शन हुई, मैंने उनको मुतमइन देखा और खुश पाया।
2: आप पेशे प्रोग्राम का इदारिया पेश कर रही हैं आपदा अख्तर।
3: शुक्रिया रेहाना। समीन ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबजात में दौर जदीद में रोजगार के बेहद वसाइल है और दुनिया भर की हुकूमतें अब ज़राअत के शोबे पर इंटीग्रेटेड तर्ज पर तवज्जो दे रही है। और अब जहां कोई जमींदार हाई डेंसिटी सेब के बागात लगा रहा है, वहीं वो इसी बाग में पोल्ट्री या भेड़ पालन का यूनिट कायम करके एक ही वक्त में एक से ज्यादा तरीकों पर आमदनी हासिल कर सकता है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हर पढ़े लिखे नौजवान के लिए सरकारी नौकरी का हुसूल नामुमकिन है, और ऐसे में हमारे नौजवानों को भी इस बात का इदराक करना चाहिए कि व्हाइट कॉलर जॉब्स अब सभी के बस की बात नहीं है। लिहाजा बेहतर है कि हमारे नौजवान कमर हिम्मत कस लें और ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबजात, खासतौर से भेड़ पालन के शोबे में रोजगार के मौके तलाश करें। हुकूमत ने ज़री शोबे में तरह तरह की स्कीमों को अमलाने का अमल शुरू कर दिया है और इन स्कीमों के तवस्सुत से मेहनती नौजवान अपनी और अपने कुंभों की तकदीर बदल सकते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी भी है कि वो इन फलाही स्कीमों के ताल्लुक से जिस कदर भी हो सके ज्यादा से ज्यादा जानकारी पैदा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्कीमों से मुस्तफीद हों।
4: इसके साथ ही जलनामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौशकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नसीर अहमद लोन, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
5: अभी आप समाप्त कर रहे थे हमारी शोबे खबर का तैयार करदा प्रोग्राम जिलानामा। आज का जिलानामा अनंतनाग जिले से मुतलिक था। हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 एक मीटर और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफल

0: सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर, और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल

0: नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्र

0: स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 2 103.5 MHz पर रात के 9 बज चुके हैं। समीना ये चंद फिल्मी नगमे सुनते हैं। आगाज में आपको सुनवाते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से नगमा। जावेद अख्तर के लिखे बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी और आवाज़ है किशोर कुमार की।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी से सजा जावेद अख्तर का लिखा यह नगमा सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। अब आइए मुकेश को सुनते हैं धर्म करम फिल्म से। ये नगमा लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे मौसीकी से सजाया है आर डी बर्मन ने।

जी हाँ सामिन, आपने धर्म करम फिल्म से नगमा सुना मुकेश की आवाज़ में। अब आइए आखिर पे आपको सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म से नगमा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, साहिर लुधियानवी का लिखा नगमा है और जयदेव की मौसीकी।

0: फिल्म मिनट में आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे थे। आखिर पे आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना हम दोनों फिल्म से। 9:15 हो रहे हैं, आइए अब आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया, ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तोगयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191

0: रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन अलाक्वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असम्बली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निज़ाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निज़ाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
1: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
0: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीत मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا کی مہازرائی سے 21ویں صدی کا توانائی کا

0: सबसे बड़ा बुहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मुहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि बुहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपये से जबरदस्त इजाफा तकरीबन 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 2014 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: वजीर दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों की बरामदात में इजाफे, अंदरून मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुज़श्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने किल्लत का इज़ाला किया, मौके बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली पैदा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की इत्तलात सामने आने पर टेलीग्राम ऐप को नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम को हिदायत दी है कि चोरी छुपे हासिल की गई फिल्मों और ओवर द टॉप ओटीटी प्रोग्रामों के खिलाफ बिला ताखीर इकदामात किए जाएं। ज़राए ने मजीद बताया कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इंडोनेशिया का ये चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसूल दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें

0: सही बात है,
1: तो आप कहीं भी एप्पल बोलोगे तो कश्मीर का वर्ड आपको दिमाग में आएगा,
0: सही बात
1: आप कश्मीर बोलोगे तो एप्पल का वर्ड आपको आएगा। एंड एज ऑफ नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट, लेवेंडर एंड कश्मीर आर टाइड टुगेदर।
0: अच्छा,
1: इनका एक जोड़ ऐसे बने कि कल अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम एक अच्छी खासी लेवल पे आ गए हैं आज की डेट में, कि एक लेवेंडर ने एक इम्पॉर्टेंट स्पेस एक एक्योर की है आज की डेट में। जैसे आपने भी खुद बोला कि पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, एंड इन नियर अबाउट इन एवरी फंक्शन और एवरी इवेंट ऑफ देयर इज सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेवेंडर स्टॉल और लेवेंडर इशू, इट इज देयर। तो एक लेवेंडर ने एक अच्छी अपनी पोजिशन बना ली है, एक अच्छा एक स्पेस एक्योर किया है इन होल ऑफ द गैलरी ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिकल्स जो स्पेशली द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में।
0: अच्छा, मैं देखता हूँ बदरवा को इंडियाज लेवेंडर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, क्या खास बात है बदरवा में कि लेवेंडर की वजह से बदरवा को एक नई पहचान मिली?
1: देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ साल पहले लेवेंडर जो उधर जो वो था वो रेनफेड एरियाज तकरीबन था, उधर की पॉपुलेशन वो उतनी वेल ऑफ नहीं थी, उधर फार्मिंग कम्युनिटीज थी वो स्कैटर्ड थे, तो उनके पास कोई ऐसा क्रॉप नहीं अवेलेबल था जिसको वो ग्रो सकते और अपनी लाइवलीहुड अपलिफ्ट कर सकते थे, इकोनॉमिक कंडीशन अपनी अपलिफ्ट। फिर आयुष, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट आई मे से कि आयुष मिनिस्ट्री जो है उनने अरोमा मिशन अरोमा के अंडर उनको कुछ शायद उस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट और सब्सिडाइज्ड वट एवर देयर शेड्यूल वाज, उनको किस शेड्यूल के स्कीम के अंडर उनको वो लेवेंडर सैपलिंग्स उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई।
0: अच्छा,
1: तो लेवेंडर सैपलिंग्स कुछ साल में वो वहाँ उतनी बढ़ गई कि वो पूरा एरिया जो है आज की डेट में उसका आई थिंक द मेगा एंड द ओनली क्रॉप of that area is lavender as of now.
0: Achha.
1: तो उधर अब उन्होंने वो कॉपरेटिव भी FPOs भी जनरेट किए हैं, दे आर वर्किंग इन अ कॉपरेटिव बेसिस, तो अब उसका वो पूरा जो है एरिया लेवेंडर के ही अंडर आता है, तो दैट इज वाई दे हैव जस्ट प्रोजेक्टेड एज द लेवेंडर विलेज।
0: हमारे बहुत सारे किसान ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उनकी उनके पैगाम के लिए मुझे बताइए कि कैसे एक फार्मर अपने अपना जो ज़मीन है उसको लेवेंडर की काश्त वो कर सकता है, उसको क्या चीज़ें दरकार है, जो सैपलिंग्स है प्लांट्स वगैरह ये कहाँ पे दस्तियाब होंगे, उसको क्या करना चाहिए?
1: ये क्वेश्चन जो है ये रिलेट करता है एक्सक्लूसिवली टू मी एंड टू माई डिपार्टमेंट।
0: सही बात है।
1: सो मैं अगर आप इजाज़त देंगे तो पहले मैं थोड़ा इसका डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज टूवर्ड्स द लेवेंडर मैं इसका एक बैकड्रॉप आपको देता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: जनाब देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ मैं काम करता हूँ, जिस डिपार्टमेंट का मैं एक हिस्सा हूँ,
0: सही बात,
1: डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है आज की डेट में हमारे पास एक फ्लोरिकल्चर की विंग है, अलग से एक विंग है फ्लोरिकल्चर विंग। फ्लोरिकल्चर विंग में एक अलग अलग फूलों के जो अकसाम हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स या एरोमेटिक प्लांट्स हैं, वो अकसाम वो वी आर कंसर्न विद दोज प्लांट्स। इसमें हमारा लेवेंडर एक वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स एंड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स हमारी स्कीम का है लेवेंडर।
0: अच्छा,
1: लेवेंडर हमारे आज की डेट में हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, 6 डेस्टिनेशंस हैं, 6 फार्म्स हैं जहाँ पे हम लेवेंडर की काश्त करते हैं। सबसे बड़ा सिरहामा में है, दूसरा नूनर में है, तीसरा अल्लापोरा में है, आर्गीचक में है, लवलमंडी में है। ये सारे जो यूनिट्स हैं हमने एक्सक्लूसिव डेडिकेट किए हैं लेवेंडर प्रोडक्शन के लिए। अब हम इन फार्म्स पे क्या करते हैं? इन फार्म्स पे हम 3 चीज़ें करते हैं। नंबर 1, जो हमारा लेवेंडर ऑलरेडी इधर लगा हुआ है उसकी उसका हम प्रोड्यूस उठाते हैं, उसके हम पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस करते हैं और इसके प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेवेंडर प्रोडक्ट्स। बहुत मैं उस पर बाद में आऊँगा, हम बना। नंबर 2, हम यहाँ पे लेवेंडर की सैपलिंग्स तैयार करते हैं, छोटे प्लांट्स तैयार करते हैं नर्सरीज में, अपनी नर्सरीज हम डेवलप, वो नर्सरीज वो सैपलिंग्स हम अपने जमींदार भाइयों में अक्रॉस द वैली फ्रॉम खन्नाबल टू खादिनयार, वी से फ्रॉम अनंतनाग टू बारामूला एंड कुपवारा, हम हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कास्ट।
0: अच्छा,
1: अमंग द फार्मर्स। सो फार्मर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, हम हमारा डिपार्टमेंट इन द सर्विस ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी, हम उनको फ्री ऑफ कास्ट ये सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा रोल हमारा है कि लेवेंडर के वजह हम इन फार्मर्स को ट्रेन करते हैं।
0: अच्छा,
1: हम इन फार्मर्स को ट्रेन करते हैं, उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, गाइड करते हैं, आपको कैसे लगाना है, आपको कहाँ पे लगाना है, फिर इसकी इरिगेशन की उतनी जरूरत नहीं होती, इसका पेस्ट का उतना इफेक्ट

0: होता है इसका रोडेंट्स, वो हम सारे इनको ट्रेन करते हैं। इवन मैं आपको यहाँ बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि हाल ही में आपने भी सुना होगा, पूरी वैली जानती है, 2-3 साल पहले HADP का एक मेगा प्रोग्राम स्कीम्स का एक बंडल आया था, HAD होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आया था एक मेगा प्रोग्राम कश्मीर और J&K के लिए। तो उसमें भी एक अलग से प्रोजेक्ट है, वो 29 प्रोजेक्टों का एक कॉम्बिनेशन है। तो उसमें एक प्रोजेक्ट अलग से है डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, ये एक अलग प्रोजेक्ट है। उसमें लेवेंडर पे खासी ये सिट्रस दिया गया। लेवेंडर में हमने उस प्रोग्राम के अंदर इन 3 सालों में तकरीबन मोर देन 8 लाख सैपलिंग्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स फ्री ऑफ कॉस्ट।
1: अच्छा,
0: हम अलग अलग अक्रॉस द वैली, हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो देते हैं। पहले साल शायद 1.5 लाख के करीब देता है, दूसरे साल 2.5 लाख, और इस साल हमने तकरीबन 4 लाख का ये टारगेट कवर किया।
1: मतलब रिस्पॉन्स बढ़ रहा है,
0: रिस्पॉन्स बहुत बढ़ रहा है, नहीं बढ़ नहीं रहा है, बहुत बढ़ रहा है।
1: और डिमांड क्या है, जैसे आप बोल रहे थे हॉलैंड बल्गेरिया या बाकी कंट्रीज में वो इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारा सिनेरियो क्या है अगर फार्मर्स अब प्रोड्यूस कर रहे हैं लेवेंडर को, तो अल्टीमेटली मार्केट क्या है, मार्केट का सिनेरियो क्या है?
0: हाँ, बहुत अच्छा। अगेन आई विल कम टू माई सब्जेक्ट जो हमारा HADP में है। यहाँ पहले तो जहाँ ये ग्रो करते थे, जो फार्मर्स ग्रो करते, इवन आई कैन से विद अथॉरिटी, खाली डिपार्टमेंट में ये ग्रो नहीं है, ये प्राइवेट प्लेयर्स भी ग्रो कर रहे हैं कुछ बड़े। और आई कैन सी अ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज ऑफ वैली, दे आर, आई कैन नॉट नेम देम हियर, लेकिन मुझे हमको पता है कि कुछ बड़े कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जिनने अपने बड़े बड़े लैंड चंक्स पे लगाया हुआ है, और कुछ छोटे फार्मर्स भी हैं, और कुछ ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, फार्मर्स हैं जिनने लीज पे लैंड ली है, तो उनने भी ग्रो किया हुआ है।
1: अच्छा,
0: तो आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि फार्मर्स खुद अपना प्रोड्यूस किसी के पास 5, इसका नॉर्मली अभी तक जो था कुछ ईयर्स पहले, इसका ऑयल ही खाली निकाला जाता था, लेवेंडर ऑयल, उसकी सेल के लिए इंडिविजुअल लेवल पे वो इंडिविजुअली मार्केट ढूंढते थे, अपने सेल करते थे। लेकिन फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव जस्ट मेड HADP की वसादत से इसको एक FPO पार्क अलॉट हो गई इधर। FPO पार्क इट्स इंडर नुनर में, गांधरबल में, हमारी अभी नियर इन इट्स फाइनल स्टेज नाउ। उसमें क्या हो गया कि उसमें पहले प्रोड्यूस को जो जैसे नर्सरी कल्टीवेशन है, नर्सरी में हमने प्लांट्स दे दिए, अब फिर बंदे को ट्रेन भी किया कि कैसे इसका देख रेख करना है, कैसे इरिगेशन या कैसे कब इसका, वंस इट्स ग्रो नाउ इसको हार्वेस्ट कब करना है, हार्वेस्ट भी दे दिया। अब इसकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग जो है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में उसको हैंडलिंग और उधर तक लाना, टू एंड फ्रो उसको लाने ले जाने में डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, उधर फिर डिस्टिलेशन करना है या कोई प्रोसेस करना है, उसको डिपार्टमेंट नॉमिनल चार्ज पे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोसेसिंग करता है। उधर हमारा प्रोसेसिंग स्टोरेज यूनिट एक है, प्रोसेसिंग यूनिट एक है, उसके बाद बॉटलिंग एंड लेबलिंग यूनिट है, वो भी उधर करते हैं। उसके बाद उसका एक, जैसे जहां आपने बोला मार्केट का, वी हैव डेवलप्ड एन ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देयर।
1: अच्छा,
0: हमारा उधर में इट इज जस्ट इन अ कपल ऑफ मंथ्स इट विल बी थ्रोन ओपन टू द पब्लिक, इट्स इन द फाइनल स्टेज। तो उधर ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हमने एक तैयार किया है, वेयर द ऑल द प्रोड्यूस विल बी लिंक्ड टू द इंटरनेशनल मार्केट थ्रू इंटरनेट।
1: अच्छा,
0: सो ग्लोबल मार्केट पे हमारी एक्सेस हो जाएगी। उससे जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, जो भी हमारा लेवेंडर बनाने वाला है या जिसका प्रोड्यूस है, वो अपना प्रोड्यूस इंटरनेट पे उधर से ई मार्केट फैसल से ग्लोब, जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने और कहीं पे IIKST जो पंपोर है आपने सुना होगा, उधर सैफरान पार्क जो हमारी है, वी हैव डेवलप्ड फैसिलिटी देयर, और हमारा सैफरान का वर्ल्ड मार्केट है उधर।
1: सही बात है।
0: इसी तरह इंशाल्लाह इन अ कपल ऑफ मंथ्स वी आर गोइंग टू लॉन्च वन मोर ई मार्केटिंग फैसिलिटी एट नुनर। तो उससे लेवेंडर प्रोड्यूसर्स, नॉट ओनली लेवेंडर, जो मेडिसिनल प्लांट के, एरोमेटिक प्लांट्स के प्रोड्यूसर्स होंगे, उनकी एक्सेस बन जाएगी टू द वर्ल्ड मार्केट।
1: अच्छा, मुझे बताइए, अभी बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है हमारे साथ ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, कि उनके पैगाम के लिए हमें बताइए कि अगर किसी के पास 1 कनाल का ज़मीन है, वो इसको लेवेंडर की काश्त स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मुझे बताइए कि ऑन एन एवरेज वो कैसे अंडरस्टैंड करे कि क्या प्रॉफिट्स हैं, एक साल में वो कितना कमा सकता है, रफली एक फिगर अगर आपके पास होगी।
0: देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ, मैं एक टेक्निकल सिनेरियो में आपको ले जाना चाहता हूँ।
1: जी,
0: अपने यंगस्टर्स जो यूथ हैं हमारे, फ्रेशर्स हैं,

0: मैं थोड़ा उनका माइंड बनाने के लिए एक मैं उनको एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। नंबर वन, कुछ साल पहले हमारा इधर हर एक एरिया में आप देखोगे जो भी हमारे प्लेन फील्ड्स थे, लैंड्स थे, उसमें धान उगता था। ऑल इट वाज ओनली पैडी ऑल ओवर।
1: सही बात है,
0: वी आर ऑल विटनेस टू इट कि खाली हमारा धान उगता था। लेकिन जब साइंटिफिक रिसर्च इन प्लेस आ गई, जब साइंटिफिक रिसर्च आ गई कि वी जस्ट वांट टू अपलिफ्ट जो हमारे रूरल इकोनॉमी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया जाए, फिर उस वक्त क्या हो गया कि जनाब हमको शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम धान टू द ऑर्चर्ड्स। तो उस वक्त आपने देखा होगा बहुत टाइम हो गया कि बहुत से धान फील्ड्स जो है दिस ट्रांसफॉर्म देयर लाइवलीहुड फ्रॉम धान फ्रॉम पैडी टू वो आगे इस पे ना ऑर्चर्ड्स पे आगे।
1: सही बात है,
0: इट वॉज फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त हो गई कि अब आज की डेट में दूसरी वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम रेगुलर द ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स, वहां से एक हाई डेंसिटी पे हम आ रहे हैं।
1: सही बात,
0: इट्स अगेन द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। मींस कि टेक्नोलॉजी हैज टेकन द फार्मिंग कम्युनिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्टेज एंड देन टू द थर्ड स्टेज।
1: सही बात है,
0: ये दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। उससे अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी जो है, फार्मिंग कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है और मोर एंड मोर पीपल को, यूथ को उसकी तरह अट्रैक्ट करना है। आप देखोगे 10-15 साल पहले उतने यूथ थोड़ा बहुत हेजिटेट कर रहे थे टू गो टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर
1: जी,
0: बट आज की डेट में यू कैन सी अ गैलेक्सी ऑफ यंगस्टर्स मोटिवेटिंग टूवर्ड्स, वो जा रहे हैं एग्रीकल्चर की तरफ और हाई डेंसिटीज इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये कर रहे हैं। इसी जिम्न में एक इसका दूसरा पहलू है, धान को बहुत सी पानी की जरूरत होती थी, पानी दरियाओं में कम हो गया, नदी नालों में पानी कम आ गया
1: जी,
0: उनको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे धान की जो उनको पानी रिक्वायरमेंट थी। ऑर्चर्ड्स में उनको ये पानी कम चाहिए था लेकिन उनका यील्ड उतना नहीं था
1: जी, बिल्कुल।
0: तीसरी बात, अब इसमें जो है हाई डेंसिटी में उनको आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, लेकिन जब हम लेवेंडर की तरह आते हैं, आई एम गेटिंग टू द रीचिंग टू द लेवेंडर, लेवेंडर को ना तो आपको सबसे पहली बात है ना तो आपको उतनी फर्टाइल लैंड की जरूरत है, इवन द बैरन लैंड्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इन द लेवेंडर फार्म। नंबर टू, ये ड्रॉट रेजिलिएंट, इसको पानी की उतनी जरूरत नहीं, ओनली ज्यूरिंग इट्स बेबी स्टेज इन्फेंसी स्टेज जब इसको लगना होगा प्लांट, जब आप लगाते हैं उस टाइम कुछ टाइम के लिए आपको इसको इरीगेट करना पड़ेगा
1: जी,
0: जब तक ये रूटिंग अपनी कर ले, वंस इट्स रूट्स फिर उसको उतनी परवाह नहीं है। तीसरा, इट्स रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पेस्ट इज रेजिस्टेंट टू वेस्टर्न इन्फेक्शंस, इसमें कोई आपको पेस्टिसाइड एप्लीकेशंस वो
1: मतलब इनपुट कॉस्ट नहीं है,
0: बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल,
1: बहुत मिनिमल।
0: अच्छा, और सबसे एक अहम बात थी, आपने देखा होगा बल्ब्स है, ट्यूलिप्स है, हम बोलते हैं रोडेंट्स ने डैमेज किया, रोडेंट इज द मेजर पेस्ट एज ऑफ नाउ इन द एग्रीकल्चर, रोडेंट्स एक बड़ा नुकसानदेह पेस्ट, दिस इज रिपेलेंट टू द रोडेंट्स, इसको रोडेंट्स असर नहीं कर रहे। अब एक है एक यंग एंटरप्रेन्योर को, एक यंगस्टर को, एक अनएम्प्लॉयड यूथ को, उसके पास एक कनाल है, 10 कनाल है, 5 कनाल है, इफ ही फाइंड इसमें वो नॉर्मल क्रॉप हाई डेंसिटी हाई लेवल यील्डिंग क्रॉप उसमें नहीं कर सकता है, आई कैन एडवाइस हिम नॉट टू वरी, गो फॉर द लेवेंडर, 700 से 750 प्लांट्स उसको एक कनाल में लगाने हैं
1: बस,
0: जस्ट
1: अच्छा,
0: इट हैज टू बी केप्ट सफिशिएंटली अवे फ्रॉम ईच अदर ताकि इसके इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हो जाए, और क्योंकि ये पहले इतना प्लांट्स होगा फिर ये जब इसका आफ्टर थर्ड फोर्थ ईयर जब अपना गर्थ लेता है, वी मस्ट हैव अ प्रॉपर स्पेस फॉर इट टू टेक इट। तो 700 से 750 प्लांट्स इसको एक कनाल में लगेंगे,
1: बिल्कुल,
0: एंड फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स इट विल टेक इट्स स्पेस एंड आफ्टर थर्ड ईयर इट विल गिव यू द
1: रिजल्ट्स।
0: हाँ, थर्ड ईयर के बाद आप इसका क्रॉप यील्ड कर सकती हो, अब इसमें फोर्थ ईयर में इसका मैक्सिमम क्रॉप, एंड इट इज देयर फॉर 13 ईयर्स 1-3।
1: अच्छा, एक बार पौधा लगाया 13 साल,
0: 13 साल नहीं, 13 साल के बाद के लिए ये अच्छा क्रॉप देगा।
1: सही बात है,
0: 13 साल के बाद इट टर्न्स अ बिट एज्ड, उसके बाद हमको इसको फिर भी परेशानी नहीं है, यू हैव टू कट इट डाउन, हम इसको चॉप करते हैं تو نئے روٹ نئے شوٹس پھر سے گرو کرتے ہیں.
1: تو جو آپ بول رہے ہیں ایک کنال میں اتنے پودے لگانے ہیں, ایک رف فگر ہوگا, مارکیٹ کا سینیریو آپ کو پتا ہوگا, انسان ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ کتنا وہ ایئرلی انکم.
0: پہلے دو سال اس کو انکم نہیں آئے گی, اٹ ول بی منیمل. اگر کچھ وہ کما سکتا ہے فرام دا اسپائکس, اگر انفلوئنسرز میں بک میں

0: our book is my whatever it's minimum.
1: Hmm.
0: It, after third year and fourth year, it can go near about isko near about 3 quintals of the biomass isko milenge.
1: अच्छा.
0: पर का उससे क्या होता है? एक बायोमास वी कॉल इट एक पूरी स्पाइक जिसमें आपका कशिर पर इस्तेमाल है नल एक स्टेम भी होगा आई मीन फ्लावर्स थे आसन इसके फ्लावर्स भी होंगे और इसके बड्स भी होंगे तो टुगेदर वी कॉल द बायोमास
1: अच्छा
0: इस बायोमास में अलग अलग मार्केट्स हैं कहीं पे आपको पूरा स्पाइक्स का कस्टमर ऐसे ही मिलेगा मुझे कुछ नहीं करना मुझे स्पाइक्स ऐसे दे दो उसमें हम कुछ दिनों के लिए 10 days ड्राइनेस इन शेड करते हैं वी सेल इट समटाइम्स वी सेल इट एज स्पाइक्स
1: अच्छा
0: और समटाइम्स वी से कि नहीं स्पाइक्स नहीं कोई बड्स आपने शायद आपने सुना होगा वी हैव लेवेंडर पिलोज अवेलेबल इन द मार्केट व्हाट डू यू मीन बाय लेवेंडर पिलोज लेवेंडर पिलो क्या होता है लेवेंडर की एक खसूसी बात है इसका एस्थेटिक के अलावा एक मेडिसिनल उसको क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल इसमें इफेक्ट है मेडिसिनल नहीं स्पिरिचुअल इफेक्ट यू डोंट नीड टू वो स्लीपिंग पिल्स आपको नहीं लेनी है
1: अच्छा हीलिंग इफेक्ट
0: हीलिंग इफेक्ट है एग्जैक्टली इट्स द प्रॉपर वर्ड ये जो लेवेंडर का पिलोज होते हैं अगर किसी को खुदा ना खासा नींद प्रॉपरली नहीं आती है तो उसको कोई स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत नहीं है कीप अ लेवेंडर पिलो छोटा सा इसका बड्स इसमें इसके बड्स रहते हैं एक छोटे से पोरस पिलो में छोटा सा एक बैग होता है वी कॉल इट अ लेवेंडर पिलो उसमें इसके बड्स रहते हैं ड्राइड बड्स यू कीप इट असाइड ऑफ योर पिलो जो बेड के साइड में आप बेड के ऊपर आप रख लो साइड आपको नींद खुद आएगी मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ हमारे पास नरमय फार्म है
1: अच्छा
0: आप कितनी भी गर्मी में आप कितने भी गुस्से में आप कितने भी टेंशन में आप गेट के अंदर चले जाओ आप उसको दो साइड से वॉक वे है हमने वॉक वे रखा है फॉर अक्रॉस द लेवेंडर फील्ड जब आप उसके बीच में से चलते हैं व्हेन यू रीच अदर एंड ऑफ द फार्म आपका टेंपर भी कूल हुआ होता है इट्स अ फैक्ट आपका टेंपर भी कूल हुआ होता है आपका आपका टेंपर भी कूल हुआ होता है आपका मिजाज भी अच्छा हुआ होता है और आपको कोई ये थकावट भी नहीं होती है
1: अच्छा
0: इट्स हीलिंग इफेक्ट आपने जो बोला सो लेवेंडर कभी आप बड्स के लिए भी आपको कस्टमर मैं उधर मार्केटिंग पे आ रहा हूँ कस्टमर आपको लेवेंडर का बड्स के भी लिए आया सो यू कंसीडर दिया अगर आप कुछ भी नहीं है तो उसमें भी नहीं आया कस्टमर इसमें भी नहीं आया वी कैन गेट एक्सट्रैक्ट हम इसमें से लेवेंडर ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट के पास 6 डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं अपने
1: अच्छा
0: हम खुद अपना प्रोड्यूस खुद डिस्टिले लेकिन खाली हम अपना नहीं करते हम लोगों का भी करते हैं whosoever comes to us कि मेरे पास इतना है मेरे पास उतना है कि कुछ किसी की प्राइवेट प्लेयर्स के पास प्राइवेट ग्रोअर्स जो हैं उनके पास कई के पास अपना भी है लेकिन जो हमारे पास जिनके छोटे के पास डिस्टिलेशन यूनिट्स नहीं वो हमारे पास आते हैं हमको उनको इट्स अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं फिर वही आऊँगा वी आर वेलफेयर डिपार्टमेंट फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट हम उनको डिस्टिलेशन ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पर करते हैं फिर उससे लेवेंडर ऑयल निकलता है लेवेंडर ऑयल का अलग एक मार्केट है लेवेंडर ऑयल में आपको हम अपने डिपार्टमेंट में लेवेंडर क्रीम्स लेवेंडर स्प्रेस हम खुद बनाते हैं
1: अच्छा
0: इसी तरह बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं आपने देखा होगा कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत फ्रेश स्टार्टअप्स बहुत यहाँ मशहूर बहुत ग्रोथ हुई है यंगस्टर्स बहुत फील्ड में आए हैं इवन फीमेल्स इवन यंगस्टर गर्ल्स वो आई हैं फील्ड दे आर वर्किंग ऑन इट दे आर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लेवेंडर ऑयल हमसे बहुत लेते हैं लोगों से भी लेते हैं और इसके अदर दैन द नॉर्मल मेडिसिनल एंड द कॉस्मेटिक मार्केट जो इसका है अदर दैन द नॉर्मल फार्मास्यूटिकल एंड उसके अलावा मैं बोलता हूँ कि ये रेगुलर यहाँ एक सिनेरियो बन रहा है इवन आवर इन आवर वैली कि यंगस्टर्स जो इसमें आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स मुख्तलिफ किस्म के स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं दे आर सेलिंग इट एट देयर प्रोड्यूस दे आर पैकिंग इट एट देयर ओन लेवल दे आर शेपिंग इट एट देयर विल एंड एट वो ना एक नए इसको एक नई टीच देते हैं एंड दे सेल इट
1: तो एवरेज इनकम की हम बात कर रहे थे तो कितना एवरेज इनकम
0: आफ्टर थर्ड ईयर आई कैन से फ्रॉम 1 canal ऑफ लैंड इट कैन गिव यू 30,000 to 50,000 रुपीज
1: अच्छा ठीक
0: फ्रॉम 1 canal ऑफ
1: लैंड मतलब ये ऐसे भी हम समझेंगे कि अगर किसी का 1 canal का जमीन है अगर उसमें सेब के दरख्त मौजूद हैं तो ये जो बाकी जमीन बचा हुआ है वहाँ पे लेवेंडर ग्रो कर सकते हैं और इसको फार्मर की जो इनकम है वो डबल हो सकती है
0: बिल्कुल जनाब आपका कहना बिल्कुल नॉट ओनली इन एप्पल किसी भी ऑर्चर्ड में कोई भी ये होगा इंटरक्रॉपिंग के लिए लेवेंडर इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव
1: अच्छा

0: आप बेस्ट कर सकते, क्योंकि इसका नॉर्मल इफेक्ट के साथ, नॉर्मल क्रॉप के साथ कोई कंपटीशन
1: तो
0: नहीं
1: एज ऑन डेट अगर ये रुझान है तो क्या जो हमारा बैरन लैंड के अलावा बाकी जैसे पैडी लैंड है हमारा, क्या स्विच हो रहा है लेवेंडर की तरफ कश्मीर में? क्या एरिया बढ़ रहा है और प्रोडक्शन भी अब बढ़ रही है?
0: है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बोला, अब मैं आऊंगा जो पहले बोला था, मैं आपको बोलूंगा। जैसे मैंने बोला, एप्पल और कश्मीर आर टाइट टुगेदर, दे आर
1: वन
0: मेटाफोर, दे आर वन। कहीं पे भी आप करेंगे एप्पल की बात, को कश्मीर आपके दिमाग में आएगा।
1: सही बात है।
0: इसी तरह आवर डिपार्टमेंट इज वर्किंग, वी हैव मेड द स्लोगन लेवेंडर एंड कश्मीर। आज की डेट में आप देखोगे कि किसी के पास एक मरला जमीन है, एक कनाल जमीन है, 10 कनाल जमीन है, 50 कनाल। सेब का पेड़ तो वो लगाता ही लगाता है, एक मरला वाला भी लगाता है, अपना छोटा सा लान होगा उसमें भी, फिर भी एक एक पेड़ लगाएगा।
1: जाहिर सी बात है,
0: किसी का एक कनाल होगा वो 2-4 पेड़ तो सेब के लगाएगा,
1: बिल्कुल
0: किसी का 100 कनाल होगा वो भी पहली प्रेफरेंस में सेब ही लगाएगा।
1: सही बात है।
0: हमने अपना एक मोटिव बना दिया है, हम इसी तरह कर रहे हैं कि वी आर वर्किंग, कि हम इसी तरह लेवेंडर भी कश्मीर के हर घर में पहुंचा के रहेंगे।
1: अच्छा शाह साहब, जैसे आप बोल रहे हैं हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो फीजिबल है लेवेंडर के लिए, तो एज ऑन डेट क्या ये कहना सही होगा दैट कश्मीर जो है इट्स लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया?
0: वी आर वर्किंग, और मैंने वही बोला, वी आर
1: नहीं, एज ऑन डेट किस बाकी रियासतों में भी ऐसा हो रहा है? हमारी जे एंड के यूनियन टेरिटरी में अभी लेवेंडर ग्रो हो रहा है, तो बाकी जो स्टेट्स हैं पूरे मुल्क में जितने भी रियासतें हैं तो उनमें?
0: वी आर लीडिंग एज ऑफ
1: अच्छा
0: नाउ, वी आर लीडिंग एज ऑफ नाउ, बट टू से इट एक्सक्लूसिव कैपिटल ऑफ लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया
1: अभी टाइम चाहिए।
0: उस पर टाइम चाहिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। मैंने बोला ना, पिछले 3 साल में अंडर द प्रोग्राम ऑफ HADP वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड नियर अबाउट 8 to 9 lakh प्लांट्स अमंग द फार्मिंग कम्युनिटी
1: जी।
0: सो इंशाल्लाह इन द कमिंग 2 more years इट विल बी अचीव्ड, एंड डेफिनेटली आपका ये मैं कहना सही प्रूव करूंगा, इंशाल्लाह ऊपर वाले की मर्जी होगी तो वी विल ट्रांसफॉर्म कश्मीर एज द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया।
1: शाह साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान इरफान अमीन मलिक और प्रोड्यूसर वसीम फारूक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम पेशरफ्त। आज के प्रोग्राम का मौजू था कश्मीर में लेवेंडर की काश्त और रोजगार के मौके। मेहमान थे डॉक्टर अब्दुल हमीद शाह। इनके साथ हम कलाम थे इरफान अमीन मलिक और प्रोग्राम के पेशकार हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 7.8 मीटर FM 2 73.5 मेगाहर्ट्ज़ सुन पेट रात सन्ज ठीक 10 बजे समीन पेश चु कश्र मौसीकी हुंद फरमाइशी प्रोग्राम तुहंज फरमाइश। प्रोग्रामिक मेज़बान रशीद निज़ामी।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शब के 11 बज रहे हैं। अब आइए आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया।

0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi-OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah

0: Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. The Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. The monsoon session of the Parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Industry experts have said that ethanol blending program has not been introduced overnight but has been implemented through a measured, step-by-step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla said that ethanol blending program was placed in the public domain for a structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
1: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
0: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. India set a target of 191 runs for England. In reply, England scored 191 runs for 6 in 19 overs. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in the allotted 20 overs. Jacob Bethel was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शब की 11:10 हुए हैं। सामने आज के नशरियात बर्खास्त करने से पहले एक नज़र डालते हैं कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले खास प्रोग्रामों पर। रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश होगा डिस्कशन टाइम। इसमें जिस मौजू पर बहस होगी वो है साहित्य एकेडमी और कश्मीरी जबान। शुरका हैं प्रोफेसर सतेंद्र सिंह नूर, मिस्टर ए कृष्ण मूर्ति, श्रीमती रेनू भान और डॉक्टर अजीज हाजनी। प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं रफीक राज। शब 10 बजे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश होगा आपकी फरमाइश। प्रोग्राम पेश करेंगे जावेद अंद्राबी। सुबह का है प्रोग्राम पेश होगा सुबह 6:35 पर। लाइव मॉर्निंग शो पर सुबह नशर होता है सुबह 7:10 पर। सुबह 8:15 पर सन तारीख प्रोग्राम पेश होगा। इसमें डॉक्टर मुमताज यतो और सतीश विमल के दरमियान गुफ्तगू होगी। मौजू है आर्को एस्ट्रोनॉमिकल पास्ट ऑफ कश्मीर। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जबान है। नशर होगा सुबह 8:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9 बजे। सुबह 9:45 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा जेके बैंक डायरी। एक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रेडियो साथी ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 10 बजे। बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम होनहार सुनेंगे सुबह 10:30 पर। सामिन कल मारूफ सूफी शायर नियामत साहब की बरसी है। इस मौके पर सुबह 11 बजे खसूसी प्रोग्राम गाश तारुक में इन्हीं की जिंदगी और कलाम से मुतलिक बात होगी। तहरीर मोहम्मद यूसुफ टेंग। 12:10 पर आप चंद उर्दू गजलें सुनेंगे। मगरबी मौसीकी का हफ्तेवार प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो नशर होगा दिन में 1:10 पर। हमारे शो में खबर का तैयार करदा प्रोग्राम नई मंजिलें ब्रॉडकास्ट होगा दिन में 2:30 पर। पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे पेश होगा। पंजाबी प्रोग्राम

हम 4:30 पर और गोजरी प्रोग्राम शाम 5 नष्ट होता है। शाम 6:05 पर प्रोग्राम पेश होता है गर्मी बानी खतरा। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहर भी नष्ट होगा शाम 7, वादी की आवाज़ प्रोग्राम आप सुनेंगे रात 8 और रात 8:30 पर चंद कश्मीरी गज़लें पेश होंगी। सामिन, ये थी तफसील कल हमारे यहाँ से नश्र होने वाले चंद प्रोग्रामों की। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शब के 11:13 और 30 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की नशरियात अब यहीं पर बर्खास्त होती है। कल सुबह 6:28 पर मामूल की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर। जय हिंद।

0: the key chip maker played a key role in the entire stock market thing. Mm. So we are not going to have that kind of situation, but the important thing for us that we will be becoming a good exporter, a big exporter of the semiconductor on the line of the electronic goods.
1: All right.
2: भारतीय घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे हफ्ते बढ़त देखी गई. इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के माहौल के और बेहतर होने की संभावनाएं थी. इस सप्ताह की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 664 अंक यानी 0.86% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 215 अंक यानी 0.89% बढ़कर 24,271 पर बंद हुआ. विस्तृत बाजार का प्रदर्शन भी घरेलू शेयर बाजार जैसा ही रहा. निफ्टी मिड कैप में 0.6% से ज्यादा की बढ़त देखी गई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप में इस सप्ताह 2% का उछाल आया. सेक्टर के हिसाब से देखें तो रियल्टी, फार्मा और हेल्थ केयर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एनर्जी सेक्टर नुकसान में देखे गए. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से जबरदस्त रिकवरी देखी गई. फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपया 82 पैसे कमजोर हुआ और अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.22 रुपये पर बंद हुआ. हालांकि कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में बेंचमार्क इंडेक्स ने नकारात्मक रुख दिखाया. सेंसेक्स में 10.2% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 8.7% नीचे आ गया, जबकि विस्तृत बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा. निफ्टी मिड कैप में लगभग 2.2% और निफ्टी स्मॉल कैप में 6.5% की बढ़त देखी गई.
1: शशि जी, द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक ऑफ गेन्स. If we look at the backdrop of the last 4 or 5 months, ever since the Middle East or the West Asian crisis happened, are the bad days behind us and can we look forward to greener pastures in the coming
0: just
1: days?
0: Just last week, I was talking to one of the largest mutual fund of the country. Mm. And the first line, he said that the worst is behind us. Mm. And we are on a better path. Now, the key concern at this moment is, one is, of course, the monsoon. Of course, we are... Mm. coming out from the West Asia crisis.
1: El Nino has
0: El Nino.
1: Yes.
0: So after West Asia, the biggest concern at this moment is El Nino. Because if we go by the number, I think 40% deficit was in the month of June. Mm. And when you are entering July, of course, we are seeing good spread of rain, but we do not know that what will happen. And if I go by the IMD forecast, they are saying that it will be below normal. Mm. So that is a real concern. And why this is a concern? Because 65% of population is in the rural area. 50% of labor force is in the rural area. So when the rural economy will be in distress, then of course entire economy will be in a problem, because we will not be having what we call as the virtuous cycle, but we may have the vicious cycle. That is a concern. And market is also... At this moment, they are talking more about the West Asia crisis, but they are also concerned, little bit concerned about the El Nino, and the real impact will be after the Q1 results, which we are going to have from 11th of this month, 10th and 11th of this month.
1: Right, right.
0: So that then Q1 results will decide that what kind of direction we are going to have in the market in the month of July as well as in the month of August.
1: Absolutely.
2: Maharashtra se Mangesh phone line par hai. Mangesh ji, sawal puchhiye.
3: नमस्कार सर.
0: नमस्कार
3: सर. अब आईटी सेक्टर में निवेश करना अच्छा रहेगा कि आपके निवेश करना, इसके बारे में पूछना था. और युद्ध का प्रभाव कहाँ तक रहेगा कि खत्म हुआ, उसके बारे में पूछना था.
0: अच्छा मंगेश जी, देखिए पहला जो आपका प्रश्न है आईटी सेक्टर का, ये एक कह लीजिए कि एक अजीब सी विडंबना भी है कि बीच में हमने देखा कि आईटी सेक्टर में इसलिए गिरावट है क्योंकि एआई में जो है वो बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और फिर ये भी देखने को मिला कि आईटी सेक्टर में थोड़ी रिकवरी हुई क्योंकि एआई सेक्टर को लेकर के कंसर्न्स कुछ अलग तरीके के आ गए. फिर हमारे पास ये बयान भी आता है कि अभी के समय में भी पारंपरिक आईटी कंपनियों का भविष्य है. तो मुझे लगता है कि अगले छह महीने से साल भर के बीच में आईटी कंपनियों को लेकर के ये असमंजस की स्थिति और अनिश्चितता की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी. लेकिन अगर आप 3 साल या 5 साल के निवेश के नजरिए से सोचें, आप साल भर की बात मत करिए, 3 साल के निवेश के नजरिए से सोचिए, तो आईटी के वैल्यूएशंस अभी नीचे हैं और आपके लिए खरीदने का एक अच्छा मौका है. एक ही सुझाव है, किस्तों में खरीदें, एक साथ सारा पैसा ना लगा दें. दूसरा आपका प्रश्न था कि पश्चिम एशिया के संकट के बाद की स्थिति का क्या है. देखिए पश्चिम एशिया के संकट को लेकर के कह सकते हैं कि शांति समझौता हुआ है, उसके बाद तकनीकी दौर की बातचीत चल रही है. हम उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ

0: हो, सभी लोग उम्मीद करेंगे और खासतौर पे बाजार से जुड़े लोग तो खासतौर पे चाहेंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे से कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि इस शांति समझौते पे कुछ समय के लिए प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है। तो अनिश्चितता थोड़ी है और उस अनिश्चितता को मानसून ने भी कुछ हद तक बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से अभी शेयर बाजार के लिए कहते हैं ना कि चैन से सांस लेने का समय नहीं है, वहाँ पर अभी भी घबराहट की थोड़ी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। हाँ, आप रैली जो देख रहे हैं, ये 4 सप्ताह हमने लगातार चौथे सप्ताह देखा कि शेयर बाजार में तेजी आई, उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह भी थोड़ी स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर बाजार में शायद थोड़ी हलचल अलग तरीके की देखने को मिलेगी।
1: राइट, और नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी
2: नमस्ते, गुड आफ्टरनून।
0: नमस्कार
2: सर, माय क्वेश्चन इज अबाउट फॉरेन रुपी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर। क्या अभी वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर स्लाइड डाउन इन नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू, और वी कैन नाउ एक्सपेक्ट इट टू स्टेबल एट अराउंड 95 फॉर सम मोर टाइम? व्हाट इज योर व्यू ऑन डॉलर?
0: ओके शंकर जी, इफ यू सी द नंबर्स ऑफ द डेट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आफ्टर वी हैव सीन दिस टैक्स बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट, वी हैव सीन गुड इनफ्लो इन टर्म्स ऑफ दैट, एंड दैट इज गिविंग सम सपोर्ट टू रुपी विच वॉज बिलो 95. सो एट दिस मोमेंट आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 2 month और 3 month वी विल हैव सम मोर स्टेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम इफ देर इज एनी काइंड ऑफ डिसरप्शंस इन द वेस्ट एशिया सिचुएशन, देर मे बी मोर डिमांड फ्रॉम द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर क्रूड परसेज, दैन इट कैन हैव सम प्रॉब्लम, बट एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months मोर स्लाइडिंग ऑफ द रूपी एंड इट विल बी बिलो 95 और बिटवीन 94 and 95.
1: राइट, एंड मूविंग ऑन टू द US मार्केट्स, द यूनाइटेड स्टेट स्टॉक मार्केट्स रिमेन्ड closed yesterday in observance of Independence Day. Meanwhile, major US indices finished the holiday shortened week with solid gains. The Nasdaq Composite Index surged 2.1%, the Dow Jones Industrial Average rose by 2% during the week, high of 52,900. The S&P 500 gained 1.75% during the week. Investors cheered the weaker than expected US jobs data and are now looking for a softer inflation numbers, reinforcing expectations that the Federal Reserve will keep interest rates unchanged at its policy meeting scheduled for the end of this month. Shishirji, softer inflation number expectations from the US, the public over there, and of course the hawkish Fed. Your views on that?
0: I think that's something, expectation is there, but going by the current price movement, and especially after this entire West Asia thing, I don't think that the inflation will be much softer there, and that is why Federal Reserve is very much cautious, and the commentary which we have seen, which we have heard from the Federal Reserve is something which we have to keep in mind, and the month and meeting of Federal Reserve will also determine. But softer inflation, not much fall in inflation one can expect in the US.
1: Right, and in some other news, the monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that President Draupadi Murmu has approved the government's proposal to convene the session from the 20th of July. In a social media post, Mr. Rijiju said that the session will focus on meaningful debates, discussions and decisions on issue of national importance. You are tuned in to the Market Mantra program on Akashwani. Listeners, you can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106, and do not forget to prefix 011 before these numbers, the Delhi STD code if you're calling from out of Delhi or from your mobile phones. Meanwhile, we are joined in by our next caller, Tapash from Kolkata. Tapash.
3: CTG, Tapash Chakravarti. Actually, last week that Kolkata zone now started. Actually, last 1 year we are unable to contract actually. पता नहीं मैंने क्यों इधर टेलीकास्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आपने भी कैलकाटा से कोई कॉलर आपको मिला क्या? नहीं मिला आपको? ये नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, वो है

0: मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरा डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। तो सर आप सुन रहे हैं ना?
1: हाँ जी बोलिए बोलिए।
0: हाँ तो उसमें मैं अभी क्या किया, बॉन्ड खरीद रहा हूँ। बॉन्ड में 10-11% मेरे को इंटरेस्ट देता है और मैं वो इंटरेस्ट में चल रहा हूँ। तो आप मेरे को बताइए ये ठीक है क्या? ये बेसिकली ये ए प्लस और ए कैटेगरी बीवी बी प्लस ऐसा आता है। तो मैं उसमें इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है महीना में
1: जी जी,
0: और मेरे को इसमें चल रहा है। तो सर ये ठीक ठाक है क्या, ये जरा सा आप बोलेंगे तो अच्छा है।
1: नहीं देखिए, आपका फैसला अच्छा है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आपने कहा कि आप ट्रिपल ए और ट्रिपल बी की बात करें तो ट्रिपल ए के नीचे तो बिल्कुल मत जाइएगा। अगर बॉन्ड लेना भी हो तो आप कोशिश करिए कि जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनके बॉन्ड्स को अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। म्यूचुअल फ़ंड में भी कुछ जो ख़ास तौर पर डेट फंड हैं उसमें आप लगा सकते हैं ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो। और कुछ पैसा मेरी सलाह होगी कि डाकघर में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है उसमें ज़रूर रखिए, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक हेजिंग है आपके लिए, जिसको कहते हैं ना सुरक्षा आपको देगा। वैसे बॉन्ड में कहते हैं कि काफ़ी हद तक सुरक्षा तो रहता है, रिस्क तो है, जोखिम है वहाँ भी, लेकिन और भी बेहतर करना हो तो थोड़ा पैसा 15-20% आपकी जितनी भी कमाई है वो आप डाकघर के सीनियर सिटीजन में ज़रूर रखें।
2: And moving on to oil now, the global crude oil prices are hovering near the levels last seen before the West Asia conflict erupted in late February, as traffic through the Strait of Hormuz has improved amid progress in the US-Iran talks. A spokesperson for Qatar's foreign ministry said in a social media post that the talks made positive progress on the matters related to the memorandum that halted the war in June. During the week at the Intercontinental Exchange, that is ICE, Brent crude September futures dropped nearly 0.7% to settle at $72.12 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI August futures declined 0.6% to end at $68.82 per barrel. Shishirji, of course, you know, the decline from almost near about $120 to $72 with the crude is on expected lines, but we are talking here of the energy sector stocks. What do you think of that when we look at this crude sector?
1: There are two parts. One, you rightly mentioned about the slide in the crude oil prices. And at this moment, we are seeing some good performance by the oil marketing companies in terms of what we call as the under recovery. Their under recovery has come down. So that is one positive for them. And we should also remember that during this period, they bought large quantity of crude at a very high price. So until unless that supply is exhausted,
2: yes,
1: they will not be in a very comfortable position. So their under recovery has come down, but that has not come down much below than what we are saying about the pre-war release. So at this moment, I believe that the OMC companies, there should be some kind of caution, at least for the next 1 month. And after this supply is exhausted, and if the prices of Indian basket of crude is hovering around say 70-75, then they will be in a better position in second quarter. So somebody, if somebody is planning to make put money in the oil marketing company stock, they should wait at least for one month or 2 months, then they can plan for making fresh investment into that.
2: Right.
3: गुजरात में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया है कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और गुजरात खंड का 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। सूरत से बिलिमोरा को जोड़ने वाला पहला परिचालन खंड अगले साल खुलने वाला है। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य ₹1,875 प्रति क्विंटल से बढ़कर अब ₹2,125 प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। शशिर जी, एक प्रश्न आपसे पूछना मैं चाहूंगा कि आने वाला जो सप्ताह है उसमें बाजार को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब आपने Q1 रिजल्ट की बात की है, पहली छमाही भी गुजर चुकी है।
1: देखिए, अगले सप्ताह

0: जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो क्यू होगा वो हमारे लिए रिजल्ट्स ही हैं, जो कि 10 तारीख से शुरू होता है। तो उसके अनुमान में कुछ नए गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। तो बाजार थोड़ा सबड्यूड रहेगा, जो हमने 4 सप्ताह से तेजी देखी है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हम देखेंगे, एक सबड्यूड माहौल रहेगा। नतीजे जैसे जैसे आते जाएंगे अगले 20-25 दिनों के भीतर भीतर, उसके बाद बाजार में गतिविधियाँ और तेज होगी। लेकिन अगले सप्ताह मुझे लगता है कि थोड़ी सी हलचल उस तरीके की देखने को नहीं मिलेगी जो हमने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देखी।
1: तो छोटे निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिलहाल? अभी
0: किस्तों में शेयर खरीदिए, जहां कहीं भी आपको गिरावट अच्छी दिख रही है वहां पर आप किस्तों में खरीदिए, लेकिन बहुत ज्यादा गिर गया उसको मत खरीदिए। जो गिरे हैं, थोड़े गिरे हैं, उनमें आप किस्तों में खरीदिए और किस्तों में मुनाफा कमाना भी मत भूलिए।
2: वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम शशि जी, फ्रॉम यू, हाउ डू यू सी द स्मॉल कैप्स फेयरिंग?
0: स्मॉल कैप आई थिंक have always been either going on a very high or going on a very low. So personally, I am not very small cap is not very favorite for me. I would rather go for the mid cap where some of the companies are very good.
1: शशि जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद,
2: थैंक यू सो वेरी मच शशि जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the 4th straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%, and the monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Nikhil Kumar saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में हम आपके लिए लेकर आते हैं सुनहरे दौर के उन चुनिंदा नगमों को जिसे आप बेहद पसंद करते हैं, जो आपके दिल के बेहद करीब है। और कहते हैं कि इश्क की शुरुआत जितनी मीठी होती है उतनी ही अनिश्चित भी। दिल में नई नई धड़कनें जन्म लेती हैं, सपने आंखों में सजने लगते हैं और फिर एक सवाल बार बार मन में दस्तक देता है, आगे क्या होगा। आज हम आपको लिए चलते हैं 1962 के उस सुनहरे दौर में जब संगीत सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता था। उस दौर की एक बेहद नाजुक, रोमांटिक और सदाबहार पेशकश फिल्म हरियाली और रास्ता का ये यादगार बेहद खूबसूरत गीत। इस गीत को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है लता जी ने और दर्द भरी आवाज के बादशाह मुकेश साहब ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने और इसे अपने मधुर धुनों से सजाया है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। तो आइए इसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे

मुकेश साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म हरियाली और रास्ता से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की ये बेहद खूबसूरत महफिल जिसे लेकर हाजिर हूं मैं फेरोज। दिल जब किसी अनकही चाहत में डूब जाए तो बेचैनी भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। आज अब हम आपको लेकर चलते हैं।

1958 के उस दौर में। उसी दौर में एक फिल्म आई थी बेहद खूबसूरत यहूदी, और जहां भावनाओं को सुरों का अनुपम बेहद खूबसूरत साथ मिला। गीता दत्त और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो आज भी दिल को छू जाती है। शरेंद्र की भावनाओं, पूर्ण शब्द और शंकर जयकिशन का अमर संगीत इस रचना को और भी बेहद खूबसूरत बना देता है। तो आइए इस बेहद खूबसूरत सफर पर चलते हैं, एक और बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं। प्यार की नाजुक धड़कनों से सजा ये अनमोल गीत, बेचैन दिल खोई सी नजर, आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:53 और 15 सेकंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि इश्क की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर बात जबां से नहीं की जाती, कभी एक मुस्कान, कभी झुकी हुई नजर, तो कभी एक मासूम सा इशारा दिल की पूरी दास्तान बयान कर देता है। आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है, खामोश इजहार मोहब्बत की मीठी सी कहानी सुनाता है और दिल में उतर जाता है। और यह नगमा है सन 1964 की सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली से। ये सदाबहार युगल गीत मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की बहुत ही सुरीली आवाजों में बेहद खूबसूरत दिल में उतर जाने वाला है। एसएच बिहारी यानी शमसुल हुदा बिहारी साहब के खूबसूरत बोल और ओपी नैयर साहब के चुलबुले मधुर संगीत ने इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो आइए मुस्कुराइए और प्यार के उन नाजुक इशारों को महसूस कीजिए जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर छोड़ जाते हैं।

फिल्म कश्मीर की कली के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अंजलि रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्म

0: निर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत भारतीय सेना के 651 कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, बल मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य कमांडर और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 6 विकेट खोकर पूरा कर लिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defence platforms.
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है।
4: टुडे आवर डिफेंस प्रोडक्शन हैज रीच्ड मोर देन 1,78,000 करोड़ रुपीस। अंटिल 7, 8 or 9 इयर्स अगो द डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ आवर्स वाज अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ रुपीस। डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो रीच्ड

नमस्कार, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम वही आपका अपना पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेरी ही कलम से निकली एक कहानी जिसका शीर्षक है वापसी। आइए सुनते हैं।

डॉक्टर दिवाकर आज किधर की ओर? अस्पताल की नर्स ने डॉक्टर दिवाकर से पूछा। बस घर जा रहा हूँ माँ के पास, ये कहकर डॉक्टर दिवाकर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में गाड़ी शहर से बाहर थी और धूल धुआं छोड़कर सामने नजर आ रहे थे हरे भरे पहाड़। शुरू हो रहे थे जंगल, ऊंचे पहाड़ों के बीच और बीच में से जाती वो सड़क जिसमें खुली खिड़की से आ रही थी बर्फीली हवा। उन्होंने अपनी जैकेट को कस के बंद कर लिया। हवा की ताजगी उनके मन को छूने लगी। पत्थर उन्हें हमेशा से पसंद थे और पत्थरों से

याद आने लगे बचपन के वो दिन जब वो दौड़ते हुए दूर पहाड़ पर बने छोटे से प्राइमरी स्कूल के लिए निकल जाते थे और रास्ते में प्यास लगती थी तो छोटे छोटे जंगली आंवले खा लेते थे और फिर पहाड़ी सोतों से निकलता मीठा पानी पीते तो आंवले की मिठास और बढ़ जाती। वही थी उनकी पहाड़ी मिठाई। ये जंगल तब भी जानवरों से भरा हुआ था लेकिन उन्हें डर नहीं लगता था। वो अपनी माँ के साथ पलाश और बुरांस के वनों में घूमता रहता। दिवाकर था ही अपनी माँ का दाहिना हाथ। दो ही तो प्राणी थे घर में। अनाज पीसती माँ का

तक परिश्रम देकर किताब पढ़ता दिवाकर सोचता, कब करेगा वो अपनी माँ की परेशानियों को दूर। उस अनाज को देखकर कितनी ही गौरैया आंगन में उतर आती, अभी भी वो दिन उसकी यादों में बसे थे। अब तो वो कल्पना भी नहीं कर पाता था कि इन्हीं पगडंडियों पर दौड़ते भागते हुए वो स्कूल पहुंच जाता था और कंधे पर रहता था उसका बस्ता। माँ पीछे से देखती रहती जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। उन दिनों ना तो कोई फोन था, बस मन में ये संतोष था कि उनका बेटा स्कूल पहुंच गया है। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था, पर माँ के आंचल में संघर्ष महसूस ही नहीं होता था। उसे तो हमेशा छांव ही

गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर हिचकोले खाते खाते उसको अपना घर दिखाई देने लगा, अपना गांव दिखाई देने लगा और साथ ही दिखाई देने लगा छोटा सा बाग, घर के सामने अखरोट के वृक्ष और पहाड़ी बेरियों की झाड़ियां। ये वो बगिया थी जहां बाबा ने पेड़ लगाए थे। आज उनके फल टूट टूट कर गिरते थे, देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने दौड़कर एक फल तोड़ा और खाता हुआ घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसको माँ दिखाई दी, बोली, अरे मैंने वहीं से देख लिया था, और तुम यहाँ से क्यों खा रहे हो, घर में तो बहुत सारे फल हैं। वो हंस पड़ी। उसने माँ को गले लगा लिया और गोदी उठा लिया। अरे मुझे जमीन पर रखो भाई। वो दोनों घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर दिवाकर ने ज्ञान विज्ञान की राह चुनी थी। उनके बाबा कहते थे दिवाकर को बहुत पढ़ना है।

इस बात को कितने वर्ष बीत गए, जब कड़ी मेहनत से उसने MBBS की परीक्षा पास की थी तो पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। सबको बहुत सी उम्मीदें थी दिवाकर से। सब कहीं ना कहीं सोचते थे गांव का लड़का डॉक्टर बना है, कल को वो उन्हीं का इलाज करेगा, क्योंकि गांव में दूर दूर तक अस्पताल की सुविधा नहीं थी। MBBS करके और आगे की डिग्री हासिल करके आज डॉक्टर दिवाकर दिल्ली के जाने माने सर्जनों में से माने जाते हैं। सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में उसे अपना घर बहुत याद आता था। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी कि अम्मा को दिल्ली लेकर आ जाएं, पर अम्मा ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, ये घर हमारे पुरखों की धरोहर है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो यहां कौन रहेगा? देखो ना, वैसे भी सब लोग तो घर छोड़कर जा ही रहे हैं शहरों की ओर। लेकिन माँ, मैं आपको कब तक यहां अकेला रहने दूं? दिवाकर ने कहा था। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। तुम आते जाते भी रहोगे तो फिर यहां अकेलापन भी नहीं लगेगा। ये पहाड़, ये जंगल, ये सारे मेरे ही तो हैं। उसे वो पुरानी बातें याद आ रही थी। जब डॉक्टर दिवाकर ने माँ की ओर देखा तो लगा माँ का चेहरा थोड़ा और पीला हो गया है, वो और कमजोर दिख रही थी। बोले, माँ तुम कितनी कमजोर हो गई हो, अब मैं तो

मैं यहां नहीं रहने दूंगा, इस बार अपने साथ दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। अरे अभी तो तू आया है और आज ही जाने के लिए कहने लगा। घर पहुंचकर लकड़ी के चूल्हे पर बनी मोटे अनाज की रोटी हरी चटनी और घी के साथ खाकर उसका मन और आत्मा तृप्त हो गई। दोनों माँ बेटे बतियाते रहे और कब नींद की गोद में सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह दिवाकर उठा तो पास ही के मोहन चाचा के घर चला गया, पर वहां कोई नहीं था, न कोई आवाज सुनाई दी। वापस घर लौटकर पूछा, माँ मोहन चाचा किधर है? क्या मोहन चाचा का परिवार इन छुट्टियों में गांव आया हुआ है? अरे नहीं, उन्होंने अपना घर किराए पर दे दिया है। किराए पर? यहाँ? किसको? अंकिता को। अंकिता? दिवाकर के दिमाग में घंटी सी बजी। उसके बचपन की एक साथी थी अंकिता। दोनों मिर्ची के खेत में मिर्च खाने की शर्त लगाते थे और अक्सर वो शर्त हार जाया करता था। अपने बचपन के उस खेल को सोचकर वो मन ही मन हंस पड़ा। वो जानता था कि ये वो अंकिता नहीं हो सकती। ये लो बेटा, आ गई अंकिता, माँ ने कहा। उसने सर उठाया तो साड़ी में एक दुबली पतली सी लड़की लंबी चोटी किए सामने से चली आ रही थी। माँ ने चाय का कप दिया, बेटा चाय पी लो। अरे नहीं चाची, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठ, आकर मिलूंगी। हंसकर वो निकल गई। दिवाकर ने सीढ़ियों से देखा और अनदेखा कर दिया। उसने प्रश्नसूचक नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने बताया कि अंकिता पड़ोस के गांव की लड़की है और बेटा ये जो नया स्कूल खुला है ना, सरकारी स्कूल, उसी में टीचर लगी है, तभी तो इधर आ गई। वहीं पढ़ाती है और यहाँ किराए पर रहती है। बहुत अच्छी लड़की है, याद है ना तेरे साथ पढ़ती थी बचपन में, तेरी ही तो क्लास में थी। मेरी बहुत मदद करती है बेचारी। पिछले हफ्ते भी तेज बुखार में तप रहे एक बच्चे को लेकर रातों रात शहर गई थी। यहाँ कोई तो है नहीं जो देखता उसे। शुक्र करो अंकिता बच्चे को लेकर गई और उसकी जान बच गई। अरे दिवाकर तू जा कहाँ रहा है, बात तो सुन ले। दिवाकर बोला, माँ मैं कल्याण के यहाँ जा रहा हूँ। अपने दोस्त कल्याण से बातें करते करते दिन कैसे बीत गया दिवाकर को पता ही नहीं चला। वो कल्याण से मिलकर नदी की ओर निकल गया। तभी दूर से घंटे की आवाज सुनाई दी। उसे लगा किसी मंदिर से ये आवाज आ रही है, पर देखा तो ये आवाज तो स्कूल से आ रही थी। देखा कि खुली कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगा है, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। पास आया देखा तो अंकिता ही थी। फिर वो लंबे लंबे डग भरते हुए घर की ओर निकल गया। सोचा सामने ही पहाड़ी पर तो छोटा सा मंदिर है, क्यों ना देवता के दर्शन करता हुआ जाए। पुजारी बाबा भी तो वहीं रहते थे और वहीं रहता था उनका छोटा सा परिवार। शांत सलोने मंदिर में कोई दिया जला गया था, धूप की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी का छोटा लड़का केशव दिखाई दिया। अरे दिवाकर भैया नमस्ते, कब आए? कल शाम को ही आया हूँ केशव, कैसे हो तुम? पिताजी कहाँ हैं? ये सुनते ही केशव वहीं थम गया। पिताजी तो इस बार, कहकर उसने सर झुका लिया। दिवाकर का दिल धक से रह गया। वो डॉक्टर जो दिन रात मौत को देखता था, दिन रात उसका सामना करता था, पता नहीं क्यों ये वाक्य उसके दिल में तीर सा घुप गया। वो दयालु बाबा, वो पुजारी और उनके साथ बचपन के बिताए वो दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। डॉक्टर दिवाकर ने आगे बढ़कर केशव का कंधा थपथपाया, इधर उधर की बातें की और गांव लौट आए, पर एक गहरी उदासी उनके मन पर छा गई।

पूछा, तो क्या पुजारी काका ने कोई दवाई वगैरह नहीं ली थी? बेटा यहाँ कहाँ दवाई, ना यहाँ कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, ना ही कोई वैद्य, बस प्रकृति ही माँ है, वही डॉक्टर वही वैद्य। तुम तो जानते हो बेटा, पंडित जी अस्थमा के रोगी थे और कोरोना के बाद तो बहुत झटका खा गए थे। किसी कथा के लिए गांव से दूर शहर में गए थे, बस वहीं उनको दिल का दौरा पड़ा और क्या कहें बेटा, कहने को कुछ नहीं। दिवाकर को अब समझ में आया, उसके मन में अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंता रहती थी। वो जानता था पहाड़ों के अकेलेपन में उसकी माँ। माँ, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगी बेटा, अगर मैं चली गई तो अंकिता तो यहाँ अकेली रह जाएगी ना। दिवाकर ने नजरें उठाकर देखा तो अंकिता सामने खड़ी थी। ये मेरा बहुत ध्यान रखती है बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अंकिता बोली, ये लो चाची, मैं आपकी दवाइयां लेकर आ गई हूँ। अरे दवाइयां? दवाइयां मैं लेकर आया हूं ना, दिवाकर बोला। अरे नहीं, ये तो आयुर्वेदिक टॉनिक है जो मैं चाची के लिए लेकर आई हूँ। आप दिल्ली जाओगे ना तो ये भी लेकर जाना। ठीक है अंकिता बेटी, माँ बोली, अब तू भी यहीं बैठ, यहीं खाना खा ले। कमरा जैसे भरा भरा सा लगने लगा, खिला खिला सा। दिवाकर वहीं बैठ गया पसंदीदा आराम कुर्सी में। उसने आंखें बंद कर ली और बस रसोई में काम करती अपनी माँ को देखने लगा।

तो दोस्तों ये थी कहानी वापसी जिसे मैंने आपके लिए लिखा था। दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से निकल कर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर बनते हैं और उनके अपने गांव तरस जाते हैं आधारभूत मेडिकल सुविधाओं के लिए। हालांकि कितने ही ऐसे डॉक्टर घर वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने गांव में ही प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारी जरूरत हमारे घर में है, हमारे अपने गांव में। ऐसी ही थी ये कहानी डॉक्टर दिवाकर की, जो वापस अपने गांव आए और अपने गांव वालों के लिए उन्होंने काम किया। और इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम यानी पानी पर लिखी कहानी से चाहती हूँ आज्ञा। रश्मि कुकरेती आपसे कहती है नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रो केमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रात के इस पहर में। 1:11:04 हुए हैं। गीत सुहाने लेकर अंजलि है आपके साथ। गीत सुहाने उन गीतों की बहार आपके लिए जो सचमुच आपके दिल को सुहा जाए, आपके मन को भा जाए और आपके दिलो दिमाग पर छा जाए। कोशिश पूरी रहेगी रात के इस सफर में दिल की गहराइयों में कोई उतरे, मन मस्तिष्क में बनी तस्वीर में कोई संवरे, या फिर इसके उलट दिल में चुभे नश्तर पर कोई मरहम की तरह मुलायम एहसास बन जाए, या फिर दिल की चुभन दर्द कोई जख्म शब्दों के जरिए बाहर निकल जाए। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 अंजलि है आपके साथ। कुछ ऐसा रिश्ता है हमारा और उनका, कुछ ऐसा रिश्ता है हमारा और उनका, याद ना भी करें तो भुलाया भी नहीं जाता।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 इस वक्त गीत सुहाने के इस सुहाने से सफर पर अंजलि के साथ हैं आप। तेरी आंखों के ये जो काजल हैं, तेरी आंखों के ये जो काजल हैं, मेरी रातों के काले बादल हैं, और ये जुल्फ जो गालों को छूती है जैसे सावन की पहली हलचल है।

आंखों से जो उतरी है दिल में वो बात ही कुछ और है। आंखों से जो उतरी है दिल में वो बात ही कुछ और है। लफ्जों में बयां जो हो ना सके, लफ्जों में बयां जो ना हो सके, उस मोहब्बत की गहराई ही कुछ और है। और दिल वही सब तो ढूंढता है।

रात चुपचाप दबे पांव चले जाती है। रात खामोश है, रोती नहीं, हंसते भी नहीं। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी मेरी नजदीकियों की इस खामोशी को सुन पाते।

ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा होठ पे लिए हुए दिल की बात, हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम।

कुछ इस तरह से तेरी और मेरी कहानी है, कुछ इस तरह से तेरी और मेरी कहानी है, छुपी हुई आंखों में कोई अनकही सी कहानी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग की कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात सुरमई हो तो भला दिल में उमंगे क्यों ना उमड़े, समुद्र में उफनती लहरों सी दिल की आवाज सुने या दिल की तन्हाइयों से कुछ बात करें। ये सफर कुछ ऐसा ही रहेगा, एहसास जज्बात सभी रंगों में रंगे गीत पहुंचेंगे आप तक। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

खुशबू की तरह आया वो मेरी जिंदगी में, खुशबू की तरह आया वो मेरी जिंदगी में और सांसों में इस तरह बसा कि जुदा होना मुश्किल हो गया।

0: इतना काम, बीमार पड़ जाओगे। वैसे नाटक किस लिए?
1: तुम्हें ये नाटक नजर आ रहा है? मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है।
0: इतने बड़े घराने की लड़की होकर ये सब क्यों कर रही है? तुम्हारे एक इशारे पर सैकड़ों नौकर आकर ये काम कर जाएंगे, फिर ये दिखावा की।
1: मुझे सफाई देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ। यूसुफ की माँ हमारे यहाँ नौकरी किया करती थी। बचपन में उसी ने मुझे पाला, माँ से ज्यादा प्यार दिया। जब उसकी अपनी बेटी जूनी मर गई तो वो नौकरी छोड़ के यहाँ वापस आ गई। अब जब भी मैं कश्मीर आती हूँ, कुछ दिन उनके साथ बिताती हूँ। उनके लिए वही सब करती हूँ जो उनकी अपनी बेटी किया करती थी। इससे मुझे चैन मिलता है और एक तरह का सुख भी। मैं ये सब बातें तुम नहीं समझोगे, अब भी नहीं समझे आप। मैं आरती हूँ, काजल की बेस्ट फ्रेंड। उसे नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया। जानते हैं, वो यहाँ सिर्फ आपके लिए आई है। बचपन से उसे जानती हूँ, बहुत जिद्दी है। अगर वो आपके लिए यहाँ तक आ सकती है तो आपको छोड़ के जा भी सकती है। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? अगर वो अभी चली गई तो आप जिंदगी भर तरसेंगे, पछताएंगे।
0: काजल, I'm sorry, काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा। काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
1: तो कहो।

समझ नहीं आता, इश्क है या इबादत अब समझ नहीं आता, एक तुम ही तुम नजर आते हो जहां तक दिल जाता है।

इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई दौर होता है। इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई दौर होता है। ये तो वो एहसास है जो बस रूह से रूह तक होता है।

तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम हो जाए, तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम हो जाए, तो इस जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे नाम हो जाए।

दिन का हर एक लम्हा, रात की हर एक घड़ी बस तुम्हारी यादों की उंगली थामे गुजरती है। कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं मोहब्बत में जहां ना वक्त का होश रहता है और ना दुनिया का।

इसी के साथ अब अंजलि आपसे लेगी इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में सुनिएगा समाचार और आगे का सफर एफएम गोल्ड का जारी रहेगा आपके लिए रूपा के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ

जी हाँ, हमराही कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और सुन रहे हैं हम हमराही के जरिए मोहब्बत की कहानियाँ। जी हाँ, प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए कुछ युगल गीतों को याद कर रहे हैं हम, जिन्हें आज भी हम दिल लगा कर सुनते हैं, जो आज भी हमारे जहन में समाये हुए हैं। चलिए सुनते हैं अगला ही नगमा हमराही कार्यक्रम में, और आज आपके साथ हूँ मैं रूपा धवन। वक्त हुआ है 3:23 और 17 सेकंड।

आज फिर तुमसे मुलाकात हुई, आज फिर तुमसे मुलाकात हुई, जैसे सूखी जमी पर बरसात हुई। बातों में कुछ खामोशी भी थी, बातों में कुछ खामोशी भी थी, आंखों में लेकिन 100 बात हुई।

साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल होता है। इस एहसास को सिर्फ दिल की धड़कनें ही समझ सकती हैं। सुनते हैं एक ऐसा ही दिलकश नगमा जिसके शब्द बहुत ही खूबसूरती से पिरोए गए हैं। फिल्म है आप आए बहार आई, और इसमें क्या महसूस कर रहे हैं दो दिल, आइए जानते हैं।

वाकई प्यार के एहसास को दोस्तों शब्दों में बताना मुश्किल होता है। इस एहसास को सिर्फ और सिर्फ धड़कने ही समझ सकती हैं। सुनते हैं अगला नगमा, ऐसा ही कुछ बेहद ही खास। इस नगमे को हम ले रहे हैं फिल्म मन मंदिर से, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में।

हमराही में आप सुन रहे हैं उन युगल गीतों को जिन्हें आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, बार बार गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत जिसे हम शामिल कर रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म से।

दुनिया की रस्मों से चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हो जाएं, वक्त के थपेड़ों से चाहे राहें कितनी भी जुदा हो जाएं, पर जो रूह से बंधा है वो बंधन कभी टूटेगा नहीं। ये सच्चा प्यार है साहब, जमाने के आगे कभी झुकेगा नहीं।

और आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसा गीत जिसे अपनी पुरनूर आवाज से सजाया है लता जी ने और उनके साथ नरेंद्र चंचल जी ने। फिल्म दो शत्रु जिसके संगीतकार हैं आनंद जी, कल्याण जी आनंद जी, और सुनते हैं इसी खूबसूरत से गीत को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

0: किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतरराज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा की भी संभावना लगाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century. But India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th July. Mr. Rijiju said

जिसके भीतर अरुणिमा सा उजाला होता है, उसका हर रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। जी हाँ, अरुणिमा यानी सुबह की लालिमा या उगते हुए सूर्य की चमक। अदब में साहस को समर्पित ये खूबसूरत सा नाम और अरुणिमा बनकर धीरे धीरे अंबर पर नया सवारा लेकर आ रही है वो रोशनी की किरण, और रात के हर अंधेरे को मिटाती जाएगी धीरे धीरे। स्वागत है आप सभी का अरुणिमा में, जहां आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

सुप्रभात। आपकी यादों में रचे बसे हम और हमारी यादों में रचे बसे आप, तो ऐसे में क्यों ना एक गीत आपके नाम कर दिया जाए।

0: साथियों, अरुणिमा का ये सफर जहाँ धीरे धीरे रात गहराती है और सुबह की मध्यम रोशनी धीरे धीरे अपनी चादर तानने की तैयारी करती है, वहीं ठंडी हवा के झोंके कानों को सुकून देती खामोशी भी अपने पांव पसार लेती है। इस खामोशी में एक अलग ही एहसास है, ठहराव का। आइए इसे महसूस करें कुछ चुनिंदा गीतों के साथ। मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत किशोर साहब की पुरनूर आवाज में आप सभी के लिए।
1: मुझे सारे गामा नी धा पा गा धा पा सा नी धा, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो मानेंगे नहीं, हमारी जो जनता है ये सोच नहीं सकती।

साथियों, हमारा मन ही सबसे बड़ा हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसका मन उसके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक की तरह काम करता है। सकारात्मक विचारों और आत्मनियंत्रण से हम अपने मन को बेहतरीन सोच की दिशा में मोड़ सकते हैं। यकीन नहीं आता तो करके देखिए।

और फिर हमें बताइएगा कहाँ पर। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल आप जुड़े हैं अरुणिमा में रूपा धवन के साथ।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा के इस खूबसूरत से सफर पर, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात।

दोस्तों, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाती है। जी हाँ, आप अपनी सोच से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम हैं। हर नया दिन अपने साथ नया अवसर और नई ताकत लेकर आता है। अगर आप मजबूत और सक्षम बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप पर यानी खुद पर विश्वास रखना होगा। जी हाँ, आत्मविश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको निखारता है और संवारता है। अरुणिमा के सफर पर हम सुन रहे हैं कुछ गीतों को और बातें कर रहे हैं सकारात्मक सोच वाली। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, जहां आप हैं रूपा के साथ।

कोई वैर नहीं तेरी आंखों की कसम देखना राज न हो मेरे मासूम सनम।

कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, यानी चुनौतियाँ, मुश्किलें जिनका सामना हम करते हैं, पर ये मुश्किलें हमारा रास्ता रोकने नहीं बल्कि रास्ता सिखाने के लिए आती हैं। बस हमें धैर्य से काम रखना होता है। वक्त चाहे कैसा भी हो बदलता ज़रूर है, बस हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत कभी ना कभी तो एक ना एक दिन तो ज़रूर रंग लाएगी। कारवा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

समय हो चला है 4:44 और 35 सेकंड। आप हैं रूपा धवन के साथ अरुणिमा कार्यक्रम में। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं आपकी और आपकी खुशियों की। जी हाँ, हमारा जीवन जो है ना, जो हमें मिला है, हमें उसके लिए अगर खुशी और शांति की तलाश है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे पास है उसका शुक्रिया मानिए और जो पाना है उसके लिए प्रयास कीजिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि विचार ही आपका और हमारा भविष्य तय करते हैं। सुनते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

साथियों, हमने बात की खुशी और शांति की। खुशियां सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सादगी तो उसमें है जब हम दूसरों की भी मदद करते हैं, और दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब हम किसी बेसहारा की मदद करते हैं या जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो, और उसके जो खुशी के पल होते हैं, आँखें बयां करती हैं उन खुशी के पलों को जब आप उनकी सहायता करते हैं, वो लम्हा अपने आप में एक छोटी सी कहानी कह जाता है। तो ऐसे खुशी के मौसम हम सबकी ज़िंदगी में आए तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। आक्रमण फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाज़ में।

खूबसूरत बनाकर आने वाले कल को ज़रूर संवारा जा सकता है। अरुणिमा का सफ़र सिर्फ यहीं तक, अभी भोर सुहाने लेकर फिर से आपके साथ रहूँगी और अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। तब तक के लिए विदा दीजिए, रूपा को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मृगनयनी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रावोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

0: ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. In a social media post, Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that ethanol is not a new concept and has been in use for over a century. Addressing a gathering in Rajasthan, Mr. Puri said that the government welcomes constructive criticism of the government's biofuel blending program and assured that the government will incorporate suggestions into its work and make the necessary corrections. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral

भोर सुहानी लेकर आई ठंडी हवा का झोंका, कलियों ने भी आंखें खोली, मिला नया एक मौका। चहक रहे हैं पंछी सारे, गूंज रहा आकाश, भोर सुहानी बिखेर रही है चारों ओर प्रकाश। हरी घास पर ओस की बूंदें चमकी बनकर मोती, भोर सुहानी बिखराए जग में सुख की पावन ज्योति। जी हाँ, रात का हर अंधकार मिटाकर, सब परेशानियां मिटाकर, नई उम्मीदों की रोशनी लेकर भोर सुहानी आ गई है। कुदरत का ये निराला रूप हम सबके जीवन में एक नए उजाले के साथ आया है और हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुप्रभात, नमस्कार। आइए स्वागत करें इस सुहानी सी भोर का और नाम लें उस प्रभु का जिसने हमें एक और नई सुबह दी, एक और नया दिन दिया।

सूरज की लालिमा धीरे धीरे अंबर पर छा रही है, सूरज भी धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है। इस भोर सुहाने की सुंदरता कुदरत में किस तरह से समाई है, ये आइए जानते हैं इस गीत के माध्यम से, जिसे हम शामिल कर रहे हैं वासना फिल्म से, रफी साहब और लता जी के स्वर में।

किसी ने क्या खूब कहा है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको अस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। माना कि जब मुश्किलें आती हैं हमारे ऊपर तो हमें हताशा तो होती ही है, लेकिन उस हताशा में से भी आशा की किरण छोटी सी कहीं ना कहीं से झांक रही होती है, जो उस समय हमें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जब हम हिम्मत रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो उस आशा की किरण का दामन थामकर हम आसान से उन मुश्किल राहों को पार कर जाते हैं। क्योंकि अगर एक अंधेरा है तो लाखों सितारे भी हैं हमारी जिंदगी को, हमारी जिंदगी की राहों को रोशन करने के लिए।